स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना। तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मलत्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से

ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी पिएंगे, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी गैस की समस्या जितनी भी भारी होगी वह धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है, मेटाबॉलिज्म तेज करता है। खाली पेट पानी पीने से शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ती है, वजन घटाने में मदद मिलती है। मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन लोगों को जिम जाना होता है, भारी से भारी एक्सरसाइज करनी होती है। शायद उनका उद्देश्य यही होता है कि हमें पतला होना है, हमारा पेट अंदर हो जाए, टमी अंदर हो जाए और हम अच्छे से सुडौल होकर के मार्केट में जाएं, यानी कि अपने कार्यक्षेत्र पर जाएं या फिर हम अपने घर पे रहें, अपने दोस्तों के बीच में जाएं। तो उनके लिए सबसे सरल उपाय गर्म पानी यानी कि गुनगुना पानी की आदत डाल लेनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म तेज करता है यानी कि खाली पेट पानी पीने से शरीर की जितनी भी खराब कैलोरी होती है वो बर्न की करने की क्षमता बढ़ जाती है और वजन घटाने में मदद करता है। आप मेरे कहने पे यानी आज समता के कहने पे एक महीना लगातार एक गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत सुबह शुरू करें और आप ये आदत को शुरू करने से पहले वेट करें और उसके बाद एक महीने के बाद अपना वजन जरूर करें। आप देखेंगे कि 1 से 2 किलो वजन आपके शरीर का कम होता हुआ दिखाई देगा, बिना किसी सर्टिफिकेट से, बिना किसी साइड इफेक्ट से, बिना किसी गोलियों से, बिना किसी भी भारी एक्सरसाइज करने से। चौथा पॉइंट आते हैं जो कि हम गर्ल्स के लिए, हम महिलाओं के लिए एक रामबाण जितना काम करता है। जी हाँ दोस्तों, त्वचा को बनाता है ग्लोइंग। आज हर एक महिला, हर एक लड़की की ये चाहत होती है कि हम खूबसूरत दिखें, हमारे बाल लंबे हों, हमारे चेहरे पे कोई मुहासा नहीं हो, कोई पिंपल ना हो और हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड होकर के एक चमकती हुई त्वचा लगे। तो देर किस बात की है, सिर्फ आपको एक छोटी सी आदत को अपनाना है और अपनी जिंदगी में देखना है एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल, एक गिलास पानी गुनगुना आपको नित्य प्रतिदिन योग की क्रिया में यानी कि योग करने के बाद में आपको अपनी जीवन शैली में इसको अपनाना है, जिससे आपको मिलेगा लाभ, खून साफ होता है। अगर खून साफ होगा, हमारी बॉडी का ब्लड साफ होगा तो पिंपल और मुहासे बिल्कुल नहीं होंगे, ड्राइनेस कम होती है। सर्दियों में ड्राइनेस जिन्हें ज्यादा होती है यानी कि आपको पानी की कमी है, त्वचा में नेचुरल चमक आती है। आप जितनी भी महंगी क्रीम लगा लें, लेकिन अगर आपकी स्किन पर नेचुरल चमक है तो इसका मतलब है कि आप पानी पीने में सबसे ज्यादा अच्छे हैं और पानी को पी रहे हैं। नेचुरल चमक जानने का सबसे आसान तरीका होता है 2 टाइम पर, बताऊं कैसे। पहला, जब आप सुबह सो के उठते हैं आप अपने आप को शीशे में निहारें, अगर आपके चेहरे पे हल्की सी भी एक चमक है यानी कि ये चमक आपके अंदर की है, क्योंकि आपने सोते समय कोई क्रीम नहीं लगाई है और उठते ही आपने कोई क्रीम नहीं लगाई है, जो चमक आती है वो आपकी नेचुरल चमक है। दूसरा, जब आप नहा के निकलते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, अगर आपने अपने फेस को साफ किया है, साबुन से साफ किया है, लेकिन एक खिंचाव, एक चेहरे पे सूखापन आ ही जाता है जिसके कारण से वो चमक कहीं ना कहीं छिप जाती है, लेकिन अगर वो चमक आपको दिखाई दे रही है इट मींस कि आपके अंदर पानी की कमी नहीं है। अगर वो चमक नहीं है, त्वचा रूखी हो गई है, इसका मतलब है आपकी स्किन को हाइड्रेशन की आवश्यकता है। पांचवा पॉइंट आता है, दिमाग को रखता है फ्रेश। रात में शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, सुबह पानी पीने से थकान कम होती है, सिर दर्द से राहत होती है और एकाग्रता बढ़ती है। मैं बता दूं स्टूडेंट्स को कि अगर उन्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, एकाग्रता नहीं आ रही है, थकान सी महसूस होती है, एग्जाम्स हैं, यार मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन अगर अभी मोबाइल मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। तुरंत तुरंत हम मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, स्क्रीन को देखने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई में एकाग्रता नहीं है तो सब कुछ बेकार है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर वो अभी से एक गिलास सुबह पानी पीना शुरू कर देंगे तो रात में शरीर डिहाइड्रेट हो जाने के कारण से
जो थकावट हो जाती है, एकाग्रता नहीं होती है, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। छठा पॉइंट है, हृदय और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। सर्दियों में खून गाढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर हम एक ग्लास पानी सवेरे उठ करके पियेंगे जिससे खून गाढ़ा नहीं होगा, ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, दिल पर दबाव कम पड़ता है। और कहा जाता है कि यदि हृदय आपका स्वस्थ है तो आपका सब कुछ स्वस्थ है। सातवां पॉइंट आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोज सुबह पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, सर्दी जुखाम जैसी समस्याएं कम होती हैं, हम कम बीमार पड़ते हैं। आइए अब हम बता दें आपको कि ये नियम कैसे करना है और कितना करना है। सवेरे उठते ही नित्य क्रिया करने के बाद में, यानी सोच के करने के बाद में, उठते ही आप आराम से कहीं जमीन पर उकूड़ू बैठ जाएं, या तो फिर आप कहीं पे भी आराम से मैट पे बैठ जाएं। अगर आपको इतनी भी व्यवस्था नहीं है तो आप किसी कुर्सी पे, मेज पे, पलंग पे, सोफे पे, कहीं पे भी आप बैठ जाएं। उसके बाद में एक गिलास गुनगुना पानी लें। कहते हैं कोई भी शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, एक गिलास पानी से करें। अगर आपको एक गिलास भी भारी लग रहा है तो आधे गिलास से आप शुरू करें, आधा गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके पिए। साथ ही साथ आज मैं आपको एक टेक्निक और बता दूं कि पानी को पीना नहीं है, पानी को खाना है। पानी मुंह में रख करके आपको दांतों को चबाना है, जिससे जिस तरीके से आप खाना चबा के खाते हैं और हमें यह पाचन में सहायता मिलता है, ठीक वैसे ही पानी को भी चबा करके ही पीना चाहिए। उसके बाद इसमें अगर आप चाहें, जिन्होंने अपना वेट कम करना है, जिन्होंने अपनी टमी को अंदर करना है, तो यदि आप चाहें तो उस गुनगुने पानी में 2 से 3 ड्रॉप नींबू की और आधा चम्मच शहद डाल लें। अगर आपको सूट करे तो, मतलब अगर आपको सूट नहीं करेगा, आप 1-2 दिन उसको पी के देखें। अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ सादा पानी में 2 से 3 ड्रॉप नींबू की आप डाल करके इसको पी सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें ध्यान देने योग्य बातें। बहुत ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है। जो टैप से बिल्कुल गुनगुना पानी आता है, या तो आप उसे पिए, या आप रात में एक गिलास पानी को भर के रख दें और वही पानी सुबह उठ करके पिए। एक साथ ज्यादा पानी न गटके, सिप सिप करके पानी पिए। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से सलाह जरूर से लें। सुबह की हेल्दी रूटीन को जानने के लिए आइए हम एक चीज आपको और बता दें, वॉशरूम रूटीन। पानी पीने के 5-10 मिनट बाद पेट साफ होने की आदत जो बन जाती है ना, इससे सबसे अच्छा होता है कि आपकी लीवर की डिटॉक्स हो जाती है, जिससे आपको गैस, एसिडिटी नहीं बनती है। योग प्राणायाम शुरुआत करने वालों के लिए, अनुलोम विलोम 5 मिनट, कपालभाति 3 से 5 मिनट, भुजंग आसन और पवन मुक्तासन 5 मिनट, और पेट की चर्बी, गैस, तनाव में ये बहुत मदद करता है। इन तीनों प्राणायाम को करने के बाद में आप एक गिलास आराम से बैठ करके सिप सिप करके पानी पीजिए। और उसके बाद में आप अगर चाहें तो थोड़ा सा वॉक, यानी कि अगर आपकी छत खुली हुई है, अगर छत खुली हुई नहीं भी है तो आप अपने आंगन में गोल गोल घूम सकते हैं, या फिर सामने से जाएं फिर वापस लौटें, फिर सामने से जाएं और वापस लौटें, या तेज चाल आपको चलनी है योग प्राणायाम करने के बाद में और पानी को पीने के बाद में। उसके बाद में जब आपको पसीना आ जाएगा और आपको थोड़ी सी थकावट लगेगी, बस उसी समय आपको आराम कर लेना है और फिर आपका जो भी रूटीन है रोज का, उसे ये कर लेना है। एक्सरसाइज के 20 से 30 मिनट बाद ही आपके पास कोई भी नाश्ता, यानी कि आप हेल्दी ऑप्शंस जरूर कर सकते हैं, जैसे फल ले सकते हैं, 4-5 फीके बादाम खा सकते हैं, ओट्स या दलिया खा सकते हैं, या फिर उबला हुआ एग ले सकते हैं, पनीर यदि हो तो, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पूरे दिन का जो आपको पानी पीना है वो है 8 से 10 गिलास, थोड़ा थोड़ा करके पिए, ताकि ये पूरा रूटीन एक दिन में पूरा हो जाए। तो ये थे कुछ आज के टिप्स जो कि हमने योग के साथ में किए। योग के साथ में पानी का महत्व, पानी को कैसे पीना है, कितना पीना है और किस दशा में पीना है, ये सारी चीजें आपको आज हमने बताई। तो क्योंकि मैं इन सारे रूटीन्स को करती हूँ और आप भी करिए, फिट रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टिप्स के साथ में, तब तक करें योग, रहें निरोग। हेलो दोस्तों, मैं आपकी समता, योगा एक्सपर्ट, योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूँ।
और आशा करती हूँ कि आप अपना खुद से भी ज्यादा और बहुत सारा ध्यान रखते होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करते हैं अपने एक नए प्राणायाम की तरफ जिसका नाम है शीतली प्राणायाम। जी हाँ दोस्तों, शीतली प्राणायाम के बारे में मुझे लगता है कि काफी लोगों को जानकारी भी है और काफी लोगों ने यह नाम भी जाना होगा और सुना होगा। तो जानेंगे आज हम विस्तार से शीतली प्राणायाम के फायदे और अभ्यास करेंगे। इनके नुकसान तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कि अगर हमको नहीं करना है या किस अवस्था में करना है वो बताएंगे, और साथ में हम जानेंगे इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। शीतली शब्द का अर्थ है ठंडा करने वाला, यानी वह प्रक्रिया जो हमारे शरीर को शांत करती है और शीतलता की भावना दे सकती है। शीतली शब्द को मूल रूप से शीतल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ठंडा या सुखदायक। जी हाँ दोस्तों, शीतल नाम से ही आपको ये प्रतीत हो रहा है कि शीतली का अर्थ होता है शीतल यानी ठंडा। और यदि हम यह प्राणायाम के रूप में लाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, यानी हमारे संपूर्ण शरीर को किस तरीके से यह शीतल करते हुए शांत करता है। शीतली प्राणायाम का दैनिक अभ्यास हमारे शरीर के साथ मन को भी शांत करता है। शीतली प्राणायाम का मूल उद्देश्य शरीर के तापमान को ठीक करना और उनसे हमारे तांत्रिक तंत्र और स्व अंतःस्रावी ग्रंथियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्राणायाम का अभ्यास करने से व्यक्ति युवा और आकर्षक हो जाता है और इसका दैनिक अभ्यास प्यास और भूख को नियंत्रित करने में आपको सक्षम बनाता है। शीतली प्राणायाम कुछ हद तक शीतकारी प्राणायाम के जैसा है, यानी दोनों का ही उल्लेख प्राचीन पाठ में हठ योग प्रदीपिका में किया गया है। इस लेख में शीतली प्राणायाम के आसन को करने के तरीके बहुत सारे उल्लेखों में बताए गए होंगे, लेकिन साथ में सावधानियां भी बताई गई होंगी जो आज हम पूर्ण रूप से उल्लेख में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम करेंगे शीतली प्राणायाम किस तरीके से होता है, यानी हम साथ में करेंगे अभ्यास। तो आइए दोस्तों हम आसन पर बैठ जाते हैं और किसी भी मुद्रा में, यानी पद्मासन की स्थिति, सुखासन की स्थिति में आकर के हम लोग जमीन पर योगा मैट या चद्दर बिछा लें और एकाग्रचित होकर के बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक ध्यान करने के आसन में बैठ जाएं। हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लें, आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को शिथिल करने की कोशिश करें, यानी पूरे शरीर को हम यह मान लें कि यह शरीर हमारा नहीं और हम बिल्कुल आराम की स्थिति में बैठ जाएं। जहां तक संभव हो सके तनाव के बिना। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि यदि हमारे दिमाग में कोई भी स्ट्रेस या कोई भी तनाव, कोई भी प्रॉब्लम अगर चल रही है कि हमें ये करना है, अभी मुझे ये काम निपटाना है, या हमें कॉलेज जाना है, या हमें ये जॉब में ये प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से, आप अपने मस्तिष्क से यह सारी चिंताओं को अलग करके बैठ जाएं। जीभ को मुंह के बाहर बढ़ाएं, जीभ के किनारों को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब या नालिका जैसी बन जाए। जैसे दोस्तों आप अपने मुंह में, जैसे आपकी जुबान है, तो जुबान को इस तरीके से फोल्ड कर लें, यानी मोड़ लें, जैसे वो नालिका का शब्द, जैसे मैंने अभी लिया तो जैसे नाली का रूप होता है, यानी उसके बीच में एक जगह बन जाती है, उस तरीके से आपको मोड़ लेना है और इस ट्यूब के माध्यम से श्वास लेंगे, यानी जब वो रोल हो जाएगी तो उसी रोल के माध्यम से हमको श्वास लेनी है। श्वास लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस अंदर ले लें और
वैसे ही मुंह को बंद कर लें। नाक के माध्यम से श्वास को लेंगे, जीभ के किनारों को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब नालिका जैसी बन जाए और फिर हम जीभ को अंदर लेकर के श्वास को लेंगे। श्वास लेते समय तेज हवा के समान ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। जीभ और मुंह की छत पर बर्फीली शीतलता का अनुभव होगा। यह एक चक्र है, हम इस चक्र को 9 चक्र के रूप में कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम फिर से इस अभ्यास को एक बार करते हैं। किसी भी आरामदायक स्थिति में हम बैठ जाएंगे और उसके बाद मुद्रा करके घुटनों पर हाथ रख लें, आंखें बंद कर लें और पूरी तरह शरीर को शिथिल बना लें। जहां तक संभव हो सके तनाव के बिना ही जीभ को मुंह के बाहर बढ़ाएं, जीभ के किनारे को रोल करें ताकि यह एक ट्यूब या नालिका जैसी बन जाए। इस ट्यूब के माध्यम से श्वास लें। श्वास लेने के अंत में जीभ को मुंह में वापस ले लें और जीभ को मुंह में वापस लेने के बाद में उसे अंदर कर लें। नाक के माध्यम से श्वास को छोड़ें, मुंह से श्वास नहीं लेनी है। श्वास लेते समय तेज हवा के समान ध्वनि उत्पन्न होगी। जीभ और मुंह की छत पर यानी आपके पूरे मुंह में बर्फीली शीतलता का अनुभव होगा। यह अभी एक चक्र संपूर्ण हुआ। यही चक्र आपको पूर्णता 9 या 10 बारी करना है और किसी भी समय आप इस चक्र को कर सकते हैं। इस प्राणायाम यानी शीतली प्राणायाम को करने से हमारे पास कोई इसमें समय की बंधता नहीं है कि अगर हमने अभी खाना खाया है तो हम नहीं कर सकते हैं, हम शाम के समय नहीं कर सकते हैं। हम इस प्राणायाम को किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे पूरे शरीर को शीतलता प्रदान कर...

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: अच्छा, तो हम चलते हैं।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

छूले जमी से वो आसमां, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM आपकी अपने गोला शहर की धड़कन रेडियो ज्ञान स्थली, और मैं हूं आपकी आचरती। And क्या बात है बॉस, ओहो, घड़ी में वक्त हो चला है 8:45, इसका मतलब समझ रहे हैं आप। अगर नहीं समझ रहे तो हम आपको बता देते हैं, अगर आप अभी भी घर पे जूतों के फीते बांध रहे हैं या रास्ते पर इंतजार कर रहे हैं कि ट्रैफिक कब हटेगा, कब हम जाएंगे, या इंतजार कर रहे हैं भैया कि कब ब्रेकफास्ट बनेगा और कब जल्दी जल्दी सबको विदा करके आराम से खुद सुकून से बैठ के खाना खाने वाले, यानी कि ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, या उनमें से हैं जो सोच रहे हैं कि बस भाई एक बार ये सब चले जाए और एक बार अच्छी सी नींद और ले जाए, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के बाद नींद तो कम्प्लीट नहीं हुई है, रात में 2 बजे ही सोए थे, 4 बजे उठा दिया। तो भाई थोड़ा सा चिल कीजिए, जल्दबाजी में गाड़ी मत भगाइएगा और ना ही जल्दबाजी में कोई काम कीजिएगा, क्योंकि अब अगले 2 घंटे शहर के इस पूरे रश और ट्रैफिक और पूरे काम धाम के बीच में मैं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आर्जुनती लेकर आ चुकी हूँ आपका अपना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गोंडा। एंड और ऑफकोर्स हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आज 2 घंटे इस प्राइम आर में हम इंजॉय करने वाले हैं बहुत सारी बातें प्लस बहुत सारा म्यूजिक। आपका दिन यहीं से होने वाला है सेट, भले भाई कोई आपसे कह रहा हो कि ना ना ना ना तुमसे ना हो पाएगा, अगर ऐसी लाइन आपने कभी सुनी है या कल रात ही सुनकर आए हो तो भाई आज थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए रेडियो का, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपने फ़ोन का और उसको कहिए बॉस सुनो तो ज़रा, क्योंकि वक्त चल रहा है अब मेरा वाला, यानी कि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। एक खूबसूरत गाने के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने वाले कार्यक्रम में, आपके अपने वाले प्रोग्राम में, आपके मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपकी आर्जुनती मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में, और ऑफकोर्स आई थिंक आप लोगों की मॉर्निंग हो चुकी होगी, अगर हो गई है तो भैया चैट बॉक्स में जरा दर्शन दीजिए और तब तक इस गाने को इन्जॉय कीजिए जिसको हम छोड़ के जा रहे हैं। और गाना है उदित नारायण की आवाज़ में दिल दीवाना कहता है कि प्यार करके, भैया ऐसे ही गाने सुबह सुबह ज़रूरत होती है मूड बनाने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए। तो इन गानों को एंजॉय करते रहिए, इस गाने के उस पार आते हैं लेकर के आज का थॉट ऑफ द डे जो आपके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहता है। बने रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ख्यान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। और वक्त हो चला है आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ चलने का, जो आपसे कुछ कहना चाहता है। तो भैया आइए देख लेते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या कुछ कहता है।

आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि डर का सबसे खतरनाक रूप वह है जहां इंसान कोशिश करने से पहले ही अपने परिणाम की हार तय कर लेता है। यानी कि डर सबको लगता है, लेकिन डर खौफनाक और ख़तरनाक तब हो जाता है जब आप बिना कोशिश करे सोच लेते हैं कि अगर आप करेंगे तो आप हार जाएंगे, और वहीं पर इंसान की सबसे बड़ी हार तय हो जाती है। तो जब भी आप कोई नया काम करने जा रहे हों, जब भी कुछ करने की सोची हो आपने, कोई नया करियर स्टार्ट करना हो, कोई नया बिजनेस हो, कुछ नए स्टेप्स लेने हो, या फिर एडवेंचर की तरफ जाना हो, लाइफ में कुछ भी करना हो, डर सबको लगता है क्योंकि डर लगना लाजिम है। पर उस डर में अपना आखिरी चरण भी सोच लेना, ये सोच लेना कि सिर्फ और सिर्फ हार ही होने वाली है परिणाम में, ये होती है सबसे खतरनाक बात डर की। तो भाई डर से डरिए नहीं, क्योंकि डर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से कॉन्फिडेंस शुरू होता है। अगर आप जितना डरते हैं और उतना ही कदम आगे बढ़ाते हैं उस चीज़ के लिए जिससे आपको डर लगता है, तो फिर निर्माण होता है आपके कॉन्फिडेंस का। तो डर से डरना नहीं है, डर को समझना है, क्योंकि आपका मन सबसे पहले आपको रोकता है, क्योंकि उसे ज़रूरत होती है सुरक्षा की, ना कि वो कोई काम करना चाहता है। तो अगली बार जब कोई काम करने से आपको डर लगे, तो मान लीजिएगा कि आपका मन कहता है अपना कंफर्ट जोन ढूंढो, और जहां आपने कंफर्ट जोन पकड़ लिया ये सोच कर कि परिणाम में सिर्फ हार है, वहां पर आपकी सच में हार तय है। तो डर से डरिए नहीं, अपने एक एक कदम को आगे बढ़ाइए, जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ के ख़िलाफ़ ही बढ़ाइए, और अपने कैरेक्टर का, अपने स्टैंडर्ड्स का और अपने कॉन्फिडेंस का निर्माण होते देखिए। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे, जो बहुत ही छोटा, बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है आपको। आई थिंक आप सभी को आज का थॉट ऑफ द डे पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा चैट बॉक्स में, और इन्जॉय कीजिए। आपके लिए हमने लेकर आए हैं जालिमा सॉन्ग रईस फिल्म से, इन्जॉय करते रहिए। आपका अपना गुड मॉर्निंग गोंडा, इसके बाद चलेंगे आपके चैट बॉक्स में उन मैसेजेस की तरफ जो आपने लिख करके भेज दिए हैं। स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, और हम भी देखते हैं अक्सर अपने चैट बॉक्स की फोटो जब हमें याद आती है हमारे लिसनर्स की। फिलहाल आपका स्वागत करते हैं एक बार वापस से आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गुना में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और वक्त हो चला है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, दीदार करने का कि आपने क्या पैगामात भेज दिए, क्या कुछ लिखकर भेज दिया है, क्या मैसेजेस आ चुके हैं आपके चैट बॉक्स में।

हां जी, तो आज के शो में जो सबसे पहले मैसेज आया था वो आया है नव्या जी का, जो लिख रही हैं गुड मॉर्निंग, गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड, ओके इतना सारा गुड है कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा फिलहाल के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कितना सुहाना मौसम है आज का। जी हाँ, बेशक ये बात तो आपने सही फरमाई है। आज सुबह उठते ही जो ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छू कर गया था, आई वॉज लाइक वो मैं कहीं और तो नहीं जग गई या मैं अभी सपने में हूँ, क्योंकि आज सुबह, आज से पहले जो सुबह मैं उठ रही थी वो खोलती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा सुबह हो ही नहीं रही, डायरेक्ट दोपहर हो रही है, और दोपहर का तो पूछिए ही मत। फिलहाल नव्या गोंडा जी, आपका हम स्वागत करते हैं। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जब सुनते हैं आवाज़ विकास से लिखा है नमस्ते, नमस्ते टू यू, एंड नव्या जी को भी नमस्ते लिखा है FF। ओके, हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ी है, लिख रही है शुभ प्रभात, शुभ प्रभात आपको भी। एंड मैं आंखें चार कर ली रही मैम बरेली वाली से। क्या बात है जनाब, क्या बात है मदर मैम, बड़ी खूबसूरत बात लिख देती हैं आप और हम शर्मा जाते हैं आपके मैसेज पढ़ के। इसके बाद काफ़ी सारे इमोजीज आए हैं सविता जी की तरफ से ही, थैंक यू सो मच। और सविता जी का सवाल है, सब कोई सो रहा है। जी हाँ, आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी थोड़ी कम है, इसीलिए हर कोई अपनी नींद, अपनी मीठी मीठी नींद का आनंद ले रहा है। फिलहाल आप भी आनंद लीजिए इस प्यारे से गाने का, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, क्योंकि भाई आज हमारे पास है आपके लिए काफ़ी कुछ। और हमारे बीच में एक इंडियन पोइट, एक ऐसे शायर अब नहीं रहे हैं जिनकी गज़लों ने, जिनकी शायरियों ने मोहब्बत, जिंदगी और सामाजिक मुद्दों जैसी बातें की हैं, जिन्होंने हमें जीना सिखाया है, जिन्होंने प्यार करना सिखाया है, और आज वो हमारे बीच नहीं है, बताते हैं। लेकिन उससे पहले चाय करें छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक को, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया है मैंने, फूलों में छिपा हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीन, जो छोड़ दिया उसे फिर मुड़कर नहीं देखा। ख़त ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ की जिसके कोई जेवर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छू कर नहीं देखा। ये बेहतरीन सी लाइन, ये बेहतरीन सी गज़ल लिखी थी बशीर बद्र साहब ने, जो अब हमारे बीच नहीं है। इतनी खूबसूरत लाइंस, इतनी खूबसूरत शायरी, इतनी खूबसूरत गज़ल लिखी है उन्होंने, जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी। भले ही आपको बशीर बद्र साहब की गज़लों का नाम ना पता हो, लेकिन आपने उन्हें कभी ना कभी ज़रूर गुनगुनाया होगा। जी हाँ, एक ऐसा नगीना, एक ऐसी शख्सियत अब हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने हमें बहुत बहुत कुछ दिया है। बट आपको पता है मात्र 7 साल की उम्र क्या होती है, जब बच्चे शायद सही से बोल भी नहीं पाते, जब बच्चे याद कर रहे होते हैं, जब बच्चे स्कूल जाने से पहले जमीन पर पैर पटक पटक के रो रहे होते हैं कि मुझे नहीं जाना। उस उम्र में उन्होंने अपनी पहली कविता, पहला शेर लिखा था। जब वे 7वीं कक्षा में आए थे, तब उनकी एक पहली गजल उस समय में मशहूर हो चुकी थी, एक मशहूर साहित्यकार पत्रिका निगार में छपी थी। बशीर बद्र साहब ने अपने उच्च शिक्षा के दौरान कुछ समय तक पुलिस विभाग में नौकरी भी की थी, लेकिन उन्होंने शायरी से इस कदर मोहब्बत की थी, इस कदर गजलों को अपना बनाया था कि उन्होंने वो पुलिस की नौकरी को छोड़कर शायरी लिखना जारी रखा था। हम आपको बता दें, साहित्य के प्रति अपने लगाव और आगे की पढ़ाई BA, MA, PhD के लिए उन्होंने 1967 में पुलिस की नौकरी को त्याग दिया था। बाद में वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय और मेरठ कॉलेज में उर्दू के प्रोफेसर भी रहे थे। बशीर बद्र साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू की PhD की उपलब्धि की थी, लेकिन उसमें भी एक दिलचस्प वाक्या ये है कि उन्होंने उर्दू साहित्य में गज़ल की समालोचना के क्षेत्र में अपने शोध का विषय आज़ादी के बाद उर्दू की गज़ल लिखी थी। बशीर बद्र साहब, जिनकी गज़लें आप अक्सर सुना करते हैं, अक्सर गुनगुनाया करते हैं, अक्सर रेडियो पर सुनते हैं, और न जाने कितनों को भेजते हैं जब भी आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बात आपको बयां करने होते हैं और आप शब्द नहीं खोज पाते हैं कि किन शब्दों में अपनी फीलिंग्स को बयां करूं, किन शब्दों में उन्हें दूसरों तक पहुंचाऊं, तब भाई बशीर बद्र साहब की शायरी आपको याद आती है और आप उन्हें शौक से बताते हैं। एक वो शायरी है जो अक्सर आपने सुनी होगी कि बशीर बद्र साहब कहते हैं, किसी को परखना मत, परखने से अपने खो जाते हैं। तमाम शेरों, तमाम शायरी उनकी इंटरनेट पे वायरल हैं, और कल 28 मई 2026 को उन्होंने हमें, इस दुनिया को, इस खूबसूरत जहां को अलविदा कहकर शेरों की दुनिया में चले गए। यूं तो जब हम उनकी शायरियां सुनते हैं, उनकी गजलों को सुनते हैं, तो कई लोग सवाल करते हैं, बशीर बद्र साहब हैं कौन? बट जब उन्हें कोई स्पेसिफिक लाइन सुनाई जाती है

तो वो आकर कहते, अरे ये तो मैंने सुनी है। हाँ आपने सुनी है, बस आपने राइटर का नाम नहीं जाना। एक इंडियन पोएट, एक भारतीय शायर बशीर बद्र साहब, फिलहाल उनकी आपकी पसंदीदा शायरी कौन सी है, कौन सी गजल आपको सबसे ज्यादा प्यारी है उनकी, चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: ओ यार एक गल दस।
2: हाँ पूछो पाजी। ये लोगा साड़ी पत्नी नू धर्म पत्नी कहंदे सी, तो साड़े साले नू धर्म साला क्यों नहीं कहंदे? पूछदा है भारत।

हाँ जी, तो इस खूबसूरत गाने के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। और भैया, ये क्या खबर आ रही है आज सुनने में? कुछ नया आया है सुनने में, ये आया है कि किसी ने किसी का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है छक्के लगाने में। और उन भाई साहब की उम्र भी 15 साल है। क्या बात है। चलिए हम आपको बता देते हैं ये भाई साहब हैं कौन और किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है।

हां जी, तो हम आपको बता दें, 15 वर्षीय भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है वो बनाया है 15 साल के भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने। उन्होंने आईपीएल 2026 के एलिमेंट्री मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। मैं आपको बता दे भाई, वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने 2012 के आईपीएल सीजन में कुल 59 छक्के जड़े थे और अब नया रिकॉर्ड जो कायम हुआ है वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए इस युवा बल्लेबाज ने गेल के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सीजन में 60 से ज्यादा छक्के लगाए हैं। अनुमानन बताया जाए तो 65 के अप्रॉक्स, और इन भाई साहब की उम्र है मात्र 15 साल। 15 साल, क्या कितनी बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में किसी ऐसे क्रिकेटर के रिकॉर्ड को तोड़ना जिसका नाम हर किसी के जुबान पर हो। 14 साल पुराना रिकॉर्ड जो मात्र 15 साल के बच्चे ने तोड़ दिया है, जहां 15 साल के बच्चे को हम ये कहते हैं कि भैया मैथ पढ़ोगे कि साइंस, और वो बेचारा सोच रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लूँ, वहीं पर एक है जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा भाई कि वैभव सूर्यवंशी आई थिंक जी, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, और अगर आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी, आरसीबी, क्योंकि भैया अगर मेरी बात की जाए तो हम वर्ल्ड कप वाले हैं जब हम इंडिया चिल्लाते हैं बैठ करके, लेकिन मुझे पता है भाई आईपीएल का क्रेज़ आजकल थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट करना सोच लिया है, किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं और क्या आपकी टीम जीत चुकी है, बताइएगा जरूर चैट बॉक्स में, और एंजॉय कीजिए इस गाने को। इस गाने के उस पार आते हैं लेकर के आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक है मेरे पास, जो आप तक पहुंचानी है, लेकिन बताएंगे इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

सुखविंदर सिंह की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं छैया छैया। और एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके मॉर्निंग स्पेशल वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन। एंड वेल दोस्तों, आपसे एक सवाल था, मेरा सवाल ये था कि आप में से कितने ही लोग हैं जो कभी भी हरिद्वार या फिर बनारस गए होंगे, और अगर आप गए हैं तो आप में से कितने ही लोग हैं जो हमेशा घाट पर जाना पसंद करते हैं। आई थिंक आप में से हर वो इंसान होगा जो कभी इलाहाबाद, कभी बनारस या फिर कभी भी हरिद्वार गया होगा और उसने घाट की तरफ रुख ना किया हो, क्योंकि भाई घाट की शाम बड़ी खूबसूरत होती है और गंगा के ठंडे पानी में डुबकी लगाना फेवरेट होता है। बट इस दौरान आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक चीज़ नोटिस की होगी, और वो चीज़ ये है कि आजकल गंगा का पानी बहुत गंदा होता जा रहा है, बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा आपको किनारों पे नज़र आता जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि यार सरकार क्या कर रही है, ये दुनिया क्या कर रही है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी चीज़ों को अपने पुराने कपड़ों को, अपने न जाने कितनी चीज़ों को लेकर आते हैं और वो गंगा जी को दे जाते हैं। बट इस दौरान होता क्या है, होता ये है कि किनारों पर बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो रही है, इतनी ज़्यादा कि गंगा के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं पर इसका सीधा असर पड़ता है। प्लस जो लोग नहाने जाते हैं, जो श्रद्धालु जाते हैं डुबकी लगाने, उन पर उनकी सेहत पर भी इसका असर साफ दिखता है। बट इसी दौरान एक ऐसे भी इंसान है जो सामने निकल कर आए हैं, जिन्होंने घाट को साफ करने का मुद्दा उठा लिया है अपने कंधों पर। वो घाट पर फेंके गए कपड़ों को, प्लास्टिक को, कचरे को रिसाइकिल करते हैं, और वो कौन है आइए उनके बारे में आपको हम कुछ बताते हैं।

0: हां जी, तो भाई ये भाई साहब हैं जो बनारस के घाट पर गए थे गंगा में डुबकी लगाने, और जब वो घाट पर गए तब उन्होंने देखा कि भाई आसपास बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा पड़ा है, इतना ज्यादा कि श्रद्धालु ठीक से पैर भी नहीं रख पाते हैं, और इस गंदगी में नहाने से बड़ी बात है आप जिनको माँ का नाम देते हैं, जिनको देवी कहते हैं, उनको इतना गंदा कोई कैसे रख सकता है। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि जो श्रद्धालु यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार चीज़ें छोड़ कर जाते हैं, जिसमें उनके पुराने कपड़े शामिल हैं डुबकी लगाने के बाद, इन कपड़ों का क्या किया जाए। आम इंसान या फिर कहें तो जिसके पास शायद क्रिएटिव माइंड नहीं होता, उसके पास सिर्फ एक ही ख्याल होता, सफाई कि कैसे भी म्यूनिसिपलिटी को बुलाया जाए, सफाई की जाए, और सफाई के बाद यहाँ का सारा कूड़ा उठाकर कहीं और फेंक दिया जाए, कहीं और डंप कर दिया जाए। बट देवांशु ने ये नहीं सोचा। जी हम आपको बता दें, एक ऐसा इनिशिएटिव लेकर आए हैं देवांशु उपाध्याय, जिनके इनिशिएटिव के आगे आज हर कोई सर झुका रहा है। हम आपको बता दें, पर्यावरण कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक ऐसी खबर, या फिर कहें तो वही वो जो एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो युवाओं के लिए, जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, उन्होंने बनारस और कानपुर जैसे घाटों पर देखा है जाकर के कि जो लोग कपड़े छोड़ जाते हैं, उनके उन कपड़ों को, उन कचरों को उठा करके वो अपने पास लाते हैं, रिसाइकिल करते हैं और उन्हीं कपड़ों का बैग बनाते हैं। जी हाँ, आप जो कपड़े फेंक कर आते हैं उन्हें गलने में सालों लग जाते हैं, उनके धागे कभी मछली के मुंह में फंस जाते हैं, कभी किसी पंछी के पांव में फंस जाते हैं। जो कचरा हम डालते हैं उसका सीधा असर जीव जंतुओं पर पड़ता है, फिर हम पर पड़ता है। और ये बात हर एक दूसरा इंसान जानता है कि नदियों को गंदा करना, समंदर को गंदा करना, महासागरों को गंदा करना, या फिर अपने आसपास ही किसी भी पानी के स्रोत को गंदा करना गलत है। इसके बाद भी हम गंगा जैसी पूजनीय नदियों को गंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार नया कदम उठाएगी और सरकार इस पूरी गंदगी को साफ करेगी। पर जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है, जनरेशन बदलती जा रही है, वैसे वैसे अब जनरेशन गैप मेंटेन करते हुए नई जनरेशन ने ये कसम खा ली है कि वो अपना काम खुद करेंगे, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बनारस का घाट हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे गोवा का बीच ही क्यों ना हो, चाहे मुंबई की लहरें क्यों ना हो, हर जगह हम खुद सफाई करेंगे। और ये चीज आजकल इंटरनेट पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग भी चल रही है। युवा, देश के युवा या फिर कहें तो जेन जी, जिन्हें अक्सर लोग न जाने क्या क्या बोल के ट्रॉल कर देते हैं कि भाई जेन जी की तो समझ ही नहीं आता क्या बातें करते रहते हैं, क्या क्या नई चीजें निकालते रहते हैं, वहीं पर जेन जी अब पर्यावरण को अपने हाथ में ले चुका है। जी हाँ, हम आपको बता दें, ये नई जनरेशन का एक शपथ है कि भाई वो अपने पर्यावरण को खुद साफ करेंगे, वो किसी और का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई संस्था आएगी, कोई म्यूनिसिपलिटी की पार्टी आएगी, कोई सरकार आएगी, कोई नई योजना बनेगी जिसके तहत गंगा की सफाई होगी, यमुना की सफाई होगी, पहाड़ों की सफाई होगी। उन्होंने कसम खा ली है कि गंदगी हमने फैलाई है तो साफ भी हम ही करेंगे। और इसी बीच देवांशु उपाध्याय ने भी कसम खा ली है कि जो कचरा, जो कूड़ा, जो कपड़ा बनारस के घाट या फिर गंगा के घाट पर मुझे मिलेगा, उसको रिसाइकिल करके बैग बना दिया जाएगा। और कमाल की बात यह है कि जब वो बैग बनकर आता है तो गंगा के घाट पर रहने वाले वो औरतें, वो आदमी जिनको रोजगार नहीं मिलता, जिनकी कमाई नहीं हो पाती, वो उन्हीं बैग को बेचकर अपना घर भी चला रहे हैं। प्लस जो श्रद्धालु वहाँ आते हैं डुबकी लगाने, उन्हें जब बैग्स की ज़रूरत होती है अपने गीले कपड़े रखने के लिए, तो अब वो पॉलिथीन वाले बैग्स को छोड़कर उन रिसाइकल्ड कपड़ों के बैग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो भाई अगर आप घाट पर जाएं और आपको भी कोई ऐसा इंसान दिखाई पड़े जो पॉलिथिन्स के बैग बेच रहा है तो कोशिश कीजिएगा उन बैग्स को ना लें, क्योंकि आप 2 रुपए में 10 रुपए में उन बैग्स को खरीद तो लेते हो, बट जैसे ही घर आते हो अपने कपड़े निकालते हो और वो पॉलिथिन वाले बैग्स पड़े होते हैं कहीं भी, कूड़े में, कचरे में, और फिर हमारे भूमि को यानी कि हमारी पृथ्वी को और भी ज़्यादा गंदा करते जा रहे हैं। ये बढ़ती गर्मी, कम मौसम की बारिश और बेमौसम की बारिश और बहुत कम सर्दी, ये इसका सीधा सिम्टम है, सीधा लक्षण है, सीधा बता रहा है भाई कि इंसानों ने कितनी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। तो कोशिश कीजिए कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, क्योंकि जब आप पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं तो पर्यावरण आपकी सुरक्षा का ख्याल करता है। बट अगर आप यूं ही पेड़ काटते रहेंगे तो भैया फिर गर्मी यूं ही बढ़ती जाएगी और आसमान में बादल यूं ही कम दिखते रहेंगे, और फिर सवाल मत कीजिएगा कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ने का कारण ये है कि आपके शहर में पेड़ों की तादाद बहुत कम है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन, जिसकी वजह से गर्मी, जिसकी वजह से ही न जाने कितनी बीमारियां आपके घर तक पहुंच रही हैं। जी भैया, चाहे घाट हो, चाहे शहर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे बीच ही क्यों ना हो, जहां भी जाते हैं कोशिश कीजिए गंदगी ना फैलाएं। पेड़ काटने से बेहतर है पेड़ लगाएं, उनकी सुरक्षा करें, और अगर कोई पेड़ काट भी रहा है तो उसे सवाल जरूर करें कि आफ्टर ऑल क्यों पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी तक हमने क्यों नहीं पूछा है, इसीलिए इसका खामियाजा अब हम भुगत भी रहे हैं, बढ़ती गर्मी से, न जाने कितनी बीमारियों से और प्राकृतिक आपदाओं से। फिलहाल आप बताइए देवांशु उपाध्याय का ये काम कैसा लगा और आपके क्या ख्याल हैं पर्यावरण को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों से जो क्यों का सवाल नहीं करते, क्योंकि आपको क्यों का सवाल करना ज़रूरी है अपने लिए, अपनों के लिए और अपनी अर्थ के लिए। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के इस बार आते हैं बताते हैं और भी चीज़ें हैं और भी बातें हैं जो आपसे शेयर करनी है, लेकिन इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12।
9: स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास सपोर्ट, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस अकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम यानी कि मॉर्निंग का स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी अपनी आरजनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने स्टूडियो में। और हम इंजॉय कर रहे थे इस खूबसूरत से गाने को। और फिलहाल इस गाने के उस पार आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे जज्बे की कहानी, एक ऐसा जज्बा जिसने 13 लोगों की जान बचाई है आग में कूद कर। तो कौन है वो, आइए बताते हैं।

हां जी, तो हम आपको बता दें, दिल्ली के बुराड़ी इलाके में देर रात भीषण आग लग गई थी और उस भीषण आग के बीच में दिल्ली का एक पुलिस जवान कूद पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई उस बिल्डिंग के अंदर लोग फंस गए थे और उन लोगों में मेनली जो फंसे थे वो थे दृष्टिहीन, यानी कि जिन्हें आंखों से नहीं दिखता, जिन्हें हम ब्लाइंड कहते हैं, वो छात्र। ये घटना 16 और 17 मई के दरमियान रात करीब 2:30 बजे दरोगा मार्केट बुराड़ी में हुई थी। जानकारी के मुताबिक, हम आपको बता दें, उस दौरान वहां पर हेड कांस्टेबल अमर सिंह की ड्यूटी थी और वो अपनी नाइट पेट्रोलिंग पर थे। तभी उन्होंने देखा कि स्थानीय निवासी उन्हें बाजार में आग लगने की सूचना दे रहे हैं। अमर सिंह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और ग्राउंड फ्लोर की 8 दुकानों में भीषण आग लगी हुई देखते हैं। आग की लपटें ऊपर मंजिल तक जा रही थी, सीढ़ियां पूरी तरह आग की चपेट में आ चुकी थी। अगर इस वक्त वो इंतजार कर रहे होते बैठ करके कि कब फायर ब्रिगेड आएगा, कब आग बुझाई जाएगी और कब हम इसके अंदर जाके लोगों की जान बचाएंगे, तो क्या होता? हम आपको बता दें, इसी दौरान अमर सिंह की नज़र दूसरी मंजिल पर फंसे एक युवक और एक महिला पर पड़ती है। दोनों धुएं और आग की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। नीचे अफरा तफरी का माहौल था और कोई भी मदद के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि हर किसी को डर था कि अगर आग की चपेट में आएंगे तो क्या होगा। हालात को गंभीर देखते हुए हेड कांस्टेबल अमर सिंह ने तुरंत वहीं मौजूदा लोगों को सुरक्षित जगह भेजा, प्लस सड़क से गुजर रहे एक ट्रक को रुकवाया, फिर अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रक की छत पर चढ़कर दूसरी मंजिल की बालकनी तक पहुंच चुके थे। घने धुएं और तेज आग के बीच उन्होंने दो लोगों को एक एक करके अपने कंधे पर उठाया, ट्रक की छत तक लाकर सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है, ऐसा करके उन्होंने 13 लोगों की जान बचाई थी उस रात। उनके जज्बे को सलाम है। और उन 13 में से 11 लोग नेत्रहीन थे, यानी कि उन्हें दिखता नहीं था वो

खेल कर अपने जज्बे को दिखाता है या फिर किसी की जान बचाता है तो हम उसे शाबाशी देने भी नहीं चाहते। फिलहाल अमर सिंह ने अपनी जान पर खेल के 13 लोगों की जान बचाई, 11 स्टूडेंट्स और 2 यानी कि वो कपल जिनको उन्होंने सबसे पहले वॉल्केनी में देखा था। अगर शायद वो उस वॉल्केनी में लोगों को ना दिखते, उन्हें ना पता होता कि बिल्डिंग के अंदर 2 लोग पहले से मौजूद हैं, वो कपल जो वॉल्केनी में आके खड़ा था, तो शायद अमर सिंह भी अंदर नहीं जाते। बट उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई, सड़क पर जा रहे ट्रक को रोका, ट्रक पर चढ़कर बिल्डिंग पर छलांग लगाई, आग में उस धुएं के दौरान उस धुएं के बीच में जाकर 13 लोगों को सही सलामत जिंदा उस बिल्डिंग से निकाला बिना कोई सेफ्टी के। उस वक्त उनके पास ऐसा कोई सेफ्टी जैकेट नहीं था जिसको पहनकर आग में कूदेंगे और जान बच जाएगी, ना आसपास के लोग सामने आ रहे थे कि आप चलिए हम आपके पीछे पीछे आते हैं। और मुझे लगता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आज का थॉट ऑफ द डे बहुत क्लियर हो जाता है, जो कहता है कि डर आपके हर एक चीज को रोकता है। जी हाँ, डर का सबसे खौफनाक रूप जो होता है वो यही होता है कि आप परिणाम की चिंता पहले करते हैं, हार की चिंता पहले करते हैं, काम बाद में करते हैं। और ये बात साफ है कि भाई अमर सिंह ने जिस तरह से बिल्डिंग में छलांग लगाई, डर उन्हें भी लगा होगा, लाजिम लगा होगा, बट उन्होंने डर को साइड किया और फुल कॉन्फिडेंस में किसी की जान बचाने के लिए अंदर कूद गए। भाई सल्यूट है अमर सिंह को रेडियो ज्ञान असली की तरफ से। और आपके ख्याल क्या कहते हैं चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस कहानी के स्वर आते हैं और आपके चैट बॉक्स की तरफ रुख करते हैं, जो आपके मैसेजेस आए हैं, जो आपके पैगाम आए हैं, जो आपके फीडबैक्स आए हैं आज के शो को लेकर के, वो पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन से गाने को, केके की आवाज़ में क्या मुझे प्यार है। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भाइयों आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 99.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। एंड वक्त हो चला है आपके मैसेजेस की तरफ चलने का। तो मैसेजेस में हमने लास्ट मैसेज जो पढ़ा था वो था सविता दुबे जी का, और उसके बाद मैसेज किया है मन्ने शर्मा जी ने, लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। धर्मेंद्र मोहन जी जो हमें सुनते हैं आवाज़ विकास से, लिखा है रुचि जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग गोंडा में आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू सो मच। आपका भी स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। नाइस सॉन्ग लिखा है, थैंक यू सो मच, बेस्ट सॉन्ग, थैंक यू सो मच। प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। मिश्रा ऑप्टिकल जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं उस बच्चे को मैच में इतना लगाव लगन है कि वो आज प्रेरणादायक बन गया। जी हाँ, बेशक आपने सही कहा। धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं संस्कार ही संस्कार में एक संस्कार ये भी शामिल है, स्वच्छता संस्कार, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं मानो हीरा निकल रहा है कचरे की खान से। जी बिल्कुल सही कहा आपने भाई, सफाई बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। एंड इसके बाद बेबी जॉन हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, एंड आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। सॉन्ग को लेकर रेटिंग आई है आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच। नव्या जी लिख रहे हैं गुड गुड गुड गुड गुड मॉर्निंग सर, ओके गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद आप ही के मैसेजेस हैं काफ़ी सारे। मुस्तफ़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आर के श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड अदनान सर आपको कल मिलेंगे, आपसे उनकी मुलाकात कल होने वाली है जिसमें आपको ज़रूर कंटेंट सुनने को मिलेगा। जिसको कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है वह धैर्य रख कर सारे काम अपने ठीक तरीके से करते हैं, उस सिपाही को मेरा जय हिंद, थैंक यू सो मच। एंड एक और लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं जिनका स्वागत कर लेते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। फिलहाल आप एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा का एक खूबसूरत गाना लंबी जुदाई, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप एंजॉय कर रहे हैं कोई मिल गया। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी आपसे अपनी कॉल ट्यून कोना में 3 से 5 फ्राइडे का स्पेशल प्रोग्राम, तो सुनना मत भूलेगा। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM की फ्रिक्वेंसी पर रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी कोना शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
10: सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी अपनी दोस्त जया और आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना शो गांव की गूंज। आज हमारी पूरी टीम यानी मैं, समता दी, गीता दी और किरण दी खड़े हैं पंजाब की उस पावन धरती पर, जहां हर सांस में मेहनत की खुशबू है और हवाओं में घी, गुड़ और प्यार की मिठास खुली हुई है। यहाँ की मिट्टी जैसे हर आने वालों को अपने पन से गले लगा लेती है।
11: बिल्कुल सही कहा जया, जैसे ही हमारी गाड़ी ने इस खूबसूरत गांव नूरपुर कला की सीमा को छुआ, खिड़की से बाहर का नजारा देखकर तो मैं तो जैसे कुछ पल के लिए खो ही गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने पूरे खेतों पर पीले रंग की सुनहरी चादर बिछा दी हो। दूर दूर तक लहलहाती सरसों, उनके बीच से गुजरती हुई हवा और वो हल्की सी मिट्टी की खुशबू, दिल को एक अजीब सी शांति दे रही थी।
2: और सिर्फ खेत ही नहीं समता, यहाँ के लोग भी उतने ही रंगीन और दिलदार हैं। रास्ते में हमें जो भी मिला, हर किसी ने मुस्कुराकर जी आया नू कहकर हमारा स्वागत किया। ऐसा अपनापन शहरों में कहाँ देखने को मिलता है। और गीता दी, आपने देखा वो बुजुर्ग बाबा जी जो बरगद के पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठे हुए हैं? देखिए कैसे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं।
12: हाँ किरण, मैंने उन्हें बहुत गौर से देखा। उनकी सफेद दाढ़ी, रंग बिरंगी पगड़ी और चेहरे की झुर्रियों में छिपी वो गहरी मुस्कान, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर पूरे जीवन की कहानियाँ लिखी हूँ। जब हम उनके पास से गुजरे तो उन्होंने धीमे से कहा, पुत्र खुश रहो, रब रखा। उस एक आशीर्वाद में इतना स्नेह था कि मेरा तो दिल भर गया।
13: सच में यही तो है असली पंजाब, जहाँ खेतों में हरियाली है, दिलों में सादगी है और हर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। यहाँ की हर गली, हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे कोई कहानी कह रहा है।
11: और जया, क्या तुमने गौर किया, दूर से ढोल की हल्की हल्की आवाज भी आ रही है। लगता है गांव में कहीं और छोटा सा जश्न भी चल रहा है, शायद फसल की खुशी या फिर कोई पारिवारिक समारोह हो सकता है। यहाँ तो हर छोटी बात भी उत्सव बन जाती है।
2: और हाँ, वो देखो उधर खेतों में काम करते किसान, उनके चेहरे पर थकान तो है लेकिन उससे कहीं ज्यादा संतोष और गर्व है। ये वही लोग हैं जो अपनी मेहनत से हमारे देश का पेट भरते हैं। सच में इनकी जिंदगी एक प्रेरणा है।
12: और इन खेतों के बीच से गुजरती हुई कच्ची पगडंडी को तो देखो, कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें अपने अंदर किसी सादगी भरी दुनिया में घसीट कर ले जा रही हो। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ हर पल जैसे ठहर कर जीने का मन करता है।
13: तो आइए आज हम आपको इस खूबसूरत गांव नुपुरपुर कला की सैर कराएंगे, यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे, उनकी कहानियाँ सुनेंगे और उनकी खुशियों और संघर्षों को महसूस करेंगे।
11: और साथ ही जानेंगे कि इस मिट्टी में ऐसा क्या है जो हर दिल को छू जाता है।
2: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक दिल को छू लेने वाला सफर।
12: और गांव की गलियों से खेतों की खुशबू तक
13: और इंसानियत की सबसे सच्ची आवाज के साथ
5: स्वागत है आपका गांव की गूंज में।

0: अरे वाह, इस मधुर संगीत ने तो जैसे पूरे माहौल में जान डाल दी है। ढोलक की थाप और हवा में घुली सरसों की खुशबू, दिल अपने आप ही झूमने लगता है। और इस वक्त हम खड़े हैं कहाँ? गुरु नाम सिंह जी के विशाल खेत में। और चारों तरफ नजर दौड़ाइए, जहाँ तक आंख जाए बस हरियाली ही हरियाली है। सच कहूँ, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसे पंजाब का अन्न भंडार भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
1: बिल्कुल किरण दी, और देखो ना, इस मिट्टी का रंग भी कितना गहरा और समृद्ध है, जैसे इसमें वर्षों की मेहनत, परंपरा और प्रकृति का आशीर्वाद मिला हो। गीता दीदी, आप तो हमेशा बारीकियों पर ध्यान देती हो, आपको यहाँ की खेती में सबसे खास क्या लगा?
2: यहाँ आकर सबसे ज्यादा जो चीज दिल को छूती है वो है परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम। एक तरफ पुराने समय की वो कुएं जिनमें कभी बैलों के सहारे पानी निकाला जाता था, उनकी यादें आज भी जिंदा हैं, और दूसरी तरफ आज की किसान ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम और सोलर पंप जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: अरे वाह, मैंने गौर किया कि यहाँ के खेतों में जो पानी है उसकी एक बूंद भी बेकार नहीं जाती। हर चीज को इतने व्यवस्थित तरीके से किया जाता है कि प्रकृति का सम्मान भी बना रहे और फसल भी अच्छी हो।
2: बिल्कुल, यहाँ का किसान अब सिर्फ हवा चलाने वाला ही नहीं रहा, बल्कि वो एक वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति बन चुका है। उसे पता है कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, कितनी खाद देनी है और पानी का सही उपयोग कैसे करना है। यही वजह है ना कि यहाँ की जमीन हर साल सोना उगलती है।
3: पंजाब को पांच नदियों की धरती भी कहा जाता है, और उन्हीं नदियों के आशीर्वाद इन खेतों में साफ दिखाई देते हैं। वो देखिए, वो सामने बहती नहर चांदी की लकीर जैसी चमक रही है।
1: सच में जया, ये नहरें ही तो इस गांव की जीवन रेखा हैं। जैसे शरीर में खून बहता है, वैसे ही इन खेतों में पानी बहता है, और पानी ही तो जीवन है, फसलों का भी और किसानों का भी। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ खेती सिर्फ एक काम की नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ हर बच्चा, हर बुजुर्ग इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जैसे ये खेत उनकी पहचान हो।
0: अभी मैंने गुरनाम सिंह जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि पुत्र, ये जमीन हमारी माँ है, हम इसे जितना प्यार देते हैं ये हमें उससे कई गुना वापस देती है। सुनकर सच में दिल भर आया।
2: और यही रिश्ता इस मिट्टी को इतना खास बनाता है, यार मेहनत और विश्वास का रिश्ता।
3: तो दोस्तों, इस हरियाली, इस मेहनत और इस अनमोल मिट्टी को सलाम करते हुए चलिए इस ताजी हवा और खेतों की खुशबू के बीच सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: भी इसी तरह छू जाए जैसे हमें ये नजारा छू रहा है।
0: बने रहिए हमारे साथ,
2: क्योंकि सफर अभी जारी है गांव की गूंज के साथ।

0: अब हम गांव के अंदरूनी हिस्से में हैं और सच कहूं तो यहां आकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। यहां के घर ओहो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मजबूत, भव्य और किसी भी अकेलेपन से ये बिल्कुल भरा हुआ नहीं है, जहां रंग बिरंगी पीढ़ियां छोटी कुर्सियां जैसे सजी हुई हों।
1: बिल्कुल समता और जया, तुमने एक बात और नोटिस की है, यहाँ के घरों की दीवारें सिर्फ सीमेंट की ही नहीं है बल्कि उन पर हाथों की मेहनत और कला की छाप है। मिट्टी के लेप से बने खूबसूरत पैटर्न, रंगों से कई चित्रकारी, औरतें इससे चौक पूर्णा कहती हैं। हर डिजाइन जैसे कोई कहानी कह रहा हो, खुशी की, त्योहारों की और परंपराओं की।
2: हाँ किरण, और ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये उनके जीवन का हिस्सा है। मालूम है, मैं एक घर के अंदर गई और वहाँ जाके देखा, फर्श इतना साफ कि जैसे अभी अभी धोकर चमकाया गया हो, बर्तन एकदम करीने से सजे हुए चमकदार, हर चीज अपनी जगह चकाचक।
0: बिल्कुल, और खास बात ये है कि ये सफाई सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी उतनी ही दिखाई देती है। मैंने ध्यान दिया, किसी भी घर के सामने कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं पड़ा है, हर गली साफ, हर मोड़ साफ सुथरा, जैसे पूरा गांव मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो।
1: और ये सब सिर्फ औरतों का काम नहीं है, यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों ही बराबर मेहनत करती हैं। सुबह से लेकर शाम तक कभी खेतों में, कभी घर की देखभाल, कभी पशुओं की सेवा, हर काम दोनों समान मिलकर करते हैं।
2: और हाँ, मैंने एक घर में और देखा, चाची जी रसोई में तंदूर पर रोटियां बना रही थी और उनके साथ ही चाचा जी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे और पशुओं को चारा भी दे रहे थे। दोनों के चेहरे पर थकान थी लेकिन उससे ज्यादा कहीं संतोष झलक रहा था।
0: और ये जो मेहनत है ना, यही इस मिट्टी की असली ताकत है। यूं ही नहीं कहा जाता है, पंजाबियों के हाथों में सोना होता है। ये लोग जहाँ भी मेहनत करते हैं वहाँ समृद्धि अपने आप चली आती है।
3: सच में, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हैं। ना सिर्फ अपने घर को साफ रखते हैं बल्कि अपनी जगह को भी उतना ही महत्व देते हैं। पेड़ पौधों का ख्याल रखना, पानी की बचत करना और गांव को स्वच्छ बनाए रखना, ये सब इनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है।
1: और देखो देखो, हर घर के बाहर छोटे छोटे गमले भी रखे हैं, कहीं तुलसी का पौधा, कहीं गेंदे का फूल, कहीं गुलाब, जैसे हर घर अपनी खुशबू से पूरे गांव को महका रहा हो।
2: देखो आंगन के उस कोने में वो जो बड़ा सा एक मिट्टी का तंदूर रखा है ना, उसकी तो बात ही अलग है। अभी अभी एक चाची जी ने हमें गरम गरम रोटी सेक कर खिलाई, जिस पर सफेद मक्खन इतना ज्यादा लगा हुआ था कि सच में रोटी का वजन संभालना मुश्किल हो रहा था।
0: और उस रोटी में सिर्फ स्वाद ही नहीं था, उसमें उनके हाथों की मेहनत और दिल का प्यार भी मिला हुआ था।
3: यही तो है पंजाब का असली दिल, मेहनत, सादगी, सफाई और ढेर सारा प्यार। यहाँ हर घर एक कहानी है और हर आंगन एक एहसास है
1: और हर इंसान एक मिसाल है मेहनत और जागरूकता की।
2: तो चलिए इस खूबसूरत जीवन शैली और इन सच्चे लोगों को दिल से सलाम करते हैं
3: और इस सादगी और प्रेम को समर्पित करता हुआ अब हमारा अगला गीत।

0: और इस समय हम लोग गांव के केंद्र यानी सांझी चौपाल पर हैं। और सच कहूं, यहां आकर ऐसा लगता है जैसे गांव की धड़कन यही बसती हो। इस विशाल बरगद के पेड़ को देखिए, इसकी जड़ों में जैसे वर्षों की कहानियां समाई हुई हैं। इसी छांव में बैठकर गांव के बड़े बुजुर्ग फैसले लेते हैं और शाम होते ही यही जगह हंसी और ठहाकों और किस्सों से गूंज उठती है।
1: बिल्कुल गीता दीदी, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा, चार पांच बुजुर्ग एक साथ बैठे थे। कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, कोई अपनी पुरानी यादें सुना रहा था। एक बाबा जी कह रहे थे कि पहले के जमाने में फैसले भी दिल से होते थे और रिश्ते भी। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जो आजकल कम ही देखने को मिलती है।
2: और यहाँ बड़े ही नहीं, यहाँ बच्चे भी चौपाल के आसपास खेलते नजर आ रहे हैं। कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह चौपाल हर उम्र के बच्चों को जोड़ने का काम करता है।
3: सही कहा समता दी, ये चौपाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना है, जहाँ हर समस्या का हल, हर खुशी का जश्न और हर दुखी का सहारा है।
0: और हाँ, इसी चौपाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खास परंपरा है, सांझा चूल्हा। किरण, तुमने तो इसके बारे में सुना ही है ना?
1: हाँ गीता दी, और मैंने आज खुद भी देखा, कुछ घरों में आज भी लोग मिलजुल कर एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं। कोई सब्जी बना रहा है, कोई रोटी बेल रहा है और कोई बच्चों को खाना परोस रहा है। वहाँ सिर्फ खाना ही नहीं बनता बल्कि रिश्ते पकते हैं।
2: सच में, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि यहाँ सुख दुख में कोई अकेला नहीं होता है। अगर किसी के घर कोई परेशानी आ जाए तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता है, और अगर खुशी का माहौल हो तो पूरा गांव एक साथ जश्न मनाता है।
3: यही तो है असली एकता, जहां मैं से ज्यादा हम की अहमियत होती है।
0: और चौपाल के इस माहौल में एक और चीज है जो दिल को बहुत खुश करती है, वो है यहाँ का अपनापन। मैंने एक बुजुर्ग दादी जी से बात की तो उन्होंने मुझसे बताया, बेटा यहाँ कोई पराया नहीं होंदा, सब अपने ही होंदे। सुनकर मन में, सच में मन भावुक हो उठा।
1: और देखो देखो, चौपाल से थोड़ी ही दूर पर वो खुला मैदान, वहाँ का जबरदस्त नजारा है।
2: अरे वाह, वहाँ तो कबड्डी की प्रैक्टिस चल रही है। क्या जोश है, क्या ऊर्जा है, हर खिलाड़ी जैसे मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हो। कबड्डी कबड्डी की आवाज पूरे माहौल को और भी जोशीला बना रही है।
0: और इन नौजवानों को तो देखो, लंबे चौड़े मजबूत कद काठी, सच में हर एक गबरू जवान किसी शेर से कम नहीं लगता है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में जीत का जुनून साफ दिखाई देता है।
1: मैंने एक खिलाड़ी से पूछा, थकते नहीं हो क्या? तो वो हंसकर बोला, पंजाबी कभी थकते नहीं, बस थोड़ा रुक कर फिर दोगुनी ताकत के साथ खेलते हैं।
2: वाह, यही जज्बा तो पंजाब की पहचान है, मेहनत, हिम्मत और जोश का संगम।
3: और सिर्फ खेल ही नहीं, यहाँ के युवाओं में अपने गांव और परंपराओं के लिए गहरा लगाव भी है। वे आधुनिकता के साथ साथ अपनी जड़ों को मजबूती से थामे हुए हैं।
0: सच में, ये चौपाल, ये सांझा चूल्हा, ये खेल का मैदान, सब मिलकर इस गांव की आत्मा को जीवित रखते हैं।
1: और यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो, ताकि हम इन पलों को पूरी तरह से जी सकें।
2: अब तो मन कर रहा है कि हम भी इस माहौल का हिस्सा बन जाएं, कभी चौपाल में बैठकर बातें करें और कभी कबड्डी खेलें, तो कभी सांझे चूल्हे पर रोटी सेकें।
3: बिल्कुल, तो चलिए इस उत्साह, इस अपनेपन और इस जीवन संस्कृति को सलाम करते हुए,
1: और हाँ, थोड़ा जोश आपके दिलों में भरते हैं,
0: ताकि आप भी इस ऊर्जा को महसूस कर सकें
2: और झूम उठे इस रंग में।
3: पेश है एक दमदार भांगड़ा बीट जो आपके दिल की धड़कनों को भी थिरकने पर मजबूर कर देगी।

0: जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, पूरे नूरपुर कला में एक अजीब सी शांति उतर आई है। देखिए, आसमान के रंग भी बदल गए हैं, नीले से सुनहरे और अब हल्के नारंगी से गहरे लाल में ढलते हुए। खेतों के ऊपर पंछी उड़ते हुए और घोंसलों की ओर लौट रहे हैं और हवा में एक ठंडी सी मिठास घुल गई है।
1: हाँ किरण, और इस वक्त गुरुद्वारा साहिब से आती अरदास की वो पवित्र आवाज सच में मन को भीतर तक शांत कर देती है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा हो। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। उस आवाज में एक ऐसी शक्ति है जो सारे दिन शरीर की थकान और भागदौड़ को पल में मिटा देती है।
2: और देखो ना, जैसे ही अरदास की आवाज गूंजती है, गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर एक पल के लिए ठहर जाते हैं। कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कोई आंखें बंद कर लेता है। ये सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि एक जुड़ाव है अपने विश्वास से, अपनी संस्कृति से।
3: सच में ये दृश्य दिल को छू लेने वाला है। शहरों में हम भागते रहते हैं समय के पीछे, काम के पीछे, लेकिन यहाँ हर पल जीने का एक अलग सलीका है। यहाँ शांति को महसूस किया जाता है और उसे जिया भी जाता है।
0: जैसे अंधेरा धीरे धीरे और जैसे जैसे अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है, गांव की गलियों में टिमटिमाते बल्ब और घरों के आंगन में जलते दिए एक अलग ही सुकून भरा माहौल बना रहे हैं। दूर कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही है और कहीं से रसोई में बनती हुई रोटियों की खुशबू।
1: वास्तव में किरण, यहाँ आकर यह एहसास हुआ कि असली सुकून ऊंची ऊंची इमारतों या महलों में नहीं है, बल्कि इन कच्चे पक्के रास्तों में, इन खुले आंगनों में और सबसे ज्यादा इन खुले दिलों में मिलता है।
2: और आज के इस एक घंटे के सफर में हमने सिर्फ एक गांव नहीं देखा बल्कि एक जीवन शैली को महसूस किया है। मेहनत, सादगी, अपनापन और एक दूसरे के लिए जीने का जज्बा, ये सब हमने अपनी आँखों से देखा, अपने दिल से महसूस भी किया।
0: और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि यहाँ हर इंसान मुस्कुराते हुए मिला, चाहे वो किसान हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी के पास देने के लिए प्यार ही प्यार है।
1: और सच में हम यहाँ से सिर्फ यादें नहीं ले जा रहे हैं बल्कि एक सीख भी लेकर जा रहे हैं कि जिंदगी को सरल बनाकर, रिश्तों मजबूत बनाकर असली खुशी पाई जा सकती है।
2: और हमारी ये पोटली अब सच में भर चुकी है ढेर सारी प्यारी यादों से, लोगों के स्नेह से और इस मिट्टी की खुशबू से।
3: तो रेडियो सुनने वालों, अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। 89.6 FM गांव की गूंज की पूरी टीम, मैं जया, मेरे साथ समता दी, किरण दी और गीता दी लेते हैं आपसे विदा।
0: लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि हर गांव की अपनी एक कहानी होती है और हम उसे आपके पास लाते रहेंगे।
1: तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए गांव, नई मिट्टी और नई कहानियों के साथ।
2: तब तक आप भी अपने आसपास की खुशियों को महसूस कीजिए, अपने लोगों से जुड़िए
3: और याद रखिए, जब गांव समृद्ध होगा तभी देश मजबूत होगा।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानस्त्री लाइव का। जी हाँ, ज्ञानस्त्री लाइव, और आज है दिन शुक्रवार। अरे भाई, शुक्र है कि आज शुक्रवार है, क्योंकि शुक्रवार के दिन हम बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की। जी हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो कि हमारा दिमाग हिला के रख देते हैं कि अच्छा भाई, ऐसा भी होता है, शायद हमें वो चीज़ पता ना हो, या शायद हम जान के भी कहीं कभी उस पर हम गौर ही नहीं करते। तो वो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते ज़्यादा हैं लेकिन असल में उतनी असरदार होती नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आलतू फालतू चलती रहती है लेकिन भाई वो उतनी होती नहीं जितनी हम सब सोचते हैं, यानी कि ओवर थिंक करने लग जाते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या फैक्ट्स आज मैं लेकर आई हूँ, तो उन सभी बातों को चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले भाई अपना हाल चाल जल्दी से आके चैट बॉक्स में बताइए। भाई देखिए, गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इस गर्मी में अलर्ट तो सबके पास आता होगा कि भाई आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, बारिश। लेकिन आती है क्या? मुझे नहीं लगता भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान बारिश आ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता। तो भाई देखिए, इस गर्मी को ये आंधी तूफान बारिश शांत करे या ना करे, आपको इस गर्मी में अपना ध्यान जरूर से रखना है, क्योंकि भाई इतनी भीषण गर्मी में आपकी हालत खराब हो सकती है, यानी कि आपको कई सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्किन इश्यूज हो सकते हैं, और भी काफी सारी चीजें जिससे आप शायद अभी अनजान हो। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने फैक्ट्स की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन हम बात करते हैं फैक्ट्स की। तो भाई पहला फैक्ट क्या है वो हम बताते हैं। देखिए, आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने कहीं कुछ ऑकवर्ड कर दिया होगा, जैसे कि क्लास में गलत आंसर बोल दिया होगा, या किसी को देख के अलग वेव कर दिया होगा, ने अपना हाथ हिला दिया होगा और किसी और ने आपको देखा नहीं। अब जब आप ये करते हैं कि आप किसी को देखते हैं, उसे हाय करते हैं और सामने वाला आपको देख नहीं पाता, या फिर हो सकता है कि इग्नोर ही कर दिया हो, तो आपके मन में पूरा दिन यही चलता रहता है कि अरे यार, सबने देखा होगा, लोग क्या सोचे होंगे मेरे बारे में, कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट हूँ मैं, न जाने कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन भाई एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, वो ये है कि देखिए, लोग उतना नोटिस नहीं करते जितना हम सोच लेते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, हर इंसान खुद की लाइफ में इतना बिजी है कि वो अपनी एम्बैरेसिंग मूवमेंट से बाहर ही नहीं आ पाता। साइकोलॉजी इसे कहती है स्पॉटलाइट इफेक्ट, जहां हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें ही ऑब्जर्व कर रही है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान अपने में ही मगन रहता है, वो सबसे ज़्यादा खुद को नोटिस करता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप मान लीजिए कि आपको कहीं पार्टी में जाना है और आपको कुछ पहनने का मन था, लेकिन मम्मी ने कह दिया कि नहीं ये पहन चलो, और मम्मी ने फोर्सफुली कहा है, तो आपको वो पहनना पड़ेगा। हाँ, आपको वो कपड़ा पसंद नहीं है, पर मम्मी ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि वो कपड़ा आपको पसंद नहीं है, इसीलिए जब आप जाएंगे पार्टी में तो आप सोचेंगे अरे मैं ही बेकार लग रहा हूँ या लग रही हूँ, शायद सब लोग मेरे को देख के बहुत बुरा फील करेंगे, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, हर इंसान खुद को ही देख रहा होता है, हर इंसान खुद को ही नोटिस कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पॉटलाइट इफेक्ट। तो भाई अगर कभी आपके दिमाग में ये सारे विचार आए ना, तो जान जाइए कि भाई ये बस आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है, असल में ऐसा हो नहीं रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने दिल की। अरे आपको लग रहा होगा कि फिर से दिल की बात शुरू कर दीजिए। नहीं, देखिए, दिल की बात जब हम करने जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हम अपनी दिल की बात किस तरीके से बयां करते हैं, बोल के? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा हम अपनी दिल की बात बयां करते हैं गानों से, और हम सभी के कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग्स तो होंगे ही ना। तो देखिए, ये जो फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं ना, ये सिर्फ गाने ही नहीं होते। एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछती हूँ कि देखिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप सुनते हैं, कोई स्पेसिफिक इंसान या मेमोरी या फेज आपको याद आ जाता है? बस यही साइकोलॉजी है। देखिए, हमारा ब्रेन म्यूजिक को इमोशन के साथ कनेक्ट कर देता है, इसीलिए सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग्स नहीं रह जाते, वो मेमोरीज बन जाती हैं। देखिए, हालांकि अगर मैं आपको खुद का एग्जांपल दूं तो एक गाना बहुत पहले रिलीज हुआ था, कभी बनकर हवा उड़ तो ना जाओगे, और ऐसा ही एक गाना है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गाना है, लेकिन क्योंकि मेरी एक मेमोरी इस गाने से अटैच है तो जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ मुझे वो फेज़ याद आ जाता है अपनी लाइफ का। तो ऐसा ही कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कोई ना कोई गाने से आपके इमोशंस जुड़े होंगे जिससे आप जब भी सुनते हैं, जब भी याद करते हैं तो वो चीज़ें भी वापस से आपके दिमाग में आ जाती हैं। हमारा ब्रेन म्यूजिक को इमोशन के साथ कनेक्ट कर देता है, इसीलिए कुछ सॉन्ग सिर्फ सॉन्ग्स नहीं रह जाते, वो हमारी मेमोरीज बन जाती हैं। कभी कभी एक पुराना गाना आपको सीधे पुराने समय में ले जाता है और अचानक इमोशन भी वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, था ना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट। हम सबको ऐसा लगता है कि अरे हो सकता है ये सिर्फ मेरे ही साथ हो, हो सकता है कि सामने वाला बिल्कुल ऐसा फील ना कर दो, लेकिन देखिए गाने सब सुनते हैं, इंसान देखिए सभी हैं, सब लोग एक ही चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन भाई आप शायद ज़्यादा सोच लेते हैं खुद के बारे में जस्ट बिकॉज ऑफ स्पॉटलाइट इफेक्ट। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है, अधिकतर ऐसा ही होता है कि देखिए हम ही नहीं, जैसे हम अपने आप को जितना नोटिस करते हैं उतना ही सामने वाला भी नोटिस करता है, और जो चीज़ हमारे साथ हो रही होती है वही सेम चीज़ सामने वाले के साथ भी होती है। हाँ, हो सकता है आपके साथ आज हो रही हो, उसके साथ कल हो रही हो या परसों हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ें होती ज़रूर है, और हमें ऐसा लगता है कि हम ही स्पेशल है, शायद भगवान ने हमें ही अलग वरदान दे के भेजा है कि हम कोई गाना याद करते हैं तो हमें वो फेज़ पूरा हम लोग जी लेते हैं। देखिए, काफ़ी बार इसी चीज़ों से मैं आपको रिलेट करके एक चीज़ बताती हूँ, आप लोग उसको ज़रूर मानेंगे कि आपके साथ ऐसा होता भी है। कभी आप एक शांत से कमरे में बैठिए, बिल्कुल शांत कमरा होना चाहिए, कोई खटपट ना हो, कोई आवाज ना आ रही हो, कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। आप बस शांति से बैठिए, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिए। अब आप फोर्सफुली, यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्शियसली, आप अपने दिमाग में कोई एक मेमोरी जो आपके पास्ट से रिलेटेड हो आप उसे सोचने लग जाइए। जी हाँ, सोचने लग जाइए उसको, जो बहुत स्ट्रांग हो आपकी लाइफ में। हो सकता है कोई पार्टी हो, कोई इंसिडेंस हो, या फिर कोई बहुत ही अच्छी मेमोरी हो आपकी, उसे आप याद करने लग जाइए। आप एक एक सीन को जैसे आप शांति से आँख बंद करके इमेजिन करने लग जाएंगे ना, अगर वो चीज़ें आपके आपसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट है ना, तो होता नहीं कभी कभी हमारे साथ कि हम जब कोई चीज़ डीपली कनेक्ट हो या कुछ होता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे जो गूज़बम्प्स आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं। तो आप महसूस करेंगे जब आप उसको फिर से याद करते हैं, फिर से उसकी एक एक चीज़ को जोर डाल के सोचते हैं, कभी याद आ जाती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आप ये महसूस करेंगे कि उस वक्त आपके साथ भी वो हो रहा होता है। तो क्या ऐसा फिर से होता है कि पास्ट प्रेजेंट पे आता है? नहीं, जस्ट बिकॉज आपका जो ब्रेन है वो आपको वापस से लेके जाता है उस बेहतरीन मेमोरी के पास। हो सकता है मेमोरी अच्छी हो सकता है मेमोरी बुरी हो, अगर बुरी मेमोरी है तो उसे ना याद करें, क्योंकि वो आपके जो है न्यूरॉन्स को और जो आपकी नर्वस सिस्टम है उसे भी अफेक्ट करता है। इसे ट्राई करिएगा लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो है क्या है, देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक जैसी चीज़ को ना, जो चीज़ें फेमिलियर होती हैं उसको सेफ मानने लग जाता है। आपको पता है ऐसा कैसे? आप सोच रहे होंगे कि एक सी चीज़ को तो जुड़वा ही मानेंगे, फेमिलियर चीज़ें तो हमेशा जुड़वा ही लगती हैं, सेफ कैसे हो सकती? सेफ का क्या कनेक्शन है फेमिलियर से? बहुत बड़ा कनेक्शन है जी, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इन्जॉय करना है ये आज की प्लेलिस्ट, क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, सिर्फ आपके लिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: गोंडा शहर की धड़कन।
7: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपके बीच इस बहुत ही बेहतरीन गाने के बाद। मैं हूँ आपकी होस्ट आयुषी और आप सुन रहे हैं अपना शो, अपना फेवरेट शो ज्ञानश्री लाइव। आज दिन है शुक्रवार और आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की। अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि ब्रेन फेमिलियर चीज़ों को सेफ मानने लग जाता है। देखिए, ये वाला फैक्ट डेंजरस भी है और रियल भी। देखिए, कई लोग टॉक्सिक फ्रेंडशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप और अनहेल्दी सिचुएशंस में भी रुके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन उस पेन को हैबिट बना चुका होता है। भाई, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न भी है। वो है कि ह्यूमन ब्रेन फेमिलियर चीज़ों को सेफ मानने लग जाता है, चाहे वो हर्ट ही क्यों ना कर रही हूँ। इसीलिए चेंज हमेशा लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देता है। आप खुद इमेजिन करिए कि आप आज जहाँ रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में रह रहे हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, डजेंट मैटर, पर आप जिस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, आपको नेक्स्ट डे ही अगर आपको दूसरी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो आई एम सो श्योर कि आप भी एक बार को स्ट्रेस में आ जाएंगे कि अरे मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो कैसा लगेगा। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है हमारी गर्ल्स के साथ, यानी कि जिनकी शादी होती है और वो दूसरे घर जाती हैं, तो उनको जो डर होता है ना, जो रोना आता है, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग से इसलिए भी आता है कि वो लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं नए घर में जाऊंगी, नई सिचुएशंस के साथ क्या फील करूंगी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग पे चलती रहती हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। देखिए, रिजेक्शन तो हम सभी ने कभी ना कभी फेस किया होगा। जी हाँ, वही रिजेक्शन, कभी हमें किसी ने रिजेक्ट कर दिया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिजेक्शन होता है, ये हमें इतना हर्ट क्यों करता है? किसी का इग्नोर करना, मैसेज सीन करके छोड़ देना या इमोशनल डिस्टेंट हो जाना, इतना हर्ट आखिर ये सारी चीज़ें हमें करती क्यों हैं? कोई हमें इग्नोर करता है, हमें इतना बुरा क्यों लगता है? हमें रिजेक्शन क्यों इतना मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग होती है ये रिजेक्शन को फेस करना? ऐसा हमारे साथ आखिर क्यों होता है? इतना हर्ट ये हमें क्यों करता है? ये सवाल आपके भी जहन में ज़रूर आता होगा। देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन को सिर्फ इमोशनल ही नहीं बल्कि सर्वाइवल थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। सर्वाइवल थ्रेट कि अब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, अब मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी, हो सकता है अब मैं मर ही जाऊं, ये चीज़ के बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, और न जाने ऐसे कितने चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आने लग जाती है। इसी को हम सर्वाइवल थ्रेट कहते हैं। हम सोशली कनेक्ट रहने के लिए वायर्ड हैं, इसीलिए जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो हमारा ब्रेन जो है वो जेन्युइनली पेन फील करने लग जाता है। देखिए, ये काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने काफ़ी लोगों से ये सुना होगा कि भाई मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ये इंसान ने मुझे रिजेक्ट कर दिया या मुझे चीट किया गया या कुछ भी, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे दिल में। सब सोचते हैं कि अरे यार, ये नौटंकी दिखा रहा है, कैसे इनका ब्रेन में दर्द हो रहा है, इनके दिल में दर्द हो रहा है, जस्ट एक इंसिडेंट तो था, किसी ने मारा पीटा थोड़ी ना है। देखिए, पेन जो होता है, जो दर्द होता है, वो दो टाइप का होता है, एक फिजिकल पेन, एक इमोशनल पेन। इमोशनल पेन भी आपको दर्द महसूस कराता है, एंड ये चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लोग वही बार बार बताते हैं जो उन्हें हर्ट किया होगा। अरे भाई, ये तो मेरी ही सिचुएशन है और ये मैंने स्पेशली खोज के आपके लिए लाई हूँ मैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए मैं भी, हम लोग आपस में कई सारी चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। जी हाँ, कई सारी चीज़ें रिलेट कर लेते हैं। वो क्या चीज़ें हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम जब किसी से बातें करते हैं तो हमें मन करता है कि हम अपनी दिल खोल के रख दो उस इंसान के सामने, उस इंसान से इतनी बातें करें। और सबसे ज़्यादा जो हम बातें करते हैं वो हम उस चीज़ के बारे में करते हैं जो चीज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया हो। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बार बार वही स्टोरी बताते हैं, वही पेन बताते हैं और वही कंप्लेन करने लगते हैं। देखिए, साइकोलॉजिकल रीज़न इसके पीछे बहुत बड़ा है और थोड़ा सा सिंपल भी है। उनका ब्रेन इमोशनल वैलिडेशन ढूंढ रहा होता है। जी हाँ, देखिए हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मन है, वो वैलिडेशन के पीछे भागता रहता है कि हमें कोई समझे, सीखे, हमें वैलिडेट करे। मतलब उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस उन्हें जेन्युइनली समझने वाला चाहिए। इसीलिए कभी कभी आपने नोटिस किया है कि हर इंसान को जब भी कोई आपके पास आता है, अपनी बातें शेयर करने लगता है, अपनी कहानी बताने लग जाता है, और कुछ लोग अगर, और वो जेन्युइनली ये चाहता है कि आप उसको आंसर ना दो। जी हाँ, आप ये सही सुन रहे हैं, आंसर ना दो। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि इंसान जस्ट आपको इसलिए सारी चीज़ें बताता है क्योंकि बस वो इतना चाहता है कि आप उसकी बातों को समझें। दैट्स इट, कोई आंसर नहीं चाहिए। और इनफैक्ट अगर वो आपसे सिर्फ समझने की उम्मीद कर रहा है, आप उसे आंसर देने लग जाते हैं, उसे हर चीज़ का जवाब दे रहे, अरे भाई ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ये इसलिए होता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है फॉर द स्पीकर, यानी जो आपको कह रहा है, जो आपको बता रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं। तो था ना ये दोस्तों बिल्कुल ही रिलेटेबल सा फैक्ट। और भी सारी चीज़ें हैं जिसपे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने शो ज्ञानस्थी लाइव में। मैं हूँ आपकी आरजे आयुषी और अभी आप इंजॉय कर रहे हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हैं।
4: अरे सुना
0: क्या,
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ,
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम ज्ञानस्थी लाइव। आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ज्ञानस्थी 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आज हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही रिलेटेबल चीजें, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की जो कि हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, हम सभी ने कभी ना कभी सुना होगा कि भाई बी कॉन्फिडेंट, हमें हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो कॉन्फिडेंस है वो आता कहाँ से है? क्या इसका कोई पौधा है? नहीं भाई, इसका कोई पौधा नहीं है। ये सबसे पहले जहाँ आता है वो है हमारी बॉडी। अब आप लोग के मन में ये सवाल आया होगा ना कि कॉन्फिडेंस तो हमारे मन में होता है, तो ये कैसे कह रही हैं? देखिए भाई, जो कॉन्फिडेंस होता है वो पहले हमारी बॉडी में आता है, फिर हमारे माइंड में आता है। कभी सैड मूड में मिरर के सामने स्ट्रेट पोस्चर बना के देखना, थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा। जी हाँ, जब आप बहुत दुखी हो तो जाना शीशे के सामने और थोड़ा सा अकड़ के खड़े हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट। और थोड़ी देर में आपको लगेगा कि यार आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, सारी उदासी दूर हो गई है। ऐसा क्यों होगा? ऑब्वियसली आपकी जहन में ये सवाल आ रहा होगा। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सीधे ब्रेन को सिग्नल भेजती है। अगर आप हमेशा झुक कर चलेंगे, लो आई कॉन्टैक्ट रखेंगे, तो ब्रेन उसी फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन कॉन्फिडेंट पोस्चर धीरे धीरे ब्रेन को भी कॉन्फिडेंट फील कराता है। एक आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी अंग्रेजी की, वो ये है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को समझनी चाहिए, सभी को सीखनी चाहिए, स्पेशली हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए मेंटली। देखिए, हम जो होते हैं, यानी हम आप ही से बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपके दिमाग से आपका जो मन होता है ये बहुत ही भोला भाला सा होता है, बहुत ही भोला भाला लगता है ना। अरे भाई, ये इंसान जैसे अवधि में कहते हैं ना कि चंट इंसान है। नहीं, देखिए हर इंसान चंट नहीं होता, उनका मन बहुत ही भोला होता है। अगर आप किसी चीज़ की सिर्फ नकल करने लग जाएंगे ना, तो उसको वो सही मान के वो सही करने, सही में सच में होने लग जाएगा। अगर आप बहुत दुखी हैं ना, कभी कभी बहुत दुखी हैं और आप दुखी रह के थक गए, आपको क्या करना है? देखिए, ये आपको टिप आप समझ लीजिए कि आपको, जैसे कभी कभी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कभी मैं दुखी होती हूँ, कोई ऐसी इवेंट हो जाता है जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया होता है। कितने दिन आप रो सकते हैं? कितने दिन आप दुखी रह सकते हैं? एक दिन, दो दिन, हफ्ता भर या महीना भर? लेकिन महीने भर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए और अब थोड़ा सा खुश होना चाहिए। तो ये जो खुश रहना है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ है कि आपको खुश रहने की एक्टिंग करनी है। नकली में आपको खुश होना है। जी हाँ, नकली में अगर आप खुश होंगे तो आपकी ब्रेन को डायरेक्टली सिग्नल मिलेगा कि आपको खुश होना है, तो आपकी जो दिमाग में जो हार्मोन रिलीज होंगे, जो केमिकल रिलीज होंगे, वो सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो आप जैसे उसको फेक कर रहे हैं, जिसको नकली कर रहे हैं, वो असलियत में आपके साथ होने लग जाएगा। आप असली में खुश रहना धीरे धीरे स्टार्ट कर दे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ कोई दुखद घटना हो जाती है, कोई दुनिया छोड़ के चला जाता है, तो जो बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं और जिसका अपना गया होता है, वो हमेशा दुखी रहता है। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो बेफिजूल का जोक क्रैक करेंगे। जी हाँ, बेफिजूल का जोक क्रैक करते हैं कि जस्ट कि वो सामने वाला हंस दे। वो दुखी है, ये हम सबको पता है, और उसके साथ बहुत बड़ी चीज़ हुई है, ये भी हमें पता है। लेकिन हम जानबूझ के जोक क्रैक करते हैं जिससे कि वो खुश हो, एक बार हंस दे। बेमन हंसेगा, लेकिन हंसेगा। तो इससे यही होता है, यही साइकोलॉजी काम आती है कि जब वो नकली में हंसता है तो वो धीरे धीरे करके उसका जो ब्रेन है वो उस दुख को दबाता जाता है और खुशी को बढ़ाता जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की। जी हाँ, मज़े की। कभी आपने नोटिस किया है कि हम जब बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं, देखिए तैयार होना एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। हम पहले अपने फेवरेट कपड़े निकालते हैं, फिर अपनी फेवरेट एक्सेसरीज निकालते हैं, ज्वेलरी निकालते हैं, पर्स निकालते हैं, सैंडल निकालते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही एक चुनिंदा चीज़ें ऐसी होंगी जब हम लोग बड़े मन लगा के बड़े चाव से पहनते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई नई साड़ी खरीदी है और साड़ी आपने पहनी, फिर आपको उसको मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, पर्स चाहिए, तो आपने उन सबको पहन लिया। आपका मेन फोकस रहता है वो साड़ी, कि लोग हमारी साड़ी को कॉम्प्लीमेंट करें।
लेकिन आपको पता है ये जो बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ये उतने असरदार नहीं होते जितने उस छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट को। आप इसको एक बहुत ही बेहतरीन टिप मांग सकते हैं अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है। आई एम सो सीरियस लिसनर्स कि ये चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। वो क्या है, देखिए कभी आप जाइए, आपको जिसे भी इम्प्रेस करना है, हो सकता है आपका दोस्त हो, मम्मी हो, पापा हो सकते हैं, हाँ पापा थोड़ा सा डांट देंगे लेकिन इम्प्रेस तो वो भी हो जाएंगे, और हो सकता है आपके पार्टनर भी हों। आपको क्या करना है कि जब भी आप कहीं जाएं, कहीं भी जा रहे हैं घूमने, आप हो सकता है आप नुक्कड़ पे जा रहे हैं, किसी को बुलाया है आपने चाय पीने, जस्ट आपका कोई दोस्त आ रहा है, आपको उसे इम्प्रेस करना है, आपको क्या करना है, आपको जस्ट कोई छोटी सी चीज़ उसके लुक से लेनी है और उसको उस पर कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे उसे लगे कि भाई ये बनावटी कर रहा है, रियल होना चाहिए। उसको आप कह के देखिए कि भाई जो तुम्हारे टी शर्ट है ना, टी शर्ट का ये लोगो बड़ा अच्छा लग रहा है, बस लोगो, टी शर्ट नहीं, लोगो। अब वो इंसान उस कॉम्प्लीमेंट से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, उस पर हम बात करते हैं। देखिए कभी किसी, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि कभी किसी ने कैजुअली आपकी तारीफ की हो और वो आज भी याद हो, जैसे तुम्हारी स्माइल अच्छी लग रही है, तुम बहुत अच्छे लिसनर हो, हाँ जी बहुत अच्छे लिसनर हो। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, वो ये है कि पॉजिटिव इमोशनल मूवमेंट ब्रेन में डीपली स्टोर हो जाते हैं, इसीलिए एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट भी किसी का पूरा दिन बेहतर बना देता है और वो कॉम्प्लीमेंट उसे ज़िंदगी भर याद रहता है। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि यार हमने इतनी बड़ी चीज़ पहनी है, सभी का ध्यान इसी पर होगा, सब इसी को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जब आप कोई अलग सी चीज़ ला के दे देते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है, जहाँ किसी का ध्यान नहीं जाता आपका ध्यान पहुँच जाता है, इंसान आपको भी याद रखेगा, आपके कॉम्प्लीमेंट को भी याद रखेगा। तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं और लोगों को इम्प्रेस करेंगे कि भाई इम्प्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो था ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, और भी है, बहुत सारे हैं, जी हाँ बहुत सारे, उन सभी पे बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना हमारे साथ, हमारे आपके दोनों के प्यारे शो ज्ञानश्री लाइव में।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। लेकिन आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है दोस्तों। अभी मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूं, एसी भी चल रही है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठी हुई हूं। सुबह जब घर से निकली तो लगा कि आज का दिन तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ और सिर्फ 10 बज रहे हैं और लग रहा है कि जैसे दोपहर सिर पर खड़ी है। दोस्तों, पहले गर्मी सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है यार। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रही है हमारे आसपास।
2: अरे आरजे दीदी, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना आएगा ही। लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है, इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है। और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
1: हाँ टीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही मेरे, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की भी इसमें कोई भूमिका है? सच बताऊं अब ये गर्मी डराने लगी है मुझे, पहले जैसे नहीं रहा।
2: देखिए आरजे, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती। और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है। जैसे तवा गर्म हो जाता है वैसे ही।
1: तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बन रही है।
2: बिल्कुल सही समझी आप, ये एक पूरा सिस्टम है, हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कहीं ज़्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
1: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं, क्यों भाभी?
2: हाँ आरजे, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
1: तो भाभी अब ये बताइए, ये लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है ये तो आज तक किसी ने ना सोचा और ना ही किसी ने प्रश्न किया इस पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर में लू हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है।
2: जी देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो जाता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
1: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
2: हाँ बिल्कुल, अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल जाती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: ओहो भाभी, तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
2: देखिए आरजे, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
1: भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और कब लेना चाहिए?
2: बहुत अच्छा सवाल है आरजे
1: जी।
2: ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हमें बहुत ज्यादा पसीना बहता है तो सिर्फ पानी ही नहीं शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
1: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
2: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं। घर पर भी घोल बनाया जा सकता है।
1: अरे वाह, ऐसा भी कुछ है भाभी?
2: बिल्कुल, 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है ना भाभी?
2: बिल्कुल आरजी, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
1: हाँ ये तो सही बात है, अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना ही भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
2: जी बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और जब भी निकले तो सिर को ढक कर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: और भाभी, खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है। या फिर मैं यूं कहूं कि आजकल मैं अगर अपना पर्सनल बोलूं भाभी, तो मुझसे तो खाना खाया ही नहीं जाता। थाली में लेके बैठती दो रोटी, और एक रोटी खाते ही ऐसा लगता कि मन भर गया है, और भूख भी लगी रहती है, फिर भी हम नहीं खाना खा पाते। और सेम चीज़ कहीं ना कहीं पानी के साथ भी होता है कि गला सूखा सूखा लगता है, पेट भरा लगता है। तो मतलब खान पान में हमें क्या बदलाव करना चाहिए?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, अक्सर ये घटना सभी व्यक्तियों के साथ गर्मियों में होती है। गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पच जाने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा आदि। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चालक और अन्य लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा। उनका क्या होगा फिर भाभी?
2: बिल्कुल, मुश्किल तो है। आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदलें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी छांव मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा कर लें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
2: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर में प्राथमिक उपचार क्या हो। मतलब हम बड़े उपचार की तो बाद में सोचेंगे, प्राथमिक उपचार भी दिमाग काम नहीं करता है ऐसे समय पे जब हमें लू लग जाती है।
2: जी, ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए और उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: भाभी, ये तो थी हम इंसानों की बात। अब एक और बात, ये गर्मी ने तो हम लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं जितने हम मनुष्य?
2: अरे आरजी
1: जी,
2: जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं,
1: है ना?
2: बल्कि जी, लेकिन कई बार हमसे भी ज़्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो सकते नहीं लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेल रहे हैं जितना कि हम।
2: बिल्कुल आरजे, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे तो वह किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बात बहुत ज़रूरी बताई कि गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हमें बस अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा, वो भी छोटा छोटा, जैसे समय समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचाव करना, हल्के और सूती कपड़ों को पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे ज़रूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत होती है। याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहें हम सब तैयार। और एक बात और कि धूप से बचाव है ज़रूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने ऐसे कोई मामले को देखा है जहां लापरवाही बहुत भारी पड़ गई हो?
2: हाँ अर्जे, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम कर रहे थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी लेकिन वे बच्चे को भी अपने साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया।
1: फिर क्या हुआ भाभी?
2: और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
2: हाँ अर्जे, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। तो साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
2: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ दोस्तों, हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेंगे हम सब अपनी सेहत की शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का
3: साफ सफाई और स्वच्छता का
0: पालन करेंगे
3: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
0: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे इसी शो यानी कि सेहत सही और लाभ कई में, क्योंकि अगर सेहत होगी सही तो लाभ भी तो होंगे कई, एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और याद रखिए, पानी पीते रहिएगा, छांव में रहिएगा और हमेशा स्वस्थ रहिएगा। अपना भी और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और बेजुबान और बुजुर्गों का थोड़ा ज्यादा खास वाला ख्याल रखिएगा। टेक केयर।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696746006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? जल्दी से आ जाए।

0: क्योंकि हम हमेशा से यही सोचते हैं। दो दिन से मैं यही बोल रही थी कि भाई धूप है धूप है धूप है, और लो मेरी पुकार सुन ली ईश्वर ने। बस खाली कुछ ही मामलों में नहीं सुनते हैं, बाकी सब में सुन लेते हैं।
1: उसमें भी सुन लेंगे, डोंट वरी।
0: उसमें पता नहीं कब सुनेंगे, मैं
1: सुनेंगे
0: तो
1: बहुत जल्द।
0: इंतजार की तुम्हारे मुंह में घी शक्कर नहीं, तुम्हारे मुंह में मोतीचूर के लड्डू। चलो तो मोतीचूर के लड्डू मैं तुम्हें ये वादा है ऑन एयर कि मैं तुम्हें 1 किलो खिलाऊंगी। तुम मेरे लिए अच्छी वाली ये विश कर दो कि मेरी जो विश है, जो मेरी विश है वो जल्दी से पूरी हो जाए।
1: बिल्कुल पूरी हो जाए, जल्द से जल्द पूरी हो जाए, और थोड़ी अच्छे से पूरी हो, ये भी मैं कहना चाहूंगी।
0: अरे वाह, फिर तो ये दिल से बोल रही हो ना?
1: हाँ दिल से।
0: ये ऑन एयर वाला नहीं है हिसाब किताब?
1: नहीं नहीं, वो ये दिल वाला हिसाब है, क्योंकि ये मैं दिल से चाहती हूँ, मतलब ऑन एयर बोल रही हूँ, और वाकई पूरे दिल से बोल रही हूँ कि अभी जो विश मैम सोच रही है अपने मन में और जो मैं भी सोच रही हूँ अपने मन में, वो दोनों सेम ही है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि ये वाली विश उनकी जरूर पूरी हो जाए,
0: जल्दी से पूरी हो
1: जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि वो एक जो फेस था, तो मैं चाहती हूँ दिल से ये वाली विश उनकी पूरी हो जाए। फिर लड्डू मिले या ना मिले वो दूसरी बात।
0: नहीं नहीं नहीं, अब मैंने बोल दिया है तो लड्डू के साथ प्लस एक गिफ्ट भी देंगे। चलो ठीक है, दो दो बोनस हो गया क्योंकि दिल से दुआ,
1: फिर तो जल्दी पूरी करना भगवान।
0: क्योंकि अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब हम कहीं अपनों से दूर जाते हैं ना, तो अपनों की वैल्यू तब पता चलती है। तो एग्जैक्टली मतलब मैं अब ऑनियर क्या ही बोलूं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ अंशिका ने आज जो बोला है वो दिल से बोला है मेरे लिए, और
1: बिल्कुल
0: हमेशा बोलती है, ऐसी बात नहीं है। मैं कभी कभी डांट देती हूँ तो मुंह बना लेती है,
1: तो क्या हुआ,
0: बट
1: वो चल जाता है।
0: आज उसने दिल से बोला है क्योंकि एग्जैक्टली उसने बहुत सारे फ्रेज मेरे देखे हैं। तो ये जो दुआ है ना, ये जो दुआ होती है ना अंशिका, आज दुआ पे एक बात मुझे याद आ गई कि दुआ अपने लिए अगर कोई करता है ना तो वो कम लगती है,
1: हाँ।
0: लेकिन अगर कोई उसका बहुत ज्यादा करीबी चाहने वाला या उसको दिल से चाहने वाला, जैसे मैंने आपके लिए कोई दुआ करी,
1: हाँ।
0: आपने मतलब
1: मैंने आपके लिए कुछ
0: मेरे लिए करा, या फिर एक माँ जब दुआ करती है अपने बच्चों
1: के लिए,
0: तो वो दुआ पता है, वो दुआ फिर दुआ नहीं होती है, वो दुआ पत्थर की लकीर हो
1: बिल्कुल,
0: जाती
1: बिल्कुल।
0: है, वो लगनी ही लगनी होती है, पर पूरी पूरी होनी ही होनी होती है।
1: बिल्कुल मैम, और इस टाइम तो समय भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोगों को भी पता होगा लिसनर्स की मलमास जैसे कहा जाता है, तो ये मलमास के दिन चल रहे हैं, और इसमें ये कहा जाता है कि ये बहुत ही मतलब जहाँ तक मुझे पता है 12 साल में या फिर 15 साल में एक बार होता है।
0: अच्छा,
1: जब जेठ और इस मतलब इस टाइम में मई जून के टाइम में ये जो 15 दिन मलमास के लगते हैं, जो कि आई थिंक 17 से लगे थे,
0: हाँ
1: और अभी तक चल रहे हैं, तो ये जो दिन लगते हैं ये बहुत दिन में मतलब लगते
0: मतलब बहुत ही प्रभावशाली हाँ, होते हैं
1: इस दिन, इन दिनों में ऐसा कहा जाता है स्पेशली मलमास में कि अगर आप भोलेनाथ से कुछ भी मांगते हैं तो वो आपकी वो विश पूरी करते हैं। हो सकता है उसका वो चेंज हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको मतलब जैसे समय चेंज हो थोड़ा
0: हाँ,
1: सा
0: हाँ।
1: बट मिलता जरूर है। तो ये दिन जो जो भी 15 दिन होते हैं आपके मन में जो भी हो आप मांगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने ऐसा पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया है कि पूरा होता है, क्योंकि मम्मी मैम मेरी अगले साल बहुत ज्यादा बीमार थी और तब ये दिन नहीं चल रहे थे, लेकिन महीना मलमास का ही था और मैंने भोलेनाथ से कहा था वो ठीक हो जाए, तो टचवुड वो ठीक हो गई।
0: लेकिन अंशिका एक बार बताएं, चलो हाँ मलमास की अपनी एक एक मतलब एक प्रभावशाली है, लेकिन मैंने एक चीज देखी है यार, भोले बाबा से ना इतना भूला है वो कि
1: हाँ।
0: आप उनसे दिल से ना अगर उनके सामने आंसू अगर बह गए तो समझ लो वो तो होना ही होना,
1: होना
0: है,
1: ही होना है बिल्कुल।
0: लेकिन अगर आप उनके सामने एक लोटा केवल जल भी उनको अर्पित कर देते हैं ना, तो आपकी मनोकामना आपकी विश जरूर, हाँ थोड़ा समय लगेगा, समय लगता है, लेकिन वो विश जरूर पूरी होती है, ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है। तो भाई मलमास भी चल रहा है और मलमास में अंशिका ने मेरे लिए दुआ की है दिल से, और वो उस फ्रेज को अंशिका ने देखा भी है मेरे मेरे ऊपर देखा भी है, और अंशिका ने अभी 2 दिन पहले ये भी बात बोली थी कि आप उससे उबर रही हैं, और मैंने उबरते हाँ। हुए देखा है आपको, पर कहते हैं ना कि अभी 2 से 3 दिन पहले एक पोयम मेरे हाथ लग गई थी जिसको पढ़ के फिर से मैं थोड़ा सा भावुक हो गई थी, तो जैसे लगता है ना कि हाँ अंदर तो टीस है ना, अंदर तो टीस है,
1: वो हम मतलब शो नहीं करते हैं बट हाँ। वो एक होता है।
0: अरे गजब नव्या जी, आज दिन मेरा बड़ा अच्छा है भाई। नव्या जी लिख रही हैं, भोले बाबा मेरी समता मैम की मनोकामना इस मलमास में जल्दी से जल्दी पूरा कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज।
1: बिल्कुल अब तो जरूर पूरी होगी नव्या जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी दुआएं मतलब कि ये फैक्ट होता है कि किसी के लिए जितनी दुआओं के हाथ उठते हैं ना, मतलब भगवान एक को मना कर सकते हैं, जब हम सिंगल किसी के लिए एक दुआ मांगते हैं तो भगवान उसको अनसुना करते हैं, लेकिन जब आप सब मिल करके किसी एक के लिए दुआ कर रहे हैं तो वो जरूर पूरी होगी।
0: बिल्कुल,
1: और मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ और दिल से इस बार भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज ये वाली एक जो विश है वो जरूर पूरी हो, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ में जो मैम मांग रही हैं वो चाहिए होता है और वो मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बिल्कुल बैकबोन सपोर्ट की तरह होता है,
0: एक दिल की खुशी
1: होती है। हाँ, एक दिल की खुशी होती है और वो मार के हम जी नहीं सकते हैं। मतलब देखिए ये पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगी कि सभी कहते हैं कि अरे नहीं यार हो जाता है, भूल जाओ चल जाता है, बट वो फैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ हम उस चीज को हटा के जी सकते हैं,
0: सब कुछ काम तो होता रहता है,
1: बट कहते हैं ना कि
0: दिल का अंदर एक कोना खाली रहता है।
1: बिल्कुल,
0: तो कोई बहुत बड़ी नहीं है, कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में तो कोई ऐसी चीज इम्पॉसिबल है ही नहीं, तो पॉसिबल है। बट आज मुझे दो लोगों ने दिल से दुआ दी है तो वो 100% पूरी होने वाली है, ये मुझे विश्वास हो गया। और मुझे विश्वास तो है कि मेरी जो विश है वो पूरी होगी, आज नहीं कल नहीं परसों, लेकिन होनी होनी है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। और आज तो उस पे मोहर लग गई, अंशिका ने लगा दी है, नव्या ने लगा दी है, इनमें सभी लिसनर से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज सभी लोग एक बार दिल से मेरे दुआ जरूर करिएगा भोले बाबा से कि मेरी मनोकामना भी जल्दी से जल्दी, और मैं कुछ ज्यादा कभी मांगती भी नहीं हूँ, ये भी अंशिका को पता है, मैंने कभी भी कुछ नहीं मांगा है, ज्यादा मैं मांगती ही नहीं हूँ। मुझे ईश्वर के सामने मुझे लगता है कि मैं क्या, सभी के लिए ये बात है कि हम ईश्वर के पास जाते हैं और हमेशा से मांगने के लिए, तो ये भी नहीं है, कभी हम दिल से तो उनकी पूजा करने जाएं। तो मैं हमेशा से अपने लिए तो खैर कुछ नहीं मांगती हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा कष्ट में होती हूँ तो मांग भी लेती हूँ भोले बाबा से, और वो मेरी पूरी भी करते हैं, नो डाउट, कभी ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने पूरी ना की हो। तो आज इतने ब्यूटीफुल से विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज है हमारा ब्यूटीफुल सा फ्राइडे, एंड अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाने का डे। तो कल से नहीं, मैंने इधर हफ्ते से कोशिश की थी अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने का, तो
1: असर भी हुआ
0: कुछ,
1: है
0: कुछ असर हुआ है,
1: वही मैंने अभी नहीं कहा, असर भी हुआ है।
0: हाँ, मतलब एक पॉजिटिव थिंक को लेके मैं साथ चल रही हूँ।
1: हाँ।
0: तो क्या वैसा असर सच्ची मुच्ची बताओ,
1: सच्ची मुच्ची आपके फेस पे भी दिख रहा है, और एक मतलब पॉजिटिविटी जैसे फेस पे ग्लो जो देती है ना वो दिख रहा है, और यही कहूंगी कि ये ग्लो बना रहे और
0: इसमें चार चांद लग जाए एक विश पूरी होने पर,
1: यही कहने वाली थी। देखा मन की बात मैम पढ़ लेती है।
0: तो चलिए हमारी मनोकामना बस अब तो बिल्कुल गांठ बांध ली कि मेरी तो मनोकामना जल्दी से पूरी होने वाली है। फिलहाल चलिए हम शो शुरू करते हैं, आपका शो पसंदीदा शो शुरू हो गया है जिसका नाम है
1: सुन सहेली
0: विद आरजे समता। शो शुरू हो गया है जिसका नाम है
1: सुन सहेली
0: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका एंड प्यारी से मौसम की जानकारी भी देंगे। ये जो अलर्ट होते हैं ना, मैंने नौ तपा के लिए भी एक बात बताई थी कि इंसान को जितना तपना है तप लो, लेकिन जहां वो बारिश की बूंदे पड़ी ना सब कुछ ठंडा। तो भाई बारिश का अलर्ट लखनऊ में भी हो चुका है, और कल मौसम विभाग से भी रात में जानकारी आई थी कि पिछले 48 मतलब आने वाले 48 घंटों में काफी तेज बारिश होगी और आंधी तूफान आएगा। बट लखनऊ में तो आज मॉर्निंग में 5 बजे का सीन बहुत ही अच्छा था, और यहाँ पे भी ना हल्की वाली धूप है और बढ़िया वाली हवा है। तो चलिए इस प्यारी सी मौसम को एक बार फिर से विश कर देते हैं दोनों एक साथ मिलकर के,
1: शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और बिल्कुल भगवान जी से विश अभी हमने एक मांगी थी, और एक छोटी सी विश और है कि ये प्यारी सी हवाएं रहें और आंधी तूफान बिल्कुल भी ना आए, मतलब ठंडा मौसम रहे बट आंधी तूफान ना आए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि फिर लोगों के काम कहीं ना कहीं डेली रूटीन जो होता है वो बहुत बाधित हो जाता है। तो चलिए शो शुरू करते हैं, और आज का हमारा जो एक प्यारा सा हम कह लें कि शुरुआत है, एक बहुत ही प्यारी सी शुरुआत है, वो दुआ जैसी बहुत प्यारी सी एक शब्द से हुई है, एक खुशी से हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट से आ जाते हैं हमारे पहले वाले एक
0: सेगमेंट पर हमारा पोयम होती है। तो अंशिका चलें शुरू करें फटाफट,
1: बिल्कुल मैम,
0: क्योंकि टाइम जो है वो भागा जा रहा है, और हम लोगों की जो बातें हैं ना ये वाली, तो ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी, तो फटाफट चलिए
1: एक मिनट। प्यारी सी मुस्कान और प्यारी सी दुआ से करते हैं शुरुआत, क्योंकि अब बारी है बहुत ही प्यारी सी एक पोयम की, और वो पोयम सुनाएंगी आपको आपके अपनी फेवरेट वाली आरजे समता, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मैम पहले प्यारी से स्माइल करें और फिर पोएम सुनाएं।
0: अच्छा जी, तो मैंने स्माइल तो मैंने आज स्माइल नहीं, आज मेरा हंसने का मन कर रहा है, क्योंकि जब हम दिल से खुश होते हैं ना तो बहुत ही सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगता
1: तो है। तो चलिए प्यारी स्माइल के साथ
0: सुनाएं। थैंक यू सो मच एंड अंशिका, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस प्यारी सी कविता को। खून के रिश्तों से बढ़कर विश्वास की डोर है ये, खून से बढ़कर रिश्तों से बढ़कर विश्वास की डोर है ये, सुख दुख की धूप छाँव में साथ निभाती भोर है ये, कभी तकरार तो कभी मनुहार, कभी आंखों से बात

0: होती हैं। इन खट्टे मीठे एहसासों से ही रिश्तों की शुरुआत खूबसूरत रातें होती हैं। दूरियां कभी मिटा नहीं सकती, दूरियां कभी मिटा नहीं सकती, अगर दिल में प्यार का एहसास हो। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब अपनों का साथ हमारे पास हो।
1: बिल्कुल सही, और बहुत ही प्यारी और बहुत ही इमोशनल पोएम मैम लेकर के आई हैं आज, और उन्होंने सुनाई भी उतने ही प्यार और उतने ही इमोशंस के साथ, और लास्ट की चार लाइनें जो थी वो तो बहुत ही अच्छी थी। और मैम से भी यही कहना चाहूँगी कि मैम आप अपनी लाइफ में भी इसको पूरी तरह मान के चलिए कि दूरियाँ बिल्कुल नहीं मिटा सकती अगर दिल में एक सच्चा प्यार हो, और दिल में इधर भी है और उधर भी है, दोनों ही साइड है, तो बिल्कुल आपकी दूरियाँ भी आपके उस एहसास को बिल्कुल नहीं मिटा पाएंगी और आपको वो मिलेगा जो सिर्फ आपका है।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में आते हैं, फटाफट बढ़ते हैं। और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आप सभी को पता है कि लेके आती हैं आपकी आरजे अंशिका, जो कि हर दिन कुछ नया, खास और बेहतर होता है। तो आइए जानेंगे आज क्या है कुछ खास और बेहतर।
1: बिल्कुल, आज हमारे पास खास और बेहतर ये है कि जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं।
0: हाँ, एक पेड़ है ना, एक पेड़ होता है ना जो बहुत ही तना रहता है और वो हमेशा, उसमें कुछ फल भी नहीं होते। कौन सा फल क्या होता है
1: वो,
0: आई थिंक नारियल का भी होता है जो टाइट बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन एक और पेड़ होता है,
1: अरे वो
0: जिसने
1: खजूर,
0: नहीं खजूर हो, नहीं खजूर में,
1: खजूर का होता है मैम, कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर, मतलब उसमें फल बहुत ऊपर लगे होते हैं तो कोई तोड़ नहीं पाता।
0: हाँ, खजूर का। तो भैया वैसे वाले पेड़ ना बने, क्योंकि पेड़ अगर झुक, जो लोग झुकते हैं उनमें ही फल लगते हैं। तो जो लोग अभी तक तने हुए हैं वो प्लीज ना तने रहें, झुकें, क्योंकि कोई इंसान ऐसा है जो बापसारे प्यार के लिए आपके सामने खड़ा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो भाई हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, पति हो या फिर प्रेमी हो। तो जो भी है आप उन्हें अपनाएं और ईगो को कर दें एक साइड।
1: बिल्कुल, आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही कहता है कि रिश्तों में कभी कभी झुकना पड़ता है, जो झुक जाते हैं वो अपने रिश्तों को निभा लेते हैं और जो तने रहते हैं उनके रिश्ते उनसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए एक इंसान अगर ईगो में है, सिर्फ अपनी सोच रहा है, तो कोई उसके पास नहीं रहना चाहता है। सबको लगता है कि यार हमारी तो परवाह ही नहीं है ना, छोड़ो हटाओ रहने दो।
0: हाँ।
1: और धीरे धीरे इंसान आपसे दूर हो जाएगा। हमें लगता है नहीं वो मुझसे बहुत प्यार कर, देखिए हम माँ बाप की बात यहाँ पे ले लेते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन्हें वो सारी मतलब वो खुशी, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं देते हैं, धीरे धीरे माँ बाप अपने पैदा किए हुए बच्चे से ही दूर हो जाते हैं कि जब उसे हमारी कदर ही नहीं है तो हम उसके पास क्यों रहें, रहने दो हटाओ। तो इसलिए आपके रिश्तों में बहुत जरूरी है कि थोड़ा सा झुके और जहां तक हो अपने ईगो को अपने रिश्ते में न रहने दें। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनकी जो कि थोड़ा सा मतलब अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो आज का ये मैसेज स्पेशली उनके लिए है कि अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस दीजिए। और रिश्तों में हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी एक दूसरे की आदत नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आज एक बात कहती हूँ कि जिस दिन आपके रिश्ते में किसी को भी, आपके मम्मी पापा को, आपके पास रहने वाले लोगों को आपकी आदत पड़ जाती है, उस दिन वो आपको कभी नहीं भुला पाएंगे। अगर हमें किसी की आदत लग गई कि वो है तो ही मतलब होता है ना, किसी किसी की बिल्कुल हैबिट लग जाती है कि वो है तो मतलब है, और अगर वो नहीं है तो फिर फील होने लगती है खाली जगह कि अगर आज वो नहीं है तो वो एक जो स्पेस फील कराना वो एक रिश्ते में बहुत जरूरी है। कि अगर आप एक दिन के लिए भी नहीं है तो इंसान को ये फील होना चाहिए अरे यार वो नहीं है। जैसे मम्मी कहीं चली जाती है तो हमें बहुत फील होता है अरे मम्मी नहीं है, पापा कहीं चले जाते हैं तो फील होता है पापा नहीं है, भाई नहीं है, मम्मी नहीं, मतलब एवरीवन, कोई भी आपकी फैमिली में से नहीं है तो एक फील होना क्या होता है कि बस जगह लगती है कि अरे यार वो घर में नहीं है,
0: वो एब्सेंस बनी होती है, फिर वो
1: एक बहुत हल्की एब्सेंस होती है कि अरे हाँ भाभी घर में है, नहीं भाभी घर में नहीं है, तो वो आपको फील नहीं हुआ, जस्ट वो नहीं है, बस एक मेंबर नहीं है। लेकिन किसी किसी की कमी बिल्कुल डीप जाके खल जाती है कि वो घर में नहीं है तो अजीब सा लग रहा है। तो वो एक अपनी प्लेस बनाना किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की आदत नहीं डालेंगे तब तक आपके रिश्ते में वो एक जो प्योरिटी होती है, वो जो
0: इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी, फिर तो ये लगेगा कि बस टाइम पास है,
1: टाइम पास है,
0: टाइम पास है। तो भाई हमारे रिश्ते में कोई टाइम पास नहीं है, क्योंकि एब्सेंस खलती है और उस एब्सेंस को का जो एक खाई होती है, गड्ढा होता है, उसको वही इंसान भर सकता है जिसके लिए आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता है।
1: बिल्कुल।
0: अदरवाइज जितने भी लोग आ जाए यार उसको फिल नहीं कर पाएंगे। नव्या ने लिखा है कि मेरा कहना बहुत सुनते हैं भोले बाबा जी, क्योंकि मैं उन्हीं के सहारे हूँ और इसीलिए आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होगी।
1: वाओ, थैंक यू सो मच नव्या जी, और हम सभी उन्हीं के सहारे हैं।
0: नव्या जी, आज आपने दिल की बात बोली है और आप दिल से दुआ करिएगा भोले बाबा के पास जा करके, तो मैं आपको अपने स्टूडियो में जरूर बुलाऊंगी एक दिन नव्या जी, और उस विश के बदले जो मेरी विश पूरी का आप होगी, उस विश के बदले ना फिर तो आप जो भी मांग लो मेरे से।
1: वाओ, मतलब ये तो बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि वो विश पूरी हो जाए मैम, क्योंकि मतलब हो जाए बस, और कोई वो नहीं है, हो जाए बस, तो जरूर होगी। फिलहाल चलते हैं बहुत ही प्यारी सी एक दुआ के साथ, एक प्यारी सी खुशी के साथ, एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक पे लिसनर्स, और बस यूं गए और यूं आए, और फटाफट से मैम को लेकर के वापस आती हूँ, लेकिन इस सॉन्ग के उस पार। चलिए

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा वाला शो सुन सहेली।
5: इस मौसम में नींद आती है ना बहुत?
4: हाँ मैम, नींद तो आती है।
5: क्या आती है?
4: नींद
5: सुधर गई है?
4: हाँ, सुधरना पड़ता है, क्या करें।
5: नहीं, सुधरना पड़ा ये बोलो।
4: अच्छा, सुधरना पड़ा। ओके, तो भाई हम तो सुधर गए हैं और दिल से ये आशा करते हैं कि कोई और भी सुधर जाए। बस मैम, आपको हंसी क्यों आई? क्योंकि मैम सुधर, मतलब मैम समझ गई है कि मैंने किसके लिए कहा है,
5: इसीलिए तो हंसी आई।
4: हाँ चलिए, हंसी ऐसी ही बनी रहे और सुधरने वाला सुधर जाए, ऐसी दुआ है। तो चलिए लिसनर्स, अब सुधरते हैं और सुधारते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं और हमारे नेचर को थोड़ा सा सुधरते।
5: गीता जी एंड आशु जी आ गई हैं, ठीक है। गीता जी एंड आशु जी, मोस्ट मोस्ट मोस्ट वेलकम। तो चलिए अभी आज के अभी नई अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पानी पीते पीते, क्योंकि गर्मी तो लग नहीं रही, लेकिन हाँ भूख लगी है। और भूख लगने के साथ साथ भी कोई साधन नहीं है, तो हम लोग पानी पी करके आपके साथ बातें कर रहे हैं। और आप हैं कि कोई एक अच्छा सा मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, भाई गलत बात है। हमारी फीमेल लिसनर से मुझे ये उम्मीद रहती है कि आप लोग कुछ तो अच्छे से मैसेजेस करेंगे, बट आप लोग भी मुझे लग रहा है खा पी करके सब लोग बस आ गई हैं इसी वाले रूम।
4: बैठी हूँ मैं तो भाई, कुछ इमोजी ही भेज दीजिए खाने पीने वाली, मतलब
5: उससे क्या होगा?
4: उससे ये होगा मैम कि देख के, कहते हैं ना, जैसे देख भी लो थोड़ा सा मन को, यू नो, वो मिल जाता
5: इससे
4: है,
5: और लपक लपक जीभ लपक
4: संतोष मिल जाता है। तो थोड़ा फिलहाल देख के हम काम चलाएंगे,
5: संतोष मिल जाएगा। ये कौन है?
4: आई मीन वो,
5: अच्छा हमें लगा संतोष,
4: क्या है? कहते हैं उसे, वो नहीं याद आ रहा है, मतलब इसको कुछ कहते हैं,
5: कुछ कहते हैं पर वो अभी मुंह में आ नहीं रहा है।
4: थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा,
5: थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा।
4: तो चलिए अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि हम दोनों ही आपको इस टॉपिक पे बताने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है वो आपको बताएंगी आपकी बहुत ही स्वीट सी, प्यारी सी, क्यूट सी और थोड़ा सा गुस्सा करने वाली, थोड़ा सा।
5: मेन बात अब बोलिए लास्ट में।
4: वो लास्ट में जान पूछ कर मैंने मेन बात बोली।
5: लास्ट मेन, असल में हम, अगर हम घर में भी यही कहते हैं, जब चिंकल जी या लोग या कोई हमको बटरिंग करती है, तो हम कहते हैं कम टू द पॉइंट, क्योंकि जो मेरी पॉइंट पर पॉइंट पे आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अभी अपने टॉपिक को, कि जो कि है इमोशनल अब्यूज एंड साइलेंट ट्रीटमेंट। तो साइलेंट ट्रीटमेंट की जरूरत सभी को होती है, जो भी लड़ाई झगड़े में होते हैं उन्हें भी, जो एक रिश्ते में होते हैं उन्हें भी, घर के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी। तो कैसे है ये साइलेंट ट्रीटमेंट, होता क्या है इमोशनल अब्यूज, होता क्या है, हम सब पे बात करेंगे। लेकिन ये क्यों होता है ये पहले हमको अंशिका बताएंगे।
4: तो सबसे पहले बताते हैं कि ये रिश्तों में क्यों होता है। ये रिश्तों में तब होता है जब कहीं ना कहीं हमारी रिश्तों को एक पकड़ कर रखने की चाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
5: अच्छा,
4: पकड़ कर रखने की चाह का मतलब होता है कि रिश्तों में हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर जैसा हम चाहते हैं वैसा ही खुद को बनाए। और मान लीजिए आपको पिज्ज़ा बहुत पसंद है, आपके पार्टनर को पिज्ज़ा पसंद नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि वो भी पिज्ज़ा ही खाए। क्यों? क्योंकि हमें पिज्ज़ा पसंद है। जरूरत से ज्यादा किसी को कंट्रोल कर लेना, अपनी हर इच्छा अगले पर थोपना।
5: पर मेरी तो कुछ दूसरी वाली वो है, अगले को अगर दाल चावल पसंद है, अगले को अगर पनीर पसंद है तो मुझे दाल चावल पसंद है, तो इससे अच्छा है ना कि दो वैरायटीज हो जाती हैं कि हाँ हम पनीर भी मंगवा लेते हैं और दाल चावल भी मंगवा लेते हैं।
4: बिल्कुल, लेकिन ये तो समझदार, एक जो समझदारी वाली बात हो गई,
5: हम समझदार हैं
4: बिल्कुल, ये समझदारी वाली बात हो गई। बट कुछ ऐसे प्राणी हैं इस धरती पर जो कि समझदार नहीं होते हैं और उनको बस ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनका पार्टनर अगर सांस भी ले रहा है तो वो उनके हिसाब से लेनी होगी। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि आप चल भी रहे हो ना तो मेरी तरीके से, आप कुछ पहन भी रहे हो, अरे यार नहीं मुझे ब्लू नहीं पसंद है, मुझे रेड पसंद है, तुम रेड कलर की शर्ट पहन लो, या मुझे ब्लू साड़ी नहीं अच्छी लगती, तो एक काम करो मुझे ग्रीन अच्छी लगती है, आप ग्रीन साड़ी पहन लो। क्यों भाई, दूसरे को जो अच्छा लगता है उसे वो भी तो आप करने दीजिए। तो इस तरीके से जब हम ये करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में इमोशनल अब्यूज और एक जो साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब होता है रिश्ते में चुप्पी का आ जाना, वो हो जाता है कि हम सोचते हैं कि
5: करने दो इसको,
4: हाँ करने दो अपनी वाली। और दूसरा होता है कहीं ना कहीं कि बचपन, जैसे हम कहते हैं ना कि बचपन, अच्छा आपने एक वो सुना होगा कि बचपन में अगर किसी के मन में डाल दो कि सांप सांप सांप, तो अगर उसको बचपन में वो डर हो गया तो आई थिंक कि वो लाइफ टाइम बना रहेगा। मतलब बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि बचपन में कोई भी ऐसी बात दिमाग में मत डालिए, क्योंकि अगर वो बैठ गई तो उसका डर ताउम्र जब तक वो रहेंगे तब तक बना रहेगा। तो कुछ ऐसा ही होता है कि कई बार बचपन का माहौल ही ऐसा दिया जाता है या माँ बाप का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसको देख करके बच्चे में वो चीज़ें कहीं ना कहीं खुद पर खुद ही खुद आ जाती हैं।
5: और एक पॉइंट है कि जिसमें ना मतलब ये क्यों होता है, ये जो है इमोशनल एब्यूज क्यों होता है, वो इसलिए भी होता है कि मान लीजिए कि बच्चों में और पेरेंट्स में कहाँ कभी कहाँ सुनी हो गई, अब पेरेंट्स ने क्या किया कि उनसे बात करना बंद कर दिया।
4: हाँ
5: मतलब बात बंद हो गई, तो काफी दिन तक बात बंद हो गई, हफ्ता भर हो गया, और वो बड़े बच्चे हैं। अब अगर बच्चों ने ये चीजें देखी तो वो बचपन से ही उस आदत को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। कि शायद ऐसा ही होता है कि जब कोई कहां पर लड़ाई होती है तो साइलेंट हो जाना ही रिश्ते को हम आगे चल करके सुधार सकते हैं। तो ये बचपन में ही उस माहौल में पले बड़े होते हैं कि वो इस आदत को अपना मान लेते हैं।
4: बिल्कुल। एक पॉइंट और आता है जो कि होता है कि हम कई बार अपने इमोशंस को बिल्कुल नहीं संभाल पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा प्रवोक हैं किसी बात को लेकर के और मन लड़ने का होता है तो हम जाते हैं बिल्कुल तेज़ी से बहस कर लेते हैं किसी से भी, एवरीवन, जब आप गुस्से में होते हैं। कई बार हम दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, कभी खुश होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एक लेवल अप हो जाता है खुशी का। लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को कई बार न संभाल पाना, इनमेच्योर बिहेव करना, हम हमेशा क्यों कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे बने रहे तो थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन सभी मैच्योर नहीं होते और इसलिए भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। मान लीजिए मुझे किसी से बहुत गुस्सा है, हो सकता है उसकी कोई बात मुझे नहीं अच्छी लगी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन सीधे जाकर बहस कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपकी किसी से सीधी बहस हो भी गई है तो कभी भी उस मतलब किसी भी बात को खींचिए मत, जैसे हम कहते हैं ना कि धागे को ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा, ठीक उसी तरह रिश्तों में झगड़े होते हैं। कोई आपका बहुत अपना होगा तो उसके साथ आपकी लड़ाई होगी, बहस होगी, गलतफहमियां होंगी, वो बहुत कॉमन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक बात अगर हमारी एक दिन हो गई है तो अब उसको लेकर हम 10 दिन बात नहीं करेंगे कि अब चलो उनसे मेरी अनबन हो गई, हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक दिन कोई बात हुई, मान लो आपने जम के झगड़ा भी कर लिया, कुछ कह भी दिया, दूसरे दिन आप उसको भूल के बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए। जब आप नॉर्मल हो जाएंगे तो वो अगला इंसान कहेगा अरे यार इसको तो कुछ याद ही नहीं, ये तो इसने तो कुछ वही नहीं किया, रहने तो मैं भी।
5: और जबकि मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि आप उससे अब्यूज ना करें, आप उससे बहस ना करें। और फिर एक पॉइंट आता है, उसी पर एक पॉइंट आता है कि ताने मारना, मतलब जब कड़वाहट भर जाती है तब हम तो वो इंसान गुस्से में नहीं, जबकि टोन उनकी बदल जाती है, ताने मारना या फिर कमेंट बाजी करना और किसी भी रूप से वो अपनी
4: फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहते हैं,
5: फ्रस्ट्रेशन को और खुन्नस को बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि ताने मारना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इस रिश्ते को कैसे प्रभावित किया जाता है, मतलब क्या इसके वो हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, वो पॉइंट केवल दो हैं। पहला पॉइंट ये है कि इमोशनल डिटैचमेंट हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब हो जाता है दूरी, यानी कि हम पूर्ण रूप से अपनी फीलिंग जिसके साथ शेयर करते हैं उससे हम दूर होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम उस इंसान से लड़ना, बात करना सब कुछ बंद कर देते हैं, प्यार की जगह प्यार पूरी तरह से बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। ठीक है, पार्टनर साथ तो होते हैं लेकिन एक अजनबियों की तरीके से।
4: जी मैम,
5: सबसे खतरनाक स्टेज यही।
4: बिल्कुल, अगर किसी भी रिश्ते में ये स्टेज आ रही है, जैसा कि भी मैम ने आपको ब्रीफ किया बताया, तो इसका मतलब है कि उस रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि मेरी और उनकी लड़ाई हो गई, आपने कभी सुना होगा कि हम कहते हैं मेरी और मेरे दोस्त की यार बड़ी जमने वाली, बड़ी गंदी वाली लड़ाई हो गई। वो तब हुई जब आप लड़ना चाहते थे। कई रिश्तों में तो ऐसा होता है कि वो कुछ भी करे अगला इंसान, हम कहते हैं छोड़ो ना, हटाओ यार, उनके बारे में बात नहीं करनी, उनसे बात नहीं करनी, वो ऐसे ही है, छोड़ दो, हटा दो। ऐसे भी हमारी लाइफ में इंसान होते हैं जिनकी गलती होगी फिर भी हम उन्हें नहीं कहना चाहते, वो कोई अच्छा काम करते हैं फिर भी हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं होते हुए भी वो हमारे लिए एग्जिस्ट करना बंद कर जाते हैं। और ये तब होता है जब कोई आपको बहुत पीक पे ले जा करके कुछ हर्ट कर, देखिए हर्ट करने की बात नहीं होती है, किसी का बिहेवियर जब बद से बदतर हो जाता है तब ये सिचुएशन आती है, क्योंकि हम उस इंसान को टॉलरेट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं रहने दो, हटाओ। लेकिन फिर भी कहूँगी कि अगर ये स्थिति भी है आपके रिश्ते की, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि अगर सुधर सकता है तो हम सुधार लें, और नहीं सुधर सकता है तो फिर ना सुधरने वालों को सुधारना भी आना चाहिए, स्पेशली फीमेल्स को, तो कुछ लोगों को सुधारना बिल्कुल आना चाहिए।
5: लास्ट पॉइंट।
4: यस मैम, लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि आत्मविश्वास का खत्म होना
5: या कॉन्फिडेंट का खत्म।
4: हाँ बिल्कुल, कई बार हमारे रिश्ते में जब ये सिचुएशन होती है तो हमारी अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो उसको ना खत्म करें, उसको बरकरार रखें, क्योंकि जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बरकरार रखें क्योंकि जब
5: बरकरार तुमने बोला,
4: हाँ वो मिस हो गया,
5: देखो एक शब्द इनका मैंने सही कराया था, अब दूसरा शब्द सही करा रहे हैं।
4: हाँ
5: बरकरार
4: तो वो रखें, और जब तक मतलब
5: क्या रखें,
4: बरकरार वो रखें, और ऐसे ही जैसे भी मैम ने मुझे सुधारा है वैसे ही जो बिगड़ जाए उनको सुधारते रहिए। और थोड़ा फीमेल्स के लिए स्पेशली कहना चाहूंगी कि थोड़ा कड़े वाले बिहेवियर के साथ सुधारिए, क्योंकि वो आप ही सुधार सकते हैं।
5: बिल्कुल,
4: कहते हैं ना हमारे बिगड़े हुए को हम ही सुधार सकते हैं, तो सुधारने पे कॉन्सेंट्रेट करें स्पेशली, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट ही रखें। और फिलहाल के लिए हम दोनों सहेलियों को इजाजत दीजिए जाने के लिए, नहीं एक पैरिस सॉन्ग के लिए। हाँ। वरना ये हो जाएगा कि आज लगता है
5: बोलते ही रहेंगे ये
4: आज,
5: बोलते
4: नहीं
5: ही
4: नहीं फिर लिसनर्स को ये हो जाएगा मैम कि लगता है आज मैम लोग मरिया मतलब सारा पानी वानी पी के और पूरी बूस्ट होकर के आई है कि आज आवाज ही सुनाई दे।
5: लेकिन एक बात है, आज बाकी लिसनर्स हैं कहाँ, मुझे लग रहा है आज कोई फेस्टिवल तो नहीं है आज।
4: ऐसा तो कोई
5: अभी
4: भी
5: तो कल ईद हुई है ना।
4: हाँ।
5: तो ये गए होंगे अपने अपने फ्रेंड्स के यहाँ मिलने गए होंगे, इसीलिए आज बहुत ज्यादा सन्नाटा है। चलो पर कोई नहीं, हम बस यूं गए यूं आए, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ इस प्यारे से गाने के साथ।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा वाला शो सुन सहेली, जिसमें कि फिर से हाजिर हो गई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका आपसे बातें करने के लिए,
3: पानी वानी पी करके
2: और खाने की फोटो देख देख करके क्योंकि अभी मतलब मैं फोटोज में देख रही थी और बहुत
3: मैं
2: अच्छी
3: भी एक रेस्टोरेंट में एक है सेलिब्रिटी है, मैं उसको देख रही थी, खा रही थी। वो यार जापान में जाकर के वो लोग एक स्टार्टर खा रहे थे।
2: बताइए जापान में जाके खा रहे हैं यहाँ गोंडा में रह करके भी। खैर
3: चलो
2: वो तो एक
3: हाँ
2: काम करते हैं, क्योंकि फिर खाने की बात हो जाती है तो फिर और कुछ मतलब हो जाता है, तो पहले हम काम की बात करते
3: हैं। एक तो दोपहर ऊपर से खाना और सोना यही दोनों काम होते हैं, वही उसी उन्हीं दो चीजों से हम इस समय वंचित हैं
2: और वही बार बार दिमाग में आ रहे हैं।
3: बार बार दिमाग में आता है। तो सबसे पहले हम लोग चैट बॉक्स में आएंगे अंशिका, उसके बाद अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो नव्या जी एंड प्रबल जी, मनी शर्मा जी और अच्छा जी एंड उस्मान खान जी, हैप्पी ईद आप सभी को भी। और गीता जी, नव्या जी अगेन मनी शर्मा जी, प्रबल जी, आपस में कितनी ज़्यादा बातें करते हो यार, मतलब मुझे लगता है कि क्या पिटारा लेकर के आते हैं आप लोग, बातों का पिटारा लेकर के आते हैं ना। अच्छा,
2: और सारा यही खोल देते हैं।
3: अच्छा आप लोग सच बताओ कि आप लोग हम लोगों की बातें सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कितना हाय कितना सुकून। प्रबल जी को पता नहीं क्यों सुकून आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग हम लोगों की बातें सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं प्लीज मुझे इतना बता दे केवल,
2: या फिर सिर्फ अपनी कहते हैं,
3: सिर्फ अपनी खाली बस चैटिंग करते हैं, जो जिसका जवाब सही और अच्छा आया उसको हम सुनाएंगे उसकी मन पसंद का एक सॉन्ग।
2: फिर तो भाई जल्दी जल्दी से टाइप करिए और अपना कोई बढ़िया सा
3: जल्दी से जवाब दे दीजिए कि आप लोग सिर्फ हम लोगों की बातें सुनते हैं या आपस में बातें करने आते हैं। तो जिसका आंसर हम लोगों को अच्छा लगेगा ना, हम लोग उनको उनकी पसंदीदा सॉन्ग को सुनाने का मौका देंगे।
2: बिल्कुल। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। जैसे कि आप सभी को पता होता है लिसनर्स की फ्राइडे होती है रिश्तों की बहार, तो अभी हमने एक पॉइंट पर बात की थी, अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं जो कि दूसरा पॉइंट है हमारा, कि जैसे होता है ना कि ज्वालामुखी आपने कभी देखा होगा, उसमें जब सालों में मतलब कई सालों के बाद वो फटता है, जब लावा जो होता है उसमें मतलब जो आग होती है वो पूरी तरीके से भर जाती है तब वो फटता है, ब्लास्ट होता है, ये सभी जानते हैं। तो रिश्तों में भी आई थिंक कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कि कहीं ना कहीं मन की जो एक कड़वाहट होती है रिश्तों में वो धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। तो आज हम इसी पॉइंट को लेंगे और फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आपको मैम बताएंगी और फिर उसके आगे हम बात करेंगे।
3: अभी हमने बोला था ना कि जिसका आंसर अच्छे से आया तो मैं सबको एक एक सॉन्ग सुनने का मौका दूंगी। तो बहार आ गई है, बहार बहार बहार, लेकिन इस बहार के बीच में मुझे बड़ी हंसी आ रही है इसी वजह से, क्योंकि मज़ा आ गया कि ये बोला और सभी के मैसेजेस आने लगे, तो किसी को बोनस वोनस नहीं मिलेगा,
2: कैंसिल, क्योंकि हमारा मन बदल गया है।
3: हमारा मन बदल गया, मेरी मन मेरा मर्जी। तो भाई आप जो भी पूछ कर देखें, जो भी आज बताया है हमने सब याद है। अच्छा ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं और फिर आपकी मैसेजेस को फिर से रीड करेंगे और देखेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, मन होगा तो फिर किसी एक लिसनर के सॉन्ग को हम सुनाएंगे, ठीक है?
2: वो हमारे मन पे डिपेंड करता है।
3: चलिए, तो कड़वाहट का धीरे धीरे जमा होना ये सबसे बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोग ना जो साइलेंट किलर जिसको कहते हैं कि अंदर ही अंदर अपनी बात को छिपा के रखना, तो और जो भड़ास निकाल देना, वो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर होते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब कोई अधूरी बातें रह जाती हैं, ये इसीलिए होता है। और जब एक पार्टनर लगातार अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को, बहुत सारी इच्छाओं को, उम्मीदों को अपनी वो दबा के रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बातों का कोई भी मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है, तो इसीलिए ये जो कि कड़वाहट होती है वो धीरे धीरे जमा होने लगती है। और ये कड़वाहट केवल एक हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होती है, एक फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकती है, माँ बाप और बच्चों के बीच में भी हो सकती है, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोगों के साथ भी हो सकती है। इसीलिए जिस पर भी आपको कुछ अगर डाउट हो तो आप बिल्कुल भड़क करके खत्म कर डालो तुरंत बोल बात के।
2: बिल्कुल, रिश्तों में गैप की जगह नहीं होती है, ठीक उसी तरीके से हमारे रिश्तों में कड़वाहट की भी जगह नहीं होती है। और सेकंड पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि झगड़े से बचने के लिए या बातें ना बढ़ें उसके लिए कई बार लोग कहते हैं अगर हमें सामने वाले की बात बुरी भी लगती है तो हम कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो हटाओ रहने दो, बात नहीं करते हैं। लेकिन ये कह करके अपने बातों को कभी भी हटाना नहीं चाहिए।
3: और उस मैटर को ना कुछ लोग बस खाली रफा दफा कर देते हैं, पर जो ये बात करते हैं ना कि कोई नहीं छोड़ दो, एक्चुअली जहर उनके अंदर भरा होता है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे काफी लोगों को मैंने देखा है। और जो बोल देते हैं ना, मुंह पे बोल देते हैं, भड़ास निकाल देते हैं और फिर उस टाइम के बाद से उनके मन में कुछ नहीं रहता है।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ।
2: कहीं ना कहीं मन में बातों को भरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप किसी के लिए मन में कुछ भी भर करके रखेंगे तो वो बातें आपके माइंड में रेगुलरली चलती रहेंगी, भले आप सामने वाले से नहीं कहेंगे लेकिन आपके माइंड में वो चलता रहेगा, वो आपको सुकून से नहीं रहने देगा। तो इसलिए कोई भी बात हो उसको सामने वाले से कह दीजिए, जो भी अगर वो आपको समझेगा तो वो आपकी बातों को भी समझेगा, अगर नहीं समझ रहा है तो कम से कम आपके मन में तो ये होगी कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, सामने वाले ने समझा या नहीं समझा वो उसका पॉइंट है।
3: बिल्कुल,
2: दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि रिश्ते में ये चीज़ें तब भी आने लगती हैं जब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि चलो अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कई बार हम अपने रिश्तों में ये सोचते हैं कि चलो रहने दो ना बोलो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारा रिश्ता चलता रहे और दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो बना रहे। कई बार ये सोचकर भी हम रिश्तों में ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बेकार के झगड़ों, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी बातों को जो कि थोड़ा सा क्लैश क्रिएट करें उन्हें हम अवॉइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार इस कारण से भी वो बातें मन में धीरे धीरे आपके मन में बैठने लगती हैं।
3: और एक पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि ये दर परत और दर परत परत जो होती है ना, ये उस पर चढ़ती जाती है। किस पे? आपके मन पे, क्योंकि मन से ही सब कुछ होता है। और अगर मान लीजिए कि घर में दो लोग हैं, देवरानी जेठानी हैं, सास बहू हैं, नंद भाभी है, अगर आपको किसी से भी अनबन हुई है, क्यों हंसी आ रही है?
2: नहीं नहीं आप बताइए।
3: अगर क्यों, अगर मतलब कोई भी बात है, अगर आपको किसी को भी लेकर के अगर मन में कुछ हो रहा है तो आप तुरंत ही उस चीज को रफा दफा करो, मतलब कह के बोल करके लड़ाई करके खत्म कर दो और तुरंत अगले ही दिन जा करके आप दोनों

0: कहते रहते हैं। जैसे किसी के लिए मन में कुछ है भी तो हम मन ही मन उन बातों को दोहराते रहते हैं, मन ही मन उन बातों को कहते रहते हैं, और ये साइकोलॉजिकली भी बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि अगर किसी बात को आप मन ही मन, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई पॉजिटिव थॉट होता है जब हमें किसी के माइंड में उसको भरना होता है, मतलब किसी को मोटिवेट करना होता है, तो हम उससे कहते हैं कि आप ये पॉजिटिव थॉट मन ही मन दोहराइएगा। ठीक उसी का उल्टा नेगेटिव थॉट के साथ होता है। अगर आप किसी नेगेटिव थॉट को बार बार अपने मन में दोहरा रहे हैं तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर बिल्कुल बैठ जाती है। जैसे कि मतलब इसको अन्यथा में कोई नहीं लेगा, जैसे कोई काला, मतलब मान लीजिए वो सांवला कलर है और उस वो बार बार अपने मन में ये रट रहा, अरे यार मैं गोरा नहीं हूँ ना, मैं गोरा नहीं हूँ ना, मैं गोरा नहीं हूँ ना, मैं सांवला हूँ, तो धीरे धीरे उसके मन में वो चीज़ बैठ जाएगी और फिर वो उसे आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक उसी तरीके से आपके रिश्तों में भी होता है। अगर किसी के लिए आप बुराई मन ही मन अपने मन में उसको रिसाइकिल करते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपके अंदर, वो इंसान नहीं भी होगा लेकिन वो आपके अंदर बैठ गया तो वो बुराई दिखाई देगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसी मन में मूरत होती है वैसा ही इंसान दिखाई देता है, तो कुछ वैसा ही हो जाता है। इसलिए साफ कहना ज़्यादा बेटर होता है। साफ साफ कह दीजिए, जो भी होगा वो क्लियर आउट हो जाएंगी चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अब हमने बात की अभी तक कि रिश्तों में ये क्यों होता है, अब बात करते हैं कि हमारे रिश्तों में हम इसे कैसे सही कर सकते हैं। मतलब अगर आपके रिश्तों में ये हो भी रहा है तो आप इसे कैसे सही कर सकते हैं, तो कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हमारी प्यारी सी मैम के पास और पहला पॉइंट उन्हीं से जान लेते हैं कि कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मैम जो है ना वो ठीक करना भाई चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानती है। हाँ कोई है जिसे वो ठीक नहीं कर पा रही है, बट आई एम श्योर कि वो उसे भी ठीक कर लेंगी ना मैम।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बिहेवियर को चेंज करना है सबसे पहले तो।
0: ओके।
1: जो मैंने कर लिया है ठीक है, बिहेवियर को चेंज कर लिया है।
0: ओके।
1: और बिहेवियर चेंज करने के बाद में मुझे लग रहा है कि हाँ पॉजिटिवनेस है,
0: चलो
1: बहुत असर जा रहा है।
0: ये तो अच्छी,
1: क्योंकि पॉजिटिव जो वाइब्स होती है ना वो जाती है वहाँ तक, तो ऐसा कुछ लगता है कि
0: हाँ पॉजिटिव उधर से भी फिर मतलब आने लगती है। जी
1: हाँ ठीक है। एंड दूसरा है कि अतीत का जो पुलिंदा ना खोलें कभी कभी।
0: हाँ
1: ये होता है कि अगर आप अपने किसी खास इंसान से मिल रहे हैं या फिर आप किसी अपने से मिल रहे हैं, तो आप उनके साथ जब मिल रहे हैं, अगर जिनके साथ अनबन है, तो आप ना उनके साथ मिलकर के पुरानी बातों का बैग ना खोलें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: आप उनको जिसे कहते हैं ना वो ना बोलें, तुमने ऐसा क्यों किया था, तुमने ऐसा क्यों किया, या ऐसा है वैसा है, ये सब बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो जो मुझे लगता है कि जो पास्ट है उसको पास्ट ही रहने दें, अब जो मतलब जो फ्यूचर है और उसको फ्यूचर पे ही रहने दें, एंड जो हमारा प्रेजेंट है उसको हमें प्रेजेंट ही मान करके चलना चाहिए। एक प्रेजेंट होता है कि वर्तमान और एक प्रेजेंट होता है गिफ्ट, तो दोनों में कुछ ही स्पेलिंग का मिस्टेक है, मतलब हेयर बदल होता है, लेकिन अगर हम लोग प्रेजेंट में प्रेजेंट ही दें अपने पार्टनर को और अपने किसी खास इंसान को, तो आपकी जो लाइफ के जो थोड़े बहुत ऊटपटांग वाले किस्से होते हैं ना वो नहीं होंगे।
0: वाओ, मतलब प्रेजेंट से क्या प्रेजेंट निकाला है, मतलब मजा आ गया मैम। आपने इतना अच्छा प्रेजेंट और प्रेजेंट को प्रेजेंट किया है कि मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।
1: तो ऐसे ही थोड़े ही घर के बड़े बुजुर्ग हैं,
0: ऐसे ही थोड़ी ना हम आज समता है, ये कहती तो अच्छा लगता है।
1: घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे ही थोड़ी मुझे कहा गया है।
0: अब मैं वो नहीं कहती हूँ कि फिर आप को।
1: कमल नयन जी कह रहे हैं कि मैं जिंदगी से अब ऊब चुका हूँ, मुझे मार दो।
0: अच्छा ये तो मतलब कमल नयन जी ऐसा है कि ऐसी जो कार्य है वो हमारे यहाँ सुन सहेली में नहीं होते हैं, तो इस कार के लिए आप कहीं और संपर्क करें।
1: जी बिल्कुल। तो चलिए हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे अपने आप को सुंदर और बेहतर बनाने के बहुत ही प्यारे से नुस्खे।
0: तो चलिए बेहतर बनाते हैं, लेकिन बेहतर बनाने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टेडियम

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली और वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां। और भाई टाइम जो है ना मैम वो इतनी जल्दी निकल जाता है।
3: टाइम इतनी जल्दी निकल गया और हम लोग बहुत
2: नहीं चलते चलते मेरे ये
3: नागेश्वर जी का ही था ना, चलते चलते मेरे गीत याद।
2: यस मैम, तो फटाफट से सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, यानी कि सिर्फ दो रेमेडीज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ आपकी स्किन के लिए। तो सबसे पहली जो है वो ये है कि आपको ठंडा दूध

0: ले लेना है, मतलब ठंडा दूध ले लीजिएगा, रॉ मिल्क, रॉ मिल्क, और उसमें एक
1: कच्चा दूध,
0: हाँ कच्चा दूध, और वो ठंडा भी होना चाहिए,
1: और ठंडा,
0: और उसमें आपको एक चुटकी हल्दी मिला लेनी है, और ये अपने फेस के हिसाब से आप मिलाएगा जितना पूरा आपके फेस पे लग जाए, और इसे अपने फेस पे लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो सनबर्न हो जाता है, मतलब धूप की वजह से चेहरा काला पड़ जाता है, वो नहीं होगा आपको,
1: टैनिंग जिसको हो जाती है, तो वो टैनिंग से इसको रिमूव करता है बहुत अच्छे,
0: और बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि खीरे का रस ले लीजिए, मतलब खीरा ले लीजिए आप, और उसका रस निकाल लीजिए जितना निकल जाए मतलब, और फिर उसमें 2-3 बूंद नींबू के रस को मिला दीजिए, और इसे लगाइए अपने हाथों पे, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ लोग मतलब जैसे गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाती हैं फीमेल जो लड़कियां होती हैं, तो हाथ भी कई बार होता है ना कि काले पड़ जाते हैं धूप के कारण से, तो वो भी हो जाएगा कि उसकी जो है टैनिंग वो पूरी तरीके से हट जाएगी, और आपके हाथ होंगे बहुत ही प्यारे और सुंदर सुंदर।
1: तो भाई ये था आज का हम लोगों का सुन सहेली प्रोग्राम, और कल मिलेंगे, कल यानी कि कल सैटरडे है, फन डे, ऊपर से भी सुपर वाला,
0: सुपर से भी ऊपर वाला,
1: ऊपर से भी सुपर वाला,
0: अच्छा ऊपर से भी सुपर वाला,
1: ऊपर से भी सुपर वाला, और नीचे से भी सुपर वाला, यानी कि ऊपर से भी सुपर से भी ऊपर वाला। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहे इस प्यारे से गाने को, और हम दोनों को दे इजाजत, टेक केयर, बाय
0: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमे एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
8: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
8: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404-3395-84-8840-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

0: नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 3:08 बाय स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया 89.6 एफएम की फ्रिक्वेंसी पर रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपने गोला शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और प्रोग्राम का वक्त हो चला है, यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा का वक्त हो चला है। फ्राइडे स्पेशल 2 घंटे का प्रोग्राम आज आपके लिए बैक टू बैक आपकी फरमाइशें लेकर आ चुकी हैं आपकी आरजी उन्नति। तो वही जिनकी फरमाइशें हम तक नहीं पहुंची हैं, कृपया करके वो कॉल कर लें। कॉलिंग नंबर वही अपना पुराना 6393316429, आई रिपीट 6393316429 और उस पर अपनी फरमाइशें भेज दीजिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी पहली फरमाइश की तरफ, और पहली फरमाइश आई है अमित कुमार जी की, जिन्हें सुनना है माधु दीक्षित में फिल्माया गया सुनिधि चौहान की आवाज़ में आजा नचले मेरे यार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: तबक

क्या बात है, पहली फरमाइश श्रुनिधि की आवाज और माधु दीक्षित का अंदाज, म्यूजिक है भैया सलीम सलमान का, पीयूष मिश्रा ने लिखे हैं भाई इस गाने के बोल। और इस खूबसूरत गाने के बाद आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और अगली जो फरमाइश आई है वो आई है मोहम्मद मुसीब जी की, जो सुनना चाहते हैं ये दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। तो इस फरमाइश को एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पर आपके मैसेजेस को लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

गुंडा। कॉलोट्यून गुंडा में आप सुन रहे हैं मोहम्मद मुसीफ जी की फरमाइश पर ये दिल धड़कने का बहाना ढूंढता है। कुमार सानू की आवाज़ में हम आपको बता दें मिथुन चक्रवर्ती पर फिल्माया गया गाना है, बहुत ही खूबसूरत। और इस गाने के बाद आइए चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ, क्योंकि आपके मैसेजेस आ चुके हैं, आपके कुछ पैगाम आ चुके हैं जो हमें करने हैं कवर। और भैया सबसे पहले मैसेज जो आया है वो आज के शो में आया है गीता श्रीवास्तव जी का, और गीता श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं कॉलोट्यून गोंडा में। इसके बाद मन्ने शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं वेलकम वेलकम टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलोट्यून गोंडा में। दैन नीना जी का मैसेज आया हुआ है, नव्या जी लिख रही हैं गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलोट्यून गोंडा में। के गुप्ता जी जो मैं सुनते हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स से लिख रहे हैं डियर ओके गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं हम। नागेश्वर धाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका भी स्वागत करते हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून टू यू। इसके बाद मोहम्मद मुसीफ जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर अर्जुनती मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा ठीक होंगे, आपका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं हम कॉलोट्यून गोंडा में। एंड इसके बाद आपके बहुत सारे मैसेजेस के बीच में आइए चलते हैं हमारे गानों की तरफ, और गानों को लेकर के मैसेज आए हैं कि गाना बहुत अच्छा है और इसकी तारीफ़ की है भाई के गुप्ता जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुसीफ जी ने भी ये तारीफ़ की है, थैंक यू सो मच। तो भाई क्रेडिट जाता है हमारे लिसनर्स को जो आज के दिन हमें अपने बेहतरीन गाने बेहतरीन फरमाइशें भेजा करते हैं कॉलोट्यून गोंडा में। तो भाई अगर आपकी फरमाइश हम तक नहीं आई है तो उठाइए अपना फ़ोन और डायल कीजिए 6393316429, भेज दीजिए अपनी फरमाइश हम तक ताकि हम आपके गाने को प्ले कर सकें आपके नाम के साथ। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं कॉलोट्यून गोंडा फ्राइडे स्पेशल, आ जाओ सब मिलकर धूम मचाओ। एंड गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं ज़रूर बताइएगा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। एंड ऑफ कोर्स आपका भी स्वागत करते हैं हम कॉलोट्यून गोंडा में। अगली फरमाइश आई है सुनील जी की, सुनील कुशवाहा जी की, जो सुनना चाहते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म से एक बढ़िया सा गाना। तो आइए सुन लेते हैं दिल है तुम्हारा फिल्म से कोई बढ़िया सा गीत आपके लिए। एंड वेल वेल वेल लेट्स गेस कौन सा गाना बजाएं हम दिल है तुम्हारा फिल्म से, कोई गेस कर सकता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो भैया मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक गाने पसंद है, लेकिन अगर आपकी बात करें तो शायद ये पॉपुलर सॉन्ग आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो आइए इसी को एंजॉय करते हैं, दिल लगा लिया है मैंने। Stay tuned. दीपक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सॉरी दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हथियागढ़ गोंडा से, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजेडी मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका स्वागत करते हैं कॉलोट्यून गोंडा में। बने रहिए सुनते रहिए आपका अपना फ्राइडे का स्पेशल कॉलोट्यून गोंडा, आपके अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं सुनील कुशवाहा जी की फरमाइश पर दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, अलका जी और अदित जी की आवाज में नदीम श्रवण का संगीत और बोल थे समीर साहब के। और इस गाने को एंजॉय करने के बाद वक्त है अपनी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। एंड अगली फरमाइश से पहले भाई नागेश्वर जी लिख रहे हैं, कोई भी बोलो धीरे धीरे बोलना, इश्क किया है मैंने चोरी नहीं की है। क्या बात है जनाब, आपकी फेवरेट लाइन लग रही है इस गाने से। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है देवी प्रसाद जी की, और आजकल देवी प्रसाद जी सुनते हैं बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग, तो आपके लिए पेश करते हैं हम उनकी पसंद का गाना, बना के क्यों बिगाड़ा रे। सुनते रहिए कॉल ट्यून गुना आपके अपने एफएम रेडियो 91.6 एफएम, यह गुना शहर की धड़कन पर अपनी आरजी नती के साथ। और अगर आपकी फरमाइशें अभी तक कॉल ट्यून में नहीं आई है तो भैया क्या कर रहे हैं, उठाइए अपना फोन और भेज 0639331429।

जी भाई, कहां हम सुन रहे थे बहुत एनर्जेटिक और दिल को लुभा देने वाला गाना, वहीं पर हमने सुना अभी अभी देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर दिल तोड़ देने वाला गाना। और हम आपको बता दें भाई, लता जी की आवाज़ थी और इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिल को टच कर रहा था। फिलहाल इस जितने में हम गाना बजा रहे थे, इतनी देर में हमारे यहाँ पर तीन तीन फ़ोन बोल चुके हैं, वो भी अलर्ट जारी हो चुका है कि कहीं ना कहीं बिजली गिरने वाली। भैया हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप कहीं आसपास पेड़ों के या खंभों के खड़े हो तो ना खड़े हो, थोड़ा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आपकी सेहत बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए, अपनों के लिए। एंड ओके, हमारे मनीष शर्मा जी बता रहे हैं कि लगातार उन्हें भी अलर्ट आ रहा है, आपको भी आया होगा। अगर आया है तो ओके का बटन दबाइए, क्वालिटी उन एंजॉय करते रहिए, वेदर का ख्याल रखिएगा, बिजली गिरने की संभावना है तो ऐसी जगह पे खड़े मत होइएगा जहाँ पर बिजली ज़्यादा तेज़ी से गिर सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं जिनका नाम है अब्दुल मुजीम साहब, तो आपका स्वागत कर लेते हैं हम कॉलर ट्यून गोना में। एंड आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है रितेश जी की, आज शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। फिलहाल अभी तो दोपहर ही हो रही है जनाब, आपकी शाम कैसे हो गई? ओके, 3:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट शाम होने वाली है, तो आइए शाम होने से पहले आपके लिए गाना प्ले ही कर देते हैं। आप एंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा, अपनी फरमाइशों को भेजते रहिए 6393316429 पर, क्योंकि आज है फ्राइडे का स्पेशल। आपकी आज नदी मौजूद है आप सभी के साथ आपके अपने स्टूडियो में। स्टे ट्यून्ड।

मैं आई और मैं आ भी गई, क्योंकि आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा और आप एंजॉय कर रहे थे भाई। बहुत ही खूबसूरत सी फरमाइश थी रितेश जी की, आज शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई, भाग्यश्री और सलमान खान पर फिल्माया गया गाना था। एंड आवाज़ तो आपने पहचान ही लिया होगा, एसपी बाला सुब्रमण्यम जी प्लस साथ में थी लता जी और उनकी आवाज़ में आप एंजॉय कर रहे थे इस बेहतरीन से गीत को। अगला गाना जो हमारा आया है वो आया है कुमार टेलर्स जी का, जो सुनना चाहते हैं कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू। एंड उससे पहले मैं आपको बता दें कि नेहा जी जुड़ गई हैं जो हमें सुन रही हैं बहराइच से। एंड अभी से शाम आ गई भर धूप ही है काफ़ी, बिल्कुल बात तो सही है, वैसे धूप तो काफ़ी तेज़ है लेकिन हाँ जिस तरह से अलर्ट आ रहा है मुझे लग नहीं रहा है कि धूप एक दो घंटे और रुकने वाली है, क्योंकि कुछ देर में शायद मौसम बदल सकता है, बारिश हो सकती है, तूफान आ सकता है और आई लव बारिश बट आई डोंट लाइक तूफान, क्योंकि लाइट कट जाती है भाई और लाइट कट जाए इसमें किसको मज़ा आता है। फिलहाल आइए एंजॉय कीजिए आप इस बेहतरीन से गाने को, कोई सहरी बाबू, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर जो होने वाली है रीना शर्मा जी की, जो मैं सुनती हूँ उत्तराखंड से, सुनाते हैं उनकी फरमाइश क्या है, लेकिन उससे पहले आप इस गाने को एंजॉय करें। हम मिलते हैं अगले बीट पर, अगले सॉन्ग पर, अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो कुमार टेलर्स की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू, और ये गाना फरीदा और मुमताज के ऊपर फिल्माया गया था। और भैया, हम आपको बता दें कि ये गाना मन्ने शर्मा जी के पापा का फेवरेट है, काफी पसंदीदा गाना है उनका। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए ये बात। एंड अब्दुल मुजीम जी लिख रहे हैं, हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती हैं। अब BMW क्या है ये हमारे लिसनर गेस करने वाले हैं, चैट बॉक्स के अंदर आकर बताएंगे अपने जवाब कि मम्मी की BMW का मतलब क्या है, वो कार वाली, फरारी वाली या कुछ और। फिलहाल आप सोचिए और हम बताते हैं। भैया, नागेश्वर जी ने कहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि 29 को बारिश होगी, भविष्यवाणी नागेश्वर जी आपने कब की थी वैसे? क्योंकि हमने आपकी भविष्यवाणी को नहीं सुना था, सुना होता तो आज हम छाता लेकर आते, और हम ऑफकोर्स लेकर नहीं आए हैं, मतलब भीगने का पूरा पूरा हाल है। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड से फरमाइश आई है रीना शर्मा जी की, और वो सुनना चाहती हैं लता जी की आवाज़ में दिल में बसा था प्यार। ओके, क्या बात है भाई, रोमांटिक सॉन्ग सुनती है रीना जी, और रोमांटिक गानों की फरमाइश में लता जी उनकी टॉप पर होती हैं। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनी फरमाइशों को 6393316429 पर भेजते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

बात है, क्या बात है। रीना शर्मा जी की फरमाइश है, खूबसूरत लिरिक्स है, खूबसूरत आवाज़ है। ब्लैक एंड वाइट के एरा से हम लेकर आए थे आपके लिए जिस दिल में बसाता प्यार। और ओके, तमन्ना शर्मा जी का सपना है BMW लेने का। आई विश आप अपनी इस सपने को ज़रूर कामयाब भी करें, एंड ये मेरी दुआ है आपके लिए। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और हमने अभी तक बहुत सूथिंग, बहुत प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने सुन लिए हैं और रईस साहब की एंट्री हो चुकी है। रईस साहब आते हैं और हमेशा एक ताबड़तोड़ गाना लेकर आते हैं, और अगला गाना जो है वो रईस साहब की फरमाइश पर है, उन्हीं के नाम की फिल्म यानी कि रईस नाम की फिल्म से, लैला में लैला। इंजॉय करते रहिए शाहरुख खान और सनी लियोनी पर फिल्माया गया गाना। आवाज़ किन मोहतरमा की है या बताएंगे चैट बॉक्स में। इंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश है के गुप्ता जी की, अभिनव जी की और लड्डू सिंह की। स्टे ट्यून्ड।

ये सब तो ठीक है, लेकिन लैला के बीच में इतनी गोलियां कहां से आ गई जनाब? अबे ये रही, शाहरुख खान जब भी आते हैं क्यों इतना तोड़ फोड़ कर देते हैं? फिलहाल आई लाइक एक्शन।

इससे पहले कि आखिरी गोली भी चल ही जाए, हम आपको बता दें भाई कि आप सुन रहे हैं रईस फिल्म से लैला में लैला, रईस साहब की फरमाइश पर। एंड इसके बाद ओके मैसेजेस में आया है भाई कि उनकी फेवरेट हीरोइन है सनी लियोनी। ओके एंड काफ़ी सारे मैसेजेस, काफ़ी सारे हार्ट्स, काफ़ी सारे ही हा हा एंड ओके ओके मेरा गाना बजा दे लास्ट रिक्वेस्ट सर, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, आपका गाना बहुत जल्द है, आपका गाना सिर्फ और सिर्फ कुछ गानों के बाद ही है। हम आपको बता दें के गुप्ता जी के बाद अभिनव जी, लड्डू सिंह जी, रीतलाल जी और उसके बाद मनीष शर्मा, आप ही जी की फरमाइश है, तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इसके बाद हम आपका गाना ज़रूर से प्ले करेंगे। मुस्तफ़ा जी, मैम जी, हमारा गाना कहाँ है? आई थिंक ओके मुस्तफ़ा जी आपका कॉल आया था, अगर आपका कॉल आया है तो ज़रूर से आपका गाना बच जाएगा, और नहीं आया है तो इंतज़ार कर लीजिए थोड़ा सा। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना है के गुप्ता जी का तुम मेरे हो। तो इन्जॉय करते रहिए इस खूबसूरत से गीत को, और हम मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तुम मेरे हो तुम मेरे रहना। आपने इस गाने को एंजॉय कर लिया जुबिन की आवाज में, मिथुन का म्यूजिक। और इस गाने के बाद हम चलते हैं अभिनव जी और लड्डू सिंह जी की फरमाइश की तरफ, जिन्होंने फरमाइश की है तहलका फिल्म से। तहलका फिल्म ओके, उसका एक गाना आ चुका है हमारे पास, तो आइए एंजॉय करते हैं दिल दीवाना। एंड मनु शर्मा जी, आपकी फरमाइश बस कुछ देर में प्ले हो जाएगी। आपने 3:14 पे कॉल किया था एंड इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बस आपकी फरमाइश है रीतलाल जी के बाद, तो आप थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, इसके बाद हम आपकी फरमाइश को प्ले करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

और भाई हमारी अगली फरमाइश आ चुकी है रीतलाल जी की। फिलहाल आप सुन रहे थे अभिनव जी और लड्डू सिंह जी की फरमाइश पर तहलका फिल्म से दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। अगली फरमाइश है रीतलाल जी और नेहा जी जो हमें सुन रही है बहराइच से, और उनकी फरमाइश पर आप एंजॉय करने जा रहे हैं कब आएगा मेरे बंजारे। ये वो गाना है जो भाई श्रीदेवी का है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत उम्दा एक्टिंग की है उन्होंने, और श्रीदेवी तो अक्सर डबल रोल करती है, उनकी डबल रोल के लिए भाई सल्यूट है उन्हें। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो भाई आप सुन रहे हैं नेहा जी और रीतलाल जी की फरमाइश पर कब आएगा मेरे बंजारे। और अब वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है मन्ने शर्मा जी की और वो सुनना चाहते हैं मनी मनी। तो भैया आइए, आपके लिए पेश करते हैं हम हनी सिंह की आवाज में गाना, आपका पसंदीदा मनी मनी। जैसे आपका नाम है वैसे ही आपका सॉन्ग भी है। स्टे ट्यून्ड।

भाई मनीष शर्मा जी, हम आपसे माफी चाहते हैं, आप मुझे अपना प्लीज बॉलीवुड का कोई गाना भेज दीजिएगा, क्योंकि हम भोजपुरी गाने नहीं बजा सकते हैं। जिस तरह से आपकी कुछ पसंदीदा गाने हैं, उस तरह से हमारे सीनियर्स के भी कुछ रूल्स हैं, तो हम आपसे माफी चाहेंगे। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना है अनन्या मिश्रा जी का, और अनन्या मिश्रा जी सुनना चाहती हैं एक बेहतरीन सा गाना, हाय क्या पूछते हो, दर्द कहाँ होता है। भाई दर्द वहीं होता है जहाँ होना चाहिए। फिलहाल आप इस गाने को सुनिए, एंजॉय कीजिए, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

मन्नी शर्मा और अनन्या मिश्रा जी की फरमाइश के बाद अब वक्त है हमारी अगली फरमाइश का। अगली फरमाइश आई है लवली जी की, जो सुनना चाहते हैं मेरे दिल को दिल से जोड़ना है। ओके, तो आइए सुनाते हैं हम आपको कुमार सानू की आवाज़ में ये बेहतरीन सा गाना। और इस गाने के उस पार हम लेकर चलेंगे आपको अगली फरमाइशों की तरफ। अगली फरमाइशें होने वाली हैं धान्या जी की, धर्मेंद्र मोहन जी की, अभिषेक जी की, अब्दुल मजीम की, जयेश त्रिपाठी की, मासूम शर्मा की, ओके मासूम शर्मा के नाम से एक और फरमाइश आई है, आनंद शर्मा जी की, मुमताज जी की, राजू सलमानी जी की और रविंद्र जी। तब तक आप इस गाने को एंजॉय करते हैं, जब तक आप कुमार सानू की इस गाने को एंजॉय करते हैं, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिएगा मेरे बाकी लिसनर्स जिन्होंने फरमाइश अपनी भेज दी है। आपका वक्त बहुत जल्द आएगा, एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून को 99.6 FM, यह गुना शहर की धड़कन पर फ्राइडे का स्पेशल। स्टे ट्यून्ड। जिज्ञासा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका स्वागत कर लेते हैं। कैसे हैं आप? आप मैं ठीक हूँ। जिन्होंने लिखा है हाय मैम, हाय, कैसी हैं आप? आपका भी इस्तकबाल करते हैं कॉलर चेंज कोरा में।

0: तो भाई लवली जी की फरमाइश पे आप सुन रहे थे लवली सा गाना, कुमार सानू की आवाज में था। बहुत ही प्यारी सी लाइन थी। अनकमल नयन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका भी स्वागत कर लेते हैं। प्लस धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं इच्छा पूर्ति सॉन्ग, वेरी बेस्ट सॉन्ग। इच्छा पूर्ति सॉन्ग क्या बात है भाई, आपसे कुछ नया जानने को मिला है, थैंक यू सो मच। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, जो कि धान्या जी की है और वो सुनना चाहती हैं, ये तूने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, आपने इंतजार किया और हमने बस आपका गाना प्ले किया। ओके, एक गाने का नाम ही है मैं ये तूने क्या किया। गाना काफी ज्यादा पॉपुलर है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। दोबारा आप सुन रहे हैं प्रीतम का म्यूजिक, अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माया गया गाना। स्टे ट्यून्ड।
1: इतना हुआ बदनाम फिर भी

0: सुनूं।
1: हां जी भाई, तो दिल करता है कि मैं बातें सुनूं और दिल करता है कि मैं गाना सुनूं, लेकिन घड़ी कहती है कि भैया आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आगे बहुत सारी फरमाइशें आपका इंतजार कर रही हैं और वक्त हाथों से निकलता जा रहा है। तो भैया आइए चलते वाली अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है धर्मेंद्र मोहन जी की और वो सुनना चाहते हैं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। और ये वन ऑफ माय फेवरेट सैड सॉन्ग है, मैं सच बता रही हूँ। मनु शर्मा जी ने बहुत सारे स्टार्स दिए हैं, थैंक यू सो मच मनु शर्मा जी। काफ़ी सारे इमोजीज आपकी तरफ से आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो भी लिस्टनर जुड़े हैं चैट बॉक्स से, फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं फरमाइशों को एक के बाद एक। आपने बहुत सब्र किया है अपनी फरमाइशों के लिए, तो इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आपको सुनाते हैं धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर ये वाला गाना जो वन ऑफ माई फेवरेट सैड सॉन्ग है। हम आपको बता दें भाई, 1997 नसीब फिल्म में आया था। इन्जॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए।

और जो नसीब में लिखा नहीं था वो हमको मिला नहीं। कुमार सानू की आवाज में आप इस गाने को एंजॉय कर रहे थे। और वक्त है हमारे अगले गाने की तरफ चलने का, यानी कि अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है आपकी कशिश, नाम है फरमाइश करने वाले का अभिषेक। तो भैया अभिषेक जी की फरमाइश पे एंजॉय कीजिए इमरान हाशमी तनुश्री पर फिल्माया गया गाना हिमेश रेशमिया की आवाज में।

हाँ जी भाई, गुम तो होता है होश जब हिमेश रेशमिया आते हैं माइक पर और उनके गाने होते हैं रिलीज। फिलहाल आप सुन रहे हैं अभिषेक जी की फरमाइश पर आपकी कशिश, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है अब्दुल मुजीम जी की, जो सुनना चाहते हैं भर दो झोली मेरे या मोहम्मद नेहा नाज की आवाज़ में। तो आइए हम आपको सुनाते हैं इस बेहतरीन से गाने को, बेहतरीन से गीत को, और हम यानी कि बेहतरीन सी कव्वाली को, और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो अब्दुल मुजीम जी की फरमाइश पे आप सुन रहे थे नेहा नाज की आवाज में भर दो झोली। और इसके बाद आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है जयेश त्रिपाठी जी की, जो सुनना चाहते हैं पसूरी। तो भी आइए उनकी इस फरमाइश को एंजॉय करते हैं और हम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो होने वाली है हमारे बहुत प्यारे से लिसनर की। एंड उसके बाद फरमाइश है आनंद शर्मा जी की, मुमताज जी की, राजू सलमानी जी की, रविंद्र जी की। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे थे जयेश त्रिपाठी जी की फरमाइश पर पसूरी, और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। कितनी हसरत है मुझे तुमसे दिल लगाने की, और ये गाना आया है आनंद शर्मा जी की फरमाइश पर। एंजॉय करते रहे कॉलर ट्यून गोना, और एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी फरमाइश। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी भाई, तो आप सुन रहे हैं आनंद शर्मा जी की फरमाइश, और वक्त है हमारी मुमताज जी की फरमाइश की तरफ चलने का, और वो सुनना चाहते हैं जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो आइए इस रोमांटिक से गाने को आप इंजॉय करते रहिए। एंड ओके, नव्या जी की फरमाइश आ चुकी है। कमल लैन जी लिख रहे हैं, नाइस, जबरदस्त, बेजोड़ सॉन्ग, थैंक यू सो मच। एंड काफी सारे इमोजीज हैं आपके, थैंक यू सो मच।

मुमताज जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। राजू सलमानी जी की फरमाइश आई है चंदा मामा से भी प्यारे हैं हमारे मामा और ये राजू सलमानी जी के पोता जी सुनना चाहते हैं यानी कि उनके पोता सुनना चाहते हैं। तो फिलहाल आइए प्ले कर देते हैं हम आपके लिए सॉन्ग और हम चलेंगे हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ रविंद्र जी की नव्या तिवारी जी की अलीशा जी की कमल नैन जी और नागेश्वर धाकर जी की।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुनी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते।
1: राजू सलमानी जी की फरमाइश में आप एंजॉय कर रहे थे इस बेहतरीन से गाने को, और अब हम चलते हैं रविंद्र जी की फरमाइश की तरफ। वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो जल्दी जल्दी से अब हम पूरा करेंगे अपनी फरमाइशों के सिलसिले को। और अगली फरमाइश आई है रविंद्र जी की, जो सुनना चाहते हैं गोरी है कलैया। और ये गाना वो है जो हम अक्सर गुनगुनाते थे जब हम अंताक्षरी खेलते थे और हमारे पास वो गा से शब्द आ जाता था।

जी, तो आइए चलते हमारे अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है नव्या तिवारी जी की, और वो सुनना चाहती है, मेरे महबूब जो तू है तो ये दुनिया कितनी हसीन है, बहुत हसीन है, और ये गाना भी बड़ा खूबसूरत है। तो आइए एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को, एंड मुस्तफ़ा जी का गाना भाई आज प्ले नहीं हो पाया है, फिलहाल मैं कोशिश करूँगी मुस्तफ़ा जी आपके सॉन्ग को जाने से पहले प्ले करने की, तो इंतज़ार कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।

इस खूबसूरत से गाने को बीच में रोकने के लिए भाई मैं माफी चाहूंगी। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना है सैयारा, एंड आप एंजॉय कीजिए सैयारा फिल्म का टाइटल ट्रैक सैयारा बाय द वे। एंड इसके बाद हम चलेंगे हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ, जो कि है मुस्तफा जी की और नागेश विधाकर जी की। स्टे ट्यून्ड।

मनीषा जी की फरमाइश पे आप सुन रहे थे। ओके, आप सुन रहे थे सैयारा और वक्त है हमारी आखिरी फरमाइश नागेश्वर धाकड़ और मुस्तफा जी की फरमाइश की तरफ चलने का। और ये फरमाइश उन सबको डेडिकेटेड है जो हमारे साथ लगातार बनी है, लेकिन उन्होंने अपनी फरमाइश हम तक नहीं भेजी थी किसी कारण। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे थे कॉल ऑफ 99.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन पर। आज का शो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा अपने फीडबैक के जरिए। नव्या जी ने लिखा है, बाय बाय, टेक केयर, रखना एवरीवन, मैं तो चली, बाय मैम, बाय। आपको भी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आज बहुत मज़ा आया आज के शो में, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार बने रहने के लिए, इन्जॉय करने के लिए मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए कॉलेज इन गोना में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। मैं हूं आयुष श्रीवास्तव।
2: और मैं आयुषी।
1: लेकर हाजिर हूं गोंडा हलचल। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में देवीपाटन मंडल में बिजली चोरी के 17 मामले पकड़े गए। वहीं खाद की दुकानों के लाइसेंस निलंबित, 15 दिन बाद भी नहीं बदला ट्रांसफार्मर। अंधेरे में गोंडा के कई गाँव, पिकअप ऑटो की भिड़ंत, महिला की मौत, 2 लोग हुए घायल। बालपुर पुल के पास हादसा, इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय तोड़ा दम।
2: गोंडा में दिन दहाड़े मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में हुई इसकी पहचान। बता दें कि नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 25 मई को दिन दहाड़े महिला से मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपी अजय उर्फ कालिया को पुलिस ने आज बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे में चोरी किया गया मंगलसूत्र भी बरामद हो गया है। घटना 25 मई को दोपहर 3 बजे गुड्डूमल चौराहे के पास हुई थी। इटियाथूक थाना क्षेत्र के डेढ़वा गुलाम गांव की रहने वाली काजल पासवान टटेरी बाजार से सामान खरीद कर लौट रही थी। सड़क किनारे खड़ी होकर फोन पर बात करते समय अजय उर्फ कालिया ने उनके गले से मंगलसूत्र छीन लिया था और फरार हो गया था। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है। छिनौती के दौरान काजल के सीने में भी चोट लग गई थी और साड़ी का कुछ हिस्सा भी फट गया था। नगर कोतवाली बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इसी आधार पर 28 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। बाजार में अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है।
1: जनपद गोंडा में ईद उल अजहा बकरीद त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, चारों तरफ चहल पहल का। बता दें कि पुलिस अधीक्षक गोंडा नीत जायसवाल द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक एवं पर्याप्त पुलिस बल के साथ ईद उल अजहा बकरीद त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर लगातार भ्रमणशील रहकर पैदल गश्त कर नमाज की शांतपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में साकुशल संपन्न कराया गया है। पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा शहर क्षेत्र की विभिन्न मस्जिद, ईदगाह एवं अन्य स्थानों पर पैदल गश्त, भ्रमण एवं धर्मगुरुओं तथा आमजन एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया है तथा आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई थी। ड्यूटी पर तैनात समस्त पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया है कि वे सतर्क दृष्टि रखते हुए ईद उल अजहा बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराएं। यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सही बनाए रखें तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए कि धर्मगुरु मौलवी से वार्ता कर बताया गया कि त्योहार के दृष्टिगत भारी संख्या में पुलिस एवं PSC बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील स्थानों पर लगातार QRT भ्रमणशील है। संवेदन एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा निरंतर निगरानी भी की जा रही है। सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मचारी एवं महिला पुलिस कर्मचारी की संयुक्त टीम को लगाया गया है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में CCTV कैमरा एवं ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है।
2: बालाजी मंदिर में स्थापना दिवस धूमधाम से हुआ संपन्न। बता दें कि देहात कोतवाली क्षेत्र के पूरे ललक स्थित सिद्धि पीठ श्री बालाजी मंदिर में देर रात स्थापना दिवस का भव्य आयोजन पूरा हुआ। इस अवसर पर भजन कार्यक्रम, विशाल भंडारा और 26वां सवामणि हवन पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 30,000 से अधिक श्रद्धालु ने भाग लिया और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। प्रदेश में विभिन्न स्थानों से आए कलाकारों ने हनुमान जी और बालाजी की आकर्षक झांकियों के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। सवामणि हवन कार्यक्रम में देवी पाटन मंडल के अन्य जिलों के भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम सुबह 4 बजे तक चला। अत्यधिक भीड़ के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मान्यता है कि इस बालाजी मंदिर में शनिवार और मंगलवार को विशेष रूप से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है।
1: 2026 की जनगणना में सामने आ रहा कि मकानों में स्नान घर नहीं, घास फूस की ओट में काम चला रहे ग्रामीण। बता दें कि जनपद के अधिकतर ग्रामीण घरों में स्नान घर की सुविधा नहीं है। जनगणना के प्रथम चरण में चल रही भवन एवं मकान की गिनती के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं की कमी भी उजागर हो रही है। जैसे जनगणना के दौरान परगड़ा 33 बिंदुओं पर जानकारी जुटा रहे हैं। इनमें से घर में स्नान घर की उपलब्धता से जुड़े सवाल पर बड़ी संख्या में परिवारों ने बताया कि उनके घर में स्नान घर नहीं है। परगड़ा के अनुसार महिलाएं, बच्चे और अन्य लोग खुले में अथवा अस्थायी घास फूस की ओट बनाकर स्नान करने को मजबूर हैं। भवन एवं मकान गणना के दौरान पेयजल और जल निकासी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति भी सामने आ रही है। कई गांवों में अधूरी पेयजल परियोजना के कारण लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहे हैं। अधिकांश परिवार कम गहराई वाले छोटे हैंडपंप पर निर्भर हैं। वहीं घरों में निकलने वाले गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। कई स्थानों पर नालियों और नालों से उचित कनेक्शन न होने के कारण गंदा पानी घरों के आसपास फैले हुए हैं।
2: विकसित भारत 2047 कला प्रतियोगिता का परिणाम घोषित, श्रद्धा गंगवार ने जीता प्रथम पुरस्कार। बता दें कि गोंडा जिला प्रशासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित विकसित भारत 2047 कला प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्त्री पीजी कॉलेज की छात्रा श्रद्धा गंगवार ने सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर 51,000 रूपए नगद इनाम जीता। प्रतियोगिता में प्रियांशी साहू को दूसरा स्थान मिला, जिन्हें 21,000 रूपए दिए गए। एलिजा अख्तर ने तीसरा स्थान हासिल कर 11,000 रूपए की इनाम राशि को जीता। सीनियर कला प्रतियोगिता में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। श्रद्धा ने बताया कि ये प्रतियोगिता 18 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी। परिणाम लगभग 2 महीने बाद सामने आए हैं। श्रद्धा की माता कैकई देवी ब्यूटिशियन का काम करती हैं, जबकि उनके पिता का निधन हो चुका है। डीएम प्रियंका निरंजन और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर रामचंद्र ने श्रद्धा को बधाई भी दी।
1: जनपद में बड़ी उपलब्धियों के साथ मंडला आयुक्त का हुआ स्वागत। बता दें कि मंडला आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मंडल के समग्र विकास का प्रस्तुत किया रोड मैप। बता दें कि कृषि, पर्यटन और रोजगार पर फोकस। आयुक्त ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी देवीपाटन मंडल की व्यापक योजना। 22 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम को उनके सरकारी आवास पर देवीपाटन मंडल की मंडला आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट की, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को देवीपाटन मंडल के समग्र एवं योजनाबद्ध विकास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुलाकात के दौरान मंडला आयुक्त ने सीएम के सामने मंडल के चारों जनपद यानी कि गोंडा, बलरामपुर, बहराइच एवं श्रावस्ती की संभावनाओं, प्रमुख चुनौतियों तथा उनके समाधान के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। इसके साथ ही विकास का विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्यमंत्री ने काफी सराहना की और इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर मंडला आयुक्त ने मुख्यमंत्री को बहराइच के ODOP उत्पाद गिफ्ट भी किया है। कतन्या घाट क्षेत्र में इको टूरिज्म और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्तुत की कार्य योजना। वहीं कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से युवाओं को मिलेगा स्थानीय स्तर पर रोजगार। बता दें आयुक्त ने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी, जैविक खेती, फसल विविधीकरण तथा विकास उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि मंडल में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके साथ ही आयुक्त ने मुख्यमंत्री को देवीपाटन मंडल में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं एवं निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की प्रगति से भी विस्तार पूर्वक अवगत कराया है। उन्होंने मंडल में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पर्यटन एवं आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की वर्तमान स्थितियों एवं उनकी प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। जानकारी दी प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट एवं विकास कार्यों की प्रभावी क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के विकास को लेकर प्रस्तुत योजनाओं एवं सुझावों की सराहना की।
2: सरयू नदी की सफाई को लेकर महंत का अमरण अनशन शुरू। बता दें कि गोंडा करनैलगंज तहसील क्षेत्र में श्री राम जानकी मंदिर लाल घाट भौरीगंज के महंत गोकर्णनाथ दास अपने साथियों के साथ अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। ये अनशन सरयू नदी और लाल घाट पर फैली गंदगी की सफाई की मांग को लेकर शुरू किया गया था। अनशनकारी महंत की मुख्य मांग है कि घाट में तत्काल साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि दूषित जल के कारण जल जीवों की मृत्यु हो रही है। अवैध नालों से सरयू नदी पर गिर रहे गंदे पानी को बंद किया जाए और तत्काल नदी को पवित्र बनाया जाए। महंत ने प्रशासन से अपील की है कि नदी को प्रदूषण मुक्त करके एक पवित्र नदी बनाई जाए।
1: जनपद गोंडा में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और बढ़ती समस्याओं के बीच केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि गर्मी में बिजली की मांग बढ़ जाती है, जिससे व्यवस्था पर दबाव आता है। मंत्री ने बिजली बिलों का भुगतान करने पर जोर दिया है, ताकि बिजली व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। कीर्ति वर्धन सिंह ने आई आंधी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि बिजली अधिकारियों से बात की है, निर्देश दिए हैं कि जंगल बेल्ट, नवाबगंज और तरबगंज जैसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द मरम्मत कराकर बिजली बहाल की जाए।
2: उमरी बेगमगंज में ईद उल अजहा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न तथा भाईचारे की मिसाल पेश की। बता दें कि गोंडा उमरी बेगमगंज क्षेत्र में गुरुवार को ईद उल अजहा के पर्व शांतिपूर्ण से संपन्न हुआ। इस दौरान पूरे क्षेत्र में आपसी भाईचारा देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की। नमाज के बाद देश और प्रदेश में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गईं। त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहा। थाना उमरी बेगमगंज पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी। क्षेत्र में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। पर्व के दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी एक दूसरे को शुभकामनाएं दी।
1: गोंडा में तेज रफ्तार ऑटो और डीसीएम की टक्कर में नवजात पोती का शव लेकर जा रही दादी की दर्दनाक मौत। एक बुजुर्ग का हाथ कटकर अलग हो गया। हादसे में मृत महिला की बहू और एक आशा कार्यकर्त्री भी गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई कर दी। हादसा करीब 11 बजे देहात कोतवाली क्षेत्र के बालपुर जाट के पास हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बताया जा रहा है।
2: बता दें कि गोंडा वजीरगंज में बकरीद पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने एक बाइक रैली का आयोजन किया। थाना अध्यक्ष विपुल पांडे के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने क्षेत्र का भ्रमण कर मजबूत सुरक्षा का संदेश दिया। ये बाइक रैली वजीरगंज कस्बे से शुरू हुई और भगोहरपुर, जमालपुर, बिरहामतपुर, बंधवा तथा करदा जलालपुर सहित कई मिश्रित आबादी वाले गांव से गुजरी। इस दौरान पुलिस टीमों ने लोगों को खुले में कुर्बानी ना करने, सड़क पर नमाज ना पढ़ने और कोई भी नई परंपरा शुरू ना करने का सख्त निर्देश दिया। थाना अध्यक्ष विपुल पांडे ने बताया कि क्षेत्र के सभी निवासियों को इन दिशा निर्देशों से अवगत करा दिया गया है। एहतियात के तौर पर मिश्रित आबादी वाले गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
1: चर्चा का विषय बना काकरोच जनता पार्टी। बता दें कि विदेश राज्य मंत्री काकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया सेशन पर चर्चा। लोकसभा सीट से भाजपा सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और राजा भैया एक कार्यक्रम में शामिल होने शहर मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रही काकरोच जनता पार्टी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर नई चीज को लेकर लोगों में उत्साह और जिज्ञासा होती है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता जाता है। यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया के तौर पर बनी चीज है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें तूफान की तरह आती हैं और कुछ समय बाद शांत हो जाती हैं। इसी तरह काकरोच जनता पार्टी भी इस समय एक सोशल मीडिया सेशन पर है, जो कुछ दिन में शांत हो जाएगी। इस दौरान विदेश राज्य मंत्री ने पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के मेलोडी ट्रॉफी प्रकरण पर भी बात किया। पीएम मोदी की तारीफों के समा बांधे।
2: गोंडा में सिंचाई विवाद में घायल किसान की 5 दिन बाद मौत, आरोपी फरार। बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र में गोसाईपुरवा में सिंचाई को लेकर हुए विवाद में घायल हुए किसान की इलाज के दौरान हो गई मौत। मृतक की पहचान रामशंकर वर्मा के रूप में हुई। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। 28 मई को रामशंकर वर्मा का पड़ोसी किसान से गन्ने की सिंचाई को लेकर विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया और आरोपी रामशंकर मिश्रा के सर पर जोरदार लाठी लग गई और वहीं पे वो गंभीर रूप से घायल हो गए।
1: जनपद गोंडा के उजीरगंज में 166 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व 7 सुपरवाइजर को मिले मोबाइल फोन। बता दें कि महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय पर CDPO दुर्गेश गुप्ता ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर को मोबाइल फोन वितरित किए हैं। कुल 166 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और 7 सुपरवाइजर को मोबाइल दिए गए हैं। CDPO दुर्गेश गुप्ता के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल बनाने और सभी कार्यों को ऑनलाइन करने के उद्देश्य से ये विभागीय मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मोबाइल के रखरखाव और सुरक्षा की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का होगा। इस वितरण कार्यक्रम में सुपरवाइजर संयुक्ता यादव, ज्योत्सना, रेखा वर्मा, सुप्रिया आदि लोग मौके पर उपस्थित रहीं। इस अवसर पर लेखा लिपिक प्रवीण श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।
2: गोंडा सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने भाजपा साइबर योद्धाओं के साथ एक समीक्षा बैठक की। बता दें कि गोंडा लोकसभा सांसद और विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों गोंडा जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मनकापुर के RP इंटर कॉलेज से भाजपा के साइबर योद्धाओं और सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में गोंडा जिला लोकसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। विदेश राज्य मंत्री ने जिले में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जिले के विकास को लेकर सुझाव मांगे और सोशल मीडिया पर सकारात्मक दिशा से काम करने का निर्देश दिया। कीर्ति वर्धन सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने साइबर टीम को अफवाहों से सावधान रहने की और सही जानकारी जनता तक पहुंचाने की सलाह दी।
1: गोंडा के पशु विभाग अलर्ट मोड पर हैं। पशुओं को गलाघोटू जैसी गंभीर बीमारी से बचाने के लिए पशु चिकित्सा की टीम घर घर जा रही है, टीकाकरण कर रही है। पशु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी सिंह के मुताबिक यह एक गंभीर बीमारी है। इसकी चपेट में अक्सर भैंस प्रजाति के पशु आ जाते हैं। वहीं मुजैना में ऐसे करीब 18,000 पशु हैं जिनके बचाव के लिए 1,000 टीके अस्पताल पहुंच चुके हैं। जल्द ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिए जाएंगे।
2: नवाबगंज में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, 3 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू। बता दें कि नवाबगंज थाना क्षेत्र झिरिया चौराहे के पास बुधवार सुबह करीब 2 बजे कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरा गोदाम लपटों की चपेट में आ गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि वो दूर घरों से भी साफ दिखाई दे रही थीं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गोदाम में रखा लाखों का कबाड़ जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारण अभी भी पता नहीं चल पाए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
1: जनपद गोंडा में मंडला आयुक्त का निरीक्षण जारी। मंडला आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने मंडल के प्रथम विश्वविद्यालय माँ पाटेश्वरी राज विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया है। मंडला आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन के साथ बलरामपुर से निर्माणाधीन मां पटेश्वरी राज विश्वविद्यालय एवं निर्माणाधीन रिंग रोड परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के गुणवत्ता के साथ समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। मंडला आयुक्त ने सबसे पहले मां पटेश्वरी राज विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शैक्षणिक एवं एकेडमिक ब्लॉक, प्रशासनिक भवन, छात्रावास, स्टाफ आवास, फैकल्टी आवास, लाइब्रेरी भवन, इलेक्ट्रिकल वर्क्स, पेंटिंग कार, पेयजल व्यवस्था, सीवर सिस्टम, सड़क एवं परिसर विकास, अग्निशमन एवं आपदा सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित विभिन्न निर्माणाधीन सुविधाओं का जायजा लिया है। उन्होंने निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, भवन की संरचनात्मक मजबूती तथा तकनीकी मानकों के अनुपालन की समीक्षा की। मंडला आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के शैक्षणिक विकास से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। यह मंडल का प्रथम विश्वविद्यालय है, इसलिए सभी कार्य उच्च गुणवत्ता एवं तय समय सीमा के भीतर पूर्ण कराए जाएं।
2: बेलसर इंटर कॉलेज में मेधावी सम्मान समारोह आयोजित। बता दें कि बेलसर स्थित एक इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंक हासिल करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूपी ग्रामीण बैंक अमदही शाखा के शाखा प्रबंधक देवव्रत गुप्ता रहे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा समाज की असली ताकत है। विद्यार्थियों को केवल अंक के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि ज्ञान को आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों वर्गों के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। बता दें कि हाई स्कूल वर्ग से अनीता शुक्ला, सोनी गुप्ता, अंकुर शुक्ला, गुड़िया शुक्ला, प्रिंस तिवारी व प्रियांशु मिश्रा को पुरस्कार मिला। इंटरमीडिएट वर्ग से अंशी शुक्ला, शिवम गुप्ता, सौरभ शुक्ला, आस्था उपाध्याय व अनुभव को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक समिति के रमेश पांडे, पी मिश्रा, शिवशंकर नाथ मिश्रा के साथ सुनील, राकेश, आदर्श, विशाल समेत गणमान्य लोग शामिल रहे।
1: तो आज की हलचल में बस इतना ही। आप सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: डिलीशियस
8: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
7: और क्या क्या है खास?
8: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
7: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
9: मैप है
10: नफरत करने वालों के सीन में प्यार भर दूं, लो गाऊं ऐसा गाना दिल्ली को।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: जी हाँ श्रोताओं, पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। जी हाँ, गौधुली स्पेशल खेत खलिहान में, और आज का विषय है मुर्गी पालन। और उसके लिए हमारे बीच में बतौर एक्सपर्ट हैं, राज्यपाल से 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट का सम्मान प्राप्त किए हुए और साथ ही साथ में ऑल यूपी के कैडेट के पहले रैंक के विजेता, यानी कि हमारे डॉक्टर करुणेश दुबे जी। चलिए चलते हैं, इनसे बाकी सवालों पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो सर, अभी तक हमने आपसे बहुत कुछ जाना। जी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्रॉयलर मुर्गियों का आदर्श वजन कितना, मतलब कितने दिनों में होना चाहिए?
6: ब्रॉयलर, देखिए हमारी जो कैटेगरी होती है मुर्गियों की, उनको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक तो ब्रीडर, एक होता है ब्रॉयलर और एक होता है लेयर, यानी कि लेयर पोल्ट्री, ब्रॉयलर पोल्ट्री और ब्रीडर पोल्ट्री। तो ब्रीडर पोल्ट्री को तो हम संततियों के विकास के लिए रखते हैं, जिनसे हमको लेयर भी मिलता है और ब्रॉयलर भी मिलता है। लेयर का मतलब ऐसी मुर्गियां जो अंडा देने के लिए हम रखते हैं। तो जो लेयर के, जितने लेयर ब्रीड जो हैं, जो अंडे उत्पादन के लिए हम रखते हैं, तो चूँकि उनका पहला स्टेज होता है कि वो एक ब्रूडर फेज में होती हैं, फिर उसके बाद ग्रोअर फेज में होती हैं, उसके बाद फिर वो लेयर में जाती हैं। यानी कि कोई भी मुर्गी जो होती है वो 20 सप्ताह के बाद अंडे देना शुरू करती है, और अपने 42वें सप्ताह तक जाते जाते वो अपने पूरे जीवन काल का 2/3 एग वो दे चुकी होती है। और सबसे ज़्यादा अंडे का वजन उसके 42वें सप्ताह में मुर्गी का होता है, और मुर्गी का स्वयं का वजन यानी कि 2.5 से 1.5 से 2 किलो, और कुछ जैसे वो नस्ल पे डिपेंड करता है कि वो 2 से 2.5 kg का भी हो सकता है, लेकिन किसी भी मुर्गी का सबसे ज़्यादा जो वजन होता है वो 42 सप्ताह पे होता है। लेकिन यहाँ हम अंडे देने वाली मुर्गियों की बात कर रहे हैं, और 72 सप्ताह तक जाते जाते कोई भी जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसका जो प्रोडक्टिव लाइफ होता है वो ख़त्म हो जाता है।
5: जी।
6: हम बिजनेस के पर्पज़ से 72 सप्ताह की मुर्गी जब हो जाती है तो उसे कलिंग कर देते हैं, उसको मीट के लिए फिर बेच देते हैं। ये तो हो गया अंडा उत्पादन के वजन की बात। अगर वही चीज़ अगर हम ब्रॉयलर मीट में है, जिसे हम ब्रॉयलर ब्रीड में है, जो हम मीट के लिए पालते हैं, तो मीट वाली मुर्गियों को हम सिर्फ 6 सप्ताह बाद उनको बेच देते हैं, और उस 6 सप्ताह में उनका आदर्श वजन 1.5 to 2.8 kg, मतलब 1.5 से 3 किलो के बीच में उनका वजन हो जाता है। और यह वजन सिर्फ जो है 42 दिन में प्राप्त हो जाता है। 42 दिन के बाद अगर हम मुर्गियों को रख रहे हैं तो हमें उसमें अच्छा मुनाफा नहीं, उनका वजन तो बढ़ेगा लेकिन बड़ा ही स्लाइटली इंक्रीज होता है। उसका हमें जो FCR होता है, फीड कंजप्शन रेशियो, उसके जितना हम फीड खिला रहे हैं उतना वजन नहीं बढ़ता है, तो इसीलिए हम 42 सप्ताह में ही मुर्गियों को बेच देते हैं मीट वाली को।
5: तो इस तरह से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर हम ब्रॉयलर मुर्गियों का मतलब उत्पादन कर रहे हैं और वजन की बात कर रहे हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे सर, एक सवाल आपने अभी मतलब एक बात बोली कि लेयर फार्मिंग, तो लेयर फार्मिंग में जो अंडा उत्पादन है वो कम होने का कारण क्या है?
6: लेयर फार्मिंग यानी कि अंडा उत्पादन के लिए जो हम मुर्गियों का पालन करते हैं तो उनमें अंडा कम होने के कई कारण। मान लीजिए कि आपके पोल्ट्री फार्म के बगल में कोई तेज आवाज हो गई, कोई क्रैकर्स या कोई पटाखे फोड़ दिया, तो इस तरीके से उनमें जो है एक एक थ्रेटिंग आ जाती है।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
6: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
7: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
8: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
9: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
8: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
9: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
8: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
9: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
8: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696746406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जिंदगी तूने मुझसे जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है जमी। पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। सो आप सभी को मैं आज बताना चाहती हूँ कि उस बड़े शायर ने अपनी, कहते ना कि शायरी की दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिनकी शायरी, कविताएं, गज़लें सुन के हमारा बचपन बीता। और मेरे फेवरेट शायर रह चुके बशीर बद्र जी, जिन्होंने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश में जब पोइट्री का नाम भी लिया जाता था तो इन्हें सम्मान से इनका नाम लिया जाता था। 15 फरवरी 1935 में पैदा हुए और 28 मई 2026 को दुनिया को अलविदा कह गए। आपको पता है कि कोई शायर यूं ही नहीं बन जाता। शायरी कहने के लिए, शायर बनने के लिए बड़े शहर देखने पड़ते हैं और बहुत लोगों का, कहते ना कि, अंदाज पढ़ना पड़ता है। पद्मश्री से सम्माना गया था बशीर साहब को। गजलों के लिए उस्ताद माने जाते थे। ना जाने कितनी गजलें हमने उनकी सुनी है, गुनगुनाई है, शायद हमें पता भी नहीं है कि वो गजल उनकी लिखी हुई है। अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र प्रोफेसर रहते हुए भी एक सरल और रुमानी गजलों के खास पहचान बने हुए थे। जी हाँ, आपके अयोध्या में ही जन्मे थे। उर्दू और अदब की दुनिया दोनों को एक करके एक अलग ही शायरी की दुनिया उन्होंने बनाई थी अपने आसपास। उनके निधन की खबर आते ही साहित्य जगत जो है ना, उसमें कहते ना एक दुख की लहर, और ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा तराशा हीरा खो दिया। अपने सरल स्वभाव की वजह से वो बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। और कहते हैं कि आधुनिक गज़ल जो लिखने की जो अदाकारी उनके पास बेहतरीन थी, वो किसी के पास नहीं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश अयोध्या से ही हुई। फिर उसके बाद उन्होंने AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वहीं से PhD भी कंप्लीट किया। उर्दू विभाग में प्रोफेसर भी रहे। शिक्षा साहित्य दोनों क्षेत्रों में उनका योगदान बेहतरीन रहा। हर आम इंसान तक अपनी भावनाओं को एक खूबसूरत अंदाज में, एक गजल के रूप में पहुंचाने में वो हमेशा से खास रहे। उनके खास जो टॉपिक होते थे वो रिश्तों पे लिखते थे, तन्हाई पे लिखते थे, जिंदगी पे लिखते थे, इंसानी भावनाओं पे लिखते थे। गहरी मतलब फीलिंग्स होती थी उसमें, और ख़ास तौर पे मोहब्बत पर लिखते थे। वो सारी चीज़ें जो एक कॉमन इंसान को चाहिए ना, वो परोस देते थे वो अपनी गजलों में। चाहे उनकी ये पंक्ति हो कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले रखो मिजाज से। सो एक और बड़ी अच्छी सी इन्होंने पंक्तियां दी थी कि मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई ना दे। खुदा ऐसा इरफान का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। उसकी आंखों को गौर से देखो, मंदिरों में चिराग जलते हैं। और इसी के साथ इनकी एक फेमस गजल जो है
वो मैं आप लोग के लिए प्ले करना चाहूँगी। आप सुनिए ध्यान से, और गज़ल की तो इवनिंग नहीं है बट हाँ, बशीर बद्र जी की मतलब याद में, और बॉलीवुड या इवनिंग भी है तो मैं चाहूँगी ये गज़ल हम लोग सुने। और आप सभी को पता होगा, मुझे बहुत खास लगती है ये गज़ल, पर आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि किसने इस गज़ल को लिखा है। तो चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल आप लोग के साथ, चलिए सुनते हैं एंड एन्जॉय करते हैं और याद करते हैं बशीर जी को।

रात की। ये गज़ल मेरी बहुत फेवरेट गज़ल रही है हमेशा से, और जैसे कि आपको पता है कि मुझे गज़लें पसंद है, और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे गज़लें ना पसंद हो। हाँ, एक बार को मैं ये कह सकती हूँ किसी को फास्ट सॉन्ग या सैड सॉन्ग नहीं पसंद होगे, लेकिन शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे गज़लें ना पसंद हो। तन्हाई में अकेले में गज़लें सुनना बेहतरीन मरहम का काम करता है। फ़िलहाल एनर्जी की बात होने जा रही है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बशीर बद्र जी की ये लिखी हुई गज़ल, जिसे आवाज़ से अपने सजाया है चंदनदास जी ने। चंदनदास जी की बहुत सारी गज़लें हैं जिनको हम सुन के मतलब मस्त हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज़ उनका गज़ल गाने का। आगे मैं बात करना चाहती हूँ कि मतलब आज बॉलीवुड या टॉक में मैं आज मतलब बड़े पर्दे की मूवीज़ की बात ना करके OTT की बात करूँगी। पिछले 7 दिनों में 4 बड़ी बड़ी मूवीज़ जो रिलीज़ हुई हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया है उनके बारे में बात करूँगी। और सबसे पहले बात करूँगी मैं सिस्टम की। अरे हाँ हाँ, आप सोच होंगे ना कि मैं अपने सिस्टम में क्या देखने जा रही हूँ, क्या चेंज करने जा रही हूँ। तो फ़िलहाल सिस्टम एक मूवी का नाम है जिसमें आपको दिखने वाली हैं आपकी प्रिय, हाँ हाँ कोई और नहीं। वैसे पिछले हफ्ते मैंने रिव्यू किया था खिचड़ी के बारे में, खिचड़ी को लोगों ने बहुत पसंद किया। हाँ, एक सामाजिक मुद्दा जब सामने निकल के आता है तो उस पर ऐसी बातें होती हैं। जब तक कोई इंसान आपके हित में काम करता है तब तक वो आपको उसकी हर कमी अच्छी लगती है, लेकिन एक कमी उसकी सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर देती, वो चीज़ खिचड़ी में दिखती है। तो अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप देख सकते हैं। फिलहाल सिस्टम की बात करती हूँ। आप लोग को हैरानी होगी कि इसमें आपके साउथ इंडियन एक्टर सूर्या यानी कि उनकी वाइफ मिसेस सूर्या भी दिखने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि इसमें आपकी सोनाक्षी सिन्हा दिखने वाली हैं। सोनाक्षी सिन्हा काफ़ी दिनों बाद मतलब एक अलग अंदाज में दिख रही हैं। राउडी लुक उनका हमेशा से रहता है और ऐसे लुक्स में वो अच्छा मतलब परफॉर्म भी करती हैं। तो मूवी जो है इसमें अमेज़न प्राइम पे ये रिलीज़ हो गई है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सोनाक्षी सिन्हा है वो नेहा राजवंश का रोल करेंगी, जिसमें ये एक नामी वकील की बेटी हैं जो कि महत्वाकांक्षी है, यानी कि वो अपने फादर के नाम को यूज़ ना करते हुए अपनी पहचान बनाना चाहती है। उनके पिता आशुतोष गोवारिकर वो ये कहते हैं कि तुम 10 केस एक साथ जीत के दिखाओ तो मैं समझूंगी तुम बहुत बड़ी वकील हो। मतलब बाप बेटे के बीच में इनडायरेक्टली टकरार होने को है, और 10 केस जीतने की जो कहते हैं ना कि चुनौती सोनाक्षी जी ले लेती हैं, ठीक है। इसी के साथ एक स्टेनोग्राफर ज्योतिका इसमें है, जो कि आपकी सोनाक्षी के साथ मतलब दिखेंगी। अच्छा एक्टिंग किया हुआ है इन्होंने, मतलब इनका इस मूवी में अंदाज जो आपने नहीं सोचा वो होगा, काफ़ी बोल्ड दिखेंगी इसमें ये। और मैं आपको बता दूं कि इसी में वो कुछ उलझे केसेस को सॉल्व करेंगी। सारिका यानी कि ज्योतिका जो हैं वो इस कोर्ट में एक स्टेनोग्राफर का जो काम करती हैं उसमें ये अपना अलग अंदाज दिखाती है कैसे एक स्टेनोग्राफर हेर फेरे कर सकता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। प्लस पॉइंट ये है कि कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो सस्पेंस का मतलब मिक्सअप दिखेगा। ज्योतिका का जो अंदाज है वो काफ़ी अलग दिखेगा। अभी तक जो जितनी भी साउथ मूवी में आपने ज्योतिका को देखा होगा वो अलग था, इसमें भाई अलग दिखेंगी। इसी के साथ आशुतोष गोवारिकर विजयंत कोहली इन सब ने भी अपना मतलब बेस्ट दिया है। कुछ जगह सोनाक्षी का मतलब रोल थोड़ा फीका पड़ा है, बट हाँ मैं कहूँगी कि आप 3 स्टार 5 में से दे पाएंगे। वन टाइम है, एक बार देख के आप एंजॉय कर सकते हैं। 2 घंटे के आसपास ये आपको पूरा मतलब कहते हैं ना पैकेज मिल जाएगा, और मैं तो कहूँगी कि एक बार आप लोग ट्राई कर लें, क्योंकि देखिए 2 घंटे के बीच में आपको OTT पे कोई मूवी मिल जा रही है और अच्छा ड्रामा है, अलग कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है कि देख लेना चाहिए। तो मैं 5 में से 3 स्टार्स दूंगी, और आप बताइएगा आप कितने देंगे। अगर आपने देख लिए तो मुझे आप बताइए कि सिस्टम मूवी को आप कितने पॉइंट्स या मैं कहूँ कितने स्टार्स रेट करना चाहेंगे। और अच्छी मूवी है, यू कैन एन्जॉय इट। और अगर नहीं समझ में आती है तो भी मुझे बताइए। देखिए कुछ एवरेज सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट जैसा भी है अलग है। ये है मतलब हर बार एक पैटर्न पे मूवीज़ देखने से अच्छा है, मुझे लगता है कि हमें कुछ नया मतलब ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं एक गाना प्यारा सा, और इसके बाद बात करते हैं और आप लोग के साथ।
और अलग अलग मूवीज के बारे में।

फिलहाल आपने जो गाना सुना वो है फिल्म सिस्टम से ही, और इसके बाद मैं सतरंगी के बारे में बताऊंगी, लेकिन आप लोग का सतरंगी कमेंट नहीं दिख रहा है, कहाँ है सारे के सारे लोग। वैसे आप लोग बताइए कि इस वीक आपने कौन सी नई मूवी देखी। वैसे आप लोग को मूवी या वेब सीरीज देखना पसंद है? फिलहाल एक मूवी के बाद बारी है एक वेब सीरीज की, तो अगली वेब सीरीज होने वाली है 5 घंटे की, जिसके बारे में बताऊँ, मतलब 5 घंटे बताऊँगी नहीं,

शाम वाली चाय के लिए शुक्रिया, लेकिन आप लोगों ने अभी बताया नहीं कि आपने इस वीक या लास्ट वीक कौन सी नई मूवी या वेब सीरीज देखी। और वैसे आप चाहते हैं किसी नई वेब सीरीज को मैं रिव्यू करूं, तो बिल्कुल बताइए।

बस है आज भी ना आप लोग के साथ करने बहुत सारी बात। और यस, शाम के बज चुके हैं 6:42:24। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही थी सतरंगी के बारे में, जो कि है सीधे तौर पे बदले का खेल। एक लड़का जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन वो कर नहीं पाया। कई बार इंसान बहुत सारे सपने देखता है लेकिन परिस्थितियां उसको उन सपनों तक पहुंचने ही नहीं देती। और ये एक कला, एक डांस फॉर्म जिसे लौंडा नाच बोलते हैं, इसी कला पर, जो कि उत्तर प्रदेश की बड़ी फेमस मतलब डांस फॉर्म मानी जाती है जिसे लौंडा नाच बोलते हैं, इसी पर बनाई गई मूवी है। इसमें आपको दिखेगा कि कैसे लीड रोल इस लौंडा नाच के जरिए एक बड़े मतलब कहते हैं ना गुनाह को करने का सोचता है। क्यों करना चाहते हैं ये तो मूवी आप देखेंगे तभी पता चलेगी, यानी कि वेब सीरीज़ देखेंगे तब पता चलेगी। हालांकि अगर मैं बात करूँ इस पूरी की पूरी वेब सीरीज़ की तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कई मर्तबा कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं वेब सीरीज़ के तौर पे जिनमें मतलब कंटेंट जो होता है ना बहुत धमाकेदार होता है। तो जय बसंतू सिंह द्वारा निर्मित सतरंगी बदले का खेल ये 22 मई को Z5 पर स्ट्रीम हुई है, ठीक है। इसमें आयुष्मान, पुष्कर, कुमुद मिश्रा, आरजे, महवाश, बी शांतनु, अतुल कुसुम सिंह, उपेन चौहान और आमिर सलीम खान दिखने वाले हैं। फिलहाल सतरंगी की अगर बात करूँ तो इसमें प्रतिशोध की भावना दिखने वाली है। और आपको बता दूं कि एक डांस के ज़रिए जो लीड रोल हैं, यानी कि आपके प्यारे अंशुमान पुष्कर, वो कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। राजनीतिक तनाव भी बहुत ज़्यादा दिखेगा क्योंकि अपने यहाँ मतलब दिखता है ना यूपी में और बिहार में गांवों में राजनीति को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन इस श्रृंखला की बात जो कहें तो ये पूरी की पूरी मतलब वेब सीरीज़ इसी के

अगर घूमती रहती है, मतलब कि पूरा का पूरा इसमें आपको बदला दिखेगा, दैट कहते ना रिवेंज। तो इसी रिवेंज को लेने के लिए जो मेन लीड रोल है वो लौंडा नाच को ट्राई करता है, मतलब कह सकते वही करता है। उसका IAS ऑफिसर बनने का सपना था, जिस सपने को छोड़ के वो लौंडा नाच करना शुरू करता है। बेसिकली लौंडा नाच होता क्या है, इसमें एक लड़का जो होता है लड़की की तरह ड्रेसअप होकर डांस करता है और लोग इंजॉय करते हैं एक तरह से, जैसे अपने यहाँ मतलब क्योंकि बिहार में शादी वगैरह में लौंडा नाच वगैरह बहुत होता है, ठीक है। तो इस नाच के ज़रिए आपको ये दिखेगा कि कैसे लोग अलग अलग दृष्टि से इस डांस को इंजॉय करते हैं। इसके साथ इसमें आपको ये भी दिखेगा कि कैसे कल्चरल डिफरेंस है हमारे आसपास, अभी भी भेदभाव हो रहा है, और कैसे लोगों के सोच में इतनी संकीर्णता हो सकती है। तो ये उदास पूर्ण इसके जो संदेश हैं ये मूवी में काफ़ी अच्छे से मिलते दिखेंगे। हाँ, मैसेजेस आपको मिल जाएंगे कि मूवी कहना क्या चाह रही है। और पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि अट्रैक्शन, पूरा का पूरा वेब सीरीज का आपकी तरफ, मतलब आपने दो इसके मतलब देख लिए एपिसोड्स, तो बाकी आप अपने आप देख लेंगे। 5 घंटे का है, आप आराम से इसको एंजॉय कर लेंगे बिना बोर हुए। कहानी की बात करूँ तो कहानी डेरा और कुटवा गाँव के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ पुरानी दुश्मनी कभी ख़त्म ही नहीं होती। दुश्मनी की बात करें तो हमारे यहाँ मतलब गांव वगैरह में अगर दुश्मनी शुरू होती है तो वो कई सालों तक मेड़ के लिए, नाली के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए, ज़मीन के लिए, खेत के लिए, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए होती है। तो डेरा के ताकतवर ठाकुर नेता सोना सिंह जो कि कुमुद मिश्रा इसमें बने हैं, वो चुनाव की तैयारी में जुड़े होते हैं। और वहीं कुटवा के एक और जो बड़े सदस्य हैं जिनका नाम है भगवान पांडे, उनका भी बड़ा दबदबा होता है। सालों की कड़वाहट के बीच हालांकि पांडे अब राजनीति और आर्थिक लाभ से बच चुके हैं, फिर भी मतलब कहते हैं ना दुश्मनी रंजिश तो हमेशा रहती है। तो हालात बिगड़ जाते हैं और उनका बेटा डायमंड जो कि अतुल कुसुम सिंह है, वो कार्यक्रम के दौरान सोना सिंह की बेटी आरती यानी कि RJ महवश के साथ बदतमीजी करता है। डायमंड के बड़े भाई अखिलेश किसी तरह से किसी स्थिति को मतलब कंट्रोल करते हैं। फिर इसी के बाद जो लड़ाई झगड़े एंड इसी में मर्डर हो जाता है, फिर उस मर्डर को सुलझाने के लिए जो हमारे लीड एक्टर हैं वो लौंडा नाच करना शुरू करते हैं। और आपको मज़ा आएगा, मतलब एकदम लगेगा कि आप गाँव में बैठे हो, फुल वाइब यही आएगी। मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को मैं 5 में से 3 स्टार्स दूंगी। 2 स्टार मैं इसलिए काट रही हूँ इसके क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा सा मुझे इसमें लगा और थोड़ा सा नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा दिखी इसमें। हाँ, रियलिटी होती है, कई जगह ऐसा हो रहा है, बट मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा इसको डिसेंट बनाते या जो शब्दों का चयन है वो थोड़ा अच्छा होता तो मुझे लगता है कि वेब सीरीज में 5 to 5 स्टार मिल सकते थे। 4 तो एटलीस्ट मैं दे ही देती और आप लोग भी 4 या 5 देते, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप भी फील करेंगे, क्योंकि अगर आपको भी कुछ अच्छी चीज़ें देखने की आदत है देन यू विल ऑल्सो फील द डिफरेंस कि हाँ क्या गड़बड़ है। तो चलिए सुन लेते हैं गाने सतरंगी के भी। आप बताइए इस वेब सीरीज को आप देखना चाहते हैं या नहीं। गुड इवनिंग सविता शास्त्री जी, कैसी हैं आप? गोरखपुर से सुन रही हैं और मौसम बताइए आने वाले कुछ 24 घंटों में सुना है तूफान बहुत तेज़ आने वाला है, तो भाई आप लोग थोड़ा सेफ सिक्योर रहिएगा।

फिलहाल सतरंगी से आप लोग गाने एंजॉय कर रहे हैं, ये वेब सीरीज भी आपको फुल एंटरटेन करने वाली, क्योंकि हमारे यूपी बिहार के कल्चर को दिखाने वाली, एकदम घुस के दिखाने वाली, गांव में कैसे लोगों के अंदर एक दूसरे से लड़ने के लिए बात बात पे तैयार हो जाते हैं। तो इसी के साथ सवाल भी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि इस गाने के ब्रेक के बाद आप लोगों की फरमाइशें शुरू हो जाएंगी और मैं नहीं चाहती किसी की भी म्यूजिकल फरमाइश रह जाए। तो आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि बशीर बद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था?

सो आपने अभी तक एंजॉय किए गाने सतरंगी के, फिलहाल सिस्टम सतरंगी दोनों ही एस एस से थी, लग रहा है आज जैस का खेल बड़ा अच्छा है और हमारे साथ भी लिसनर्स काफ़ी सारे एस एस से सुन रहे हैं, तो सविता जी ने ऐसे आंसर भी सही दे दिया है और आंसर बिल्कुल सही है और वो अयोध्या के थे, कानपुर में उनकी परवरिश हुई, बहुत सही आपने आंसर दिया है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब आप अपनी पसंद का गाना सुन सकती हैं। तीरथ प्रसाद सोनी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और तो आप लोग को बता दे देती हूँ कि अब बारी है कि एक बढ़िया सा गाना सुनने की, और फरमाइश की जब बात करती हूँ तो आप लोग की फरमाइशें हमेशा से बेहतरीन होती हैं एंड नो डाउट कि आज की फरमाइश मतलब अलग नहीं होगी। और सबसे खास चीज़ की अगला जो सवाल है वो मेरा आप लोगों से बॉलीवुड से ना होते हुए एक अलग सवाल लेके आई हूँ मैं, कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को पढ़ा होता है, समझा होता है, जाना होता है, पर जब बात आती है किसी खास की यानी कि किसी स्पेशल इंसान की तो उसकी बारीकियां हम समझना भूल जाते हैं। मतलब बस हम उसको सोशली जानते हैं बट कुछ खास चीज़ें उसके बारे में, जैसे आप मुझे जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, पर मेरे बारे में खास क्या जानते हैं? कॉमन चीज़ें तो हम सबको जानते हैं, नाम जानते हैं, उसका पता जानते हैं, कहाँ रहता है, ये है, वो है, किस जगह काम करता है, क्या है, ये सब, पर कुछ खास, जी हाँ, आज खास की बात हो रही है क्योंकि शायरी से शुरुआत भी हुई और मैंने आपको एक फेमस गज़ल भी सुनाई और गज़ल के साथ साथ अब फरमाइशी गाने भी आपको सुनने के मौके मिलने वाले हैं। और आंसर भी सबसे पहले दिया है सविता जी ने, तो सविता जी की अपनी पसंद का गाना सुनेंगी और ऑफ कोर्स ओल्ड गाने की फरमाइश आएगी तो मैं ओल्ड गाना सुनाऊंगी तीरथ जी, और अभी मिक्स गाने आपको सुनने को मिलेंगे क्योंकि अभी फरमाइश होने वाली, जो आंसर देगा वो अपनी फरमाइश सुनेगा, तो वी आर रेडी टू लिसन मल्टीपल, मतलब बहुत सारे अलग अलग गाने जिनका म्यूज़िक भी अलग होगा और फरमाइश भी अलग अलग होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि मे इज़ नाउ, अब बाय बाय कर रहा है मे, और मे में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें नई भी हुई इस साल, बहुत सारी मूवीज़ OTT पे रिलीज़ हुई, बहुत सारी बड़े पर्दे पे रिलीज़ हुई, सब ने अपनी अपनी पहचान बनाई और स्पेशली ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सब ने अपना मतलब पहचान दिया। तो आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज एक इंसान की जयंती भी है और वो है 149th जयंती, ठीक है? तो मैं नाम बता देती हूँ सबसे पहले, तो आज महाराणा प्रताप की जयंती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि सवाल जो मेरा ये है कि महाराणा प्रताप किस डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करते थे? अब आपको आंसर देना है। मैंने क्या कहा कि हम लोग जानते बहुत कुछ हैं बहुत लोगों के बारे में, लेकिन एग्जैक्ट क्या जानना है वो नहीं हमें पता होता। तो मैं जानना चाहती हूँ महाराणा प्रताप किस डायनेस्टी को लीड कर रहे थे, अब आप सोच समझ के बताइए। तब तक के लिए हम लोग सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना जिसकी फरमाइश कर दी है, अच्छा इनकी लिखी हुई कोई भी गज़ल आप सुनना चाहती हैं, ओके, तो मैं बिल्कुल देर बिना कि आपको बशीर जी की एक गज़ल सुना देती हूँ, बहुत ही प्यारी सी गज़ल है, सुन के बताइएगा कैसी है।

सो रितिन ने बताया राजस्थान, तो बिल्कुल आप आंसर के बहुत बहुत बहुत करीब हैं, तो इसीलिए मैं आपको आपकी पसंद का गाना ज़रूर सुना दूंगी। और कभी कभी इतिहास के पन्नों को पलट लेना चाहिए, चाहे हमने कभी भी मतलब इंटरेस्ट ना दिखाया हो इतिहास में, लेकिन हाँ कुछ अमर नाम ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, और उन अमर नामों में महाराणा प्रताप सिंह के बारे में पढ़ना, जो कि सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के रहने वाले थे। उन्होंने सिसोदिया राजवंश को लीड किया था और इतिहास में इनके वीरता को, शौर्य को, इनके पराक्रम को बहुत ज़्यादा सराहा गया था। इनका संघर्ष भी काफ़ी लंबा था। तो मैं राजस्थान के लिए, आपने राजस्थान बताया तो इसी के लिए मैं आपको गाना सुनाऊंगी। मैं आपके यहाँ बारिश हो रही, जवाब सही होगा तो बेदर्दिया सुना दीजिएगा। ओह बड़ा प्यारा सा गाना आपने डिमांड किया है, नो डाउट, और आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप? और सब लोग अपने अपने अंदाज में बड़ी अच्छी अच्छी फरमाइशें कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। सच्ची बताऊँ ना, मुझे डिफरेंट गाने प्ले करने में बड़ा मज़ा आता है। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी स्टडी रहिएगा, और मैं क्वेश्चन हर एरिया से आप लोगों से पूछूंगी। और आज ना सिर्फ बॉलीवुड से, ना सिर्फ इतिहास से, ना सिर्फ पॉलिटी से, हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी हम मिले, तो चलिए बारी है बेदर्दिया सुनने की, जिसकी फरमाइश रितिन ने की है। मुझे बहुत पसंद है ये गाना। तो फिल्म है तू झूठी मैं मकार, और इसे अपनी खूबसूरत आवाज़ से सजाया है प्रीतम और अरिजीत सिंह ने। और इस फिल्म में आपको रणबीर के साथ श्रद्धा कपूर दिखेंगे।

बहुत प्यारा सा गाना हम लोग सुन रहे हैं। और अगला सवाल मेरा आप लोगों से ये है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर आप इस वेकेशन, मतलब वेकेशन तो हमेशा ही होते हैं, कहीं घूमने जाने वाले हैं, तो आप बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है इंडिया में जो मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सी जगह है जहाँ मैक्सिमम बारिश होती है। अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इंडिया की ऐसी जगह आप सोच रहे जाने का जहाँ बारिश होती है, तो वो कौन सी जगह होगी जहाँ मैक्सिमम बारिश होती है और वहाँ आप घूमने जाने वाले हो, मतलब आप नहीं जाने वाले हो लेकिन अगर आपको जाना हो तो आप जा सकते हो, तो वो जगह कौन सी होगी, सोच के बताइए, थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाइए।

0: सो हमारे साथ हमारी एक लिसनर है जिन्होंने कॉल के आंसर देने के लिए, तो बताइए हेलो आपका नाम?
1: मंसूरी।
0: मंसूरी, मंसूरी में बारिश ज्यादा होती है?
1: 5 मिनट में होती है मैम।
0: मंसूरी में होती है?
1: Yes.
0: ध्यान से सोचिए। मैक्सिमम बारिश कहाँ होती है, दिमाग लगाइए। आप पहले नाम बताइए अपना। सृष्टि। ओके, सृष्टि तो, सृष्टि तो मतलब 60 सेकंड से भी पहले आंसर दे रही हैं। सबसे पहले तो मैं सृष्टि को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, सृष्टि आंसर के बहुत करीब हैं। सो आप बताइए मैक्सिमम बारिश कहाँ होती है, जहाँ आप घूमने जाओ तो मज़ा आ जाएगा, वहाँ मतलब लोग छाता लेके घर से निकलते हैं। हम लोग जैसे चप्पल पहन के मैंडेटरी निकलते हैं, वहाँ लोगों के पास छाता हमेशा होता है, तो आप बताइए।
1: सोच के बताती
0: अभी। नहीं, आप बहुत करीब है, आप सोचने थोड़े दूंगी मैं, आपने बहुत नज़दीक का आंसर सोच लिया है, तो आंसर तो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट कॉलर को मौका देते हैं। थैंक यू सृष्टि। मतलब आप लोग इतने आसान से आंसर को नहीं दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये तो सबसे मतलब आसान सा आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम रेनफॉल जहाँ होता है बस वहीं तो जाएंगे ना घूमने। सो फिलहाल आप लोग सोचिए और मैं तब तक आप लोग को गाना सुना देती हूँ।

0: सो हमारे अगले कॉलर हमारे साथ हैं, चलिए सुनते हैं उनकी आवाज। हेलो।
1: हेलो,
0: शुभ संध्या।
1: आपको भी
0: कैसे हैं अनिल जी, क्या बात है?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, और आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद, आपको भी, आपने उठाया।
0: तो आंसर क्या है, आप बताइए।
1: चेरापूंजी है, चेरापूंजी में ही ज्यादा बारिश होती है, मैंने टाइप करके लिख भी दिया था आपको।
0: सो यू आर द फर्स्ट टू गिव द आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मेघालय चेरापूंजी। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: रफी साहब का कोई बहुत प्यारा कोई गाना सुना दे।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच अनिल जी।
1: थैंक यू।
0: बस अब अनिल जी की फरमाइश का गाना हम लोग सुन लेते हैं, क्योंकि इन्होंने चैट रूम में भी आंसर दिया, लेकिन अनिल जी के साथ साथ तीरथ प्रसाद सोनी जी ने भी चैट रूम में सेम टाइम पे आंसर दिया था, तो दो विनर हमारे एक साथ हमें मिल गए हैं, तीरथ जी और अनिल जी। तो अनिल जी का तो गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ, उनको रफ़ी साहब का गाना सुनना है, ओल्ड सॉन्ग सुनना है, तो मैं मोहम्मद रफ़ी जी का बेस्ट गाना, जो मतलब वैसे तो उनके हर गाने बेस्ट हैं, तो उनके हिट गानों में से जो गाना है वो निकालती हूँ और आप लोग को सुना देती हूँ। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग इन योर फेवरेट सिंगर्स वॉइस। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, और इसी के साथ तीरथ जी आप भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं। बिल्कुल आंसर आपका सही है, बाकियों ने भी आंसर दिए, थोड़ा सा लेट हो गया। ओम प्रकाश जी ने आंसर दिया, आशु ने आंसर दिया है, और रितिन ने भी आंसर दिया है, बट आप लोग के आंसर थोड़े लेट हैं। तो फर्स्ट मिनट में जो आंसर देगा उसी का आंसर, मतलब फर्स्ट मिनट में अगर तीन लोग भी आंसर देंगे तो उनका भी गाना प्ले हो जाएगा। तो मैम आपकी जीके कमज़ोर है, मेरी जीके बिल्कुल सही है।

नितिन आपको बताना चाहती हूँ कि जो चेरापुंजी है वो मेघालय का ही हिस्सा है, ठीक है। तो मेघालय में बारिश होती है, लेकिन वो हिस्सा जिसने रिकॉर्ड दर्ज किया है वो चेरापुंजी है। चेरापुंजी दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला हिस्सा रिकॉर्ड किया गया है, दुनिया का सबसे ज़्यादा, नॉट ओनली मतलब इन इंडिया बट दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला जो एरिया है वो चेरापुंजी बना है, जो कि मेघालय में है।

रितिन आपकी बात भी सही है और मैं आपको बता दूं कि मानिस राम ने भी रिकॉर्ड बनाया लेकिन वापस से फिर आपके चेरापूंजी ने रिकॉर्ड को फिर से अपना मतलब बना लिया, तो दोनों शहरों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि आप भी अगर अपना गाना सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं, पर सबसे पहले रिकॉर्ड चेरापूंजी ने बनाया। सो अच्छा है आप लोग इतना क्यूरियस हैं और इतनी ज़्यादा जनरल नॉलेज में एक्टिवनेस रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ना सिर्फ म्यूज़िक, ना सिर्फ मतलब आसपास की चीज़ें, बल्कि जो मतलब हमें जनरली पता होनी चाहिए वो पता है। ना मतलब ऐसा नहीं कि हम एक्टिवली एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ करें तब हमें पता है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन नितिन।

तीरज जी ने कोई फरमाइश नहीं की, उन्होंने स्टार्टिंग में ओल्ड सॉन्ग की बात की थी, तो अभी ओल्ड सॉन्ग में ही मैं ये गाना तीरज जी के लिए प्ले कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहेगा। अभी एक लेटेस्ट मूवी आई थी जिसमें मतलब मूवी का नाम था दीवानियत, और मतलब मूवी का नाम नहीं, गाने का नाम था दीवानियत, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुनाया था, और मूवी का नाम है एक दीवाने की दीवानियत। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ इसमें एक्टर और एक्ट्रेस का नाम क्या है, एक्टर और एक्ट्रेस। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, इसमें जो एक्ट्रेस है उसने बहुत सारी पंजाबी मूवीज भी की हैं। तो एक दीवाने की दीवानियत में एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? सबसे पहले जो दो लिसनर्स आंसर दे देंगे वो अपनी पसंद का गाना सुन पाएंगे।

सो सबसे पहले आंसर देने वाली दो बहनें बन चुकी हैं हमारे साथ, सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे। बिल्कुल सही आंसर, और दोनों ने बिल्कुल सही टाइमिंग पे आंसर दिया, तो बिल्कुल दोनों ही अपने पसंद के गाने सुनेंगे। और किसी ने तो फरमाइश भी कर दिया है, जैसे कि आशु जी ने, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ओहो जिंदगी दो तुम घना।

ये याद आती है जो मूवी थी काफी दिनों पहले रिलीज हुई थी, एक्शन रीप्ले, याद है आपको कि नहीं याद? अच्छा, एक्शन रीप्ले में अक्षय के साथ एक को एक्टर थे, मेल को एक्टर, जो कि लेटेस्ट उनके बेटे बने हैं। आप बताइए कि वो को एक्टर कौन थे? एक्शन रीप्ले मूवी आई थी और उस मूवी में अक्षय के साथ एक को एक्टर है, उसको एक्टर का नाम आपको बताना है। चलिए सोच के बताइए। चलिए तब तक सुनते हैं गाना प्रीति जी की फरमाइश।

जुगल जी, सवाल था कि फिल्म आई थी एक्शन रिप्ले, उसमें अक्षय कुमार के साथ एक और मेल एक्टर थे, उन मेल एक्टर का नाम क्या था?

0: बच्चे फूल बलैया निकले कैसे तेरा सैया।
1: चलिए आसान क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी जो गाना आप सुन रहे हैं वो किस फिल्म का है? सैया पकड़ भैया, चलो सैया तारों की छैया, कौन सी फिल्म का गाना है? जो आंसर सबसे पहले देगा वो अपनी पसंद का गाना सुनेगा। सैया तारों की छैया,

0: तो क्या बात है, आंसर दिया है आशु जी ने सबसे पहले और अनिल जी ने सबसे पहले, तो दोनों ही अपनी पसंद का गाना सुनेंगे। एंड अगेन एक और आंसर दिया है आशु जी ने, नायक फिल्म, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। तो आशु जी आप अपनी पसंद का गाना सुन सकती हैं और अनिल जी आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। साथ ही एक कॉलर ने भी कॉल करके आंसर दे दिया है नायक, तो मैं सबसे पहले उनका गाना प्ले कर देती हूँ। राहुल का आंसर आया है, राहुल ने बताया नायक फिल्म और इसमें हैं इनके फेवरेट एक्टर अनिल कपूर और फेवरेट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। और ये सुनना चाहते हैं ये प्यारा सा गाना, चलिए सुनते हैं।
1: प्यार की चुनरी प्रेम की चोली लेके नैनों की ये डोली, मैं हूँ ओ हम जोली।

मैं अपना फेवरेट गाना ना गाऊं ऐसा कैसे हो सकता। खाते हैं हमसे गुजरते हैं। तो आप में से कोई ऐसा है जिसने दिल पे जख्म खाया हो? हम सभी ने कभी ना कभी खाया होगा लेकिन पता नहीं चला होगा, इलाज नहीं कराया होगा, क्योंकि अगर असली में दिल पे जख्म खा लिया ना तो सीधे ऊपर का टिकट कटेगा। तो चलिए सुनते हैं हम अगला गाना भी, लेकिन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, चलने का समय भी हो रहा है तो चलते चलते गाना तो सुनाऊंगी, मतलब सुनाऊंगी लेकिन एक कविता ज़रूर सुनाऊंगी। कविता अर्ज की है कि बॉलीवुड की दुनिया है न्यारी, जिसकी बात हम लोग रोज करते हैं, हर फिल्म में होती प्रेम की कहानी प्यारी, हीरो की एंट्री स्लो मोशन में कभी कभी, और कभी तो जैसे एमआई भरता किश्तों में भारी, कभी ट्रेन पे तो कभी बाइक पे आता है, दो मिनटों में 100 गुंडे उड़ाता है, वो जमाने हवा हुए जब हीरो बस पिटता जाता है, पुलिस बोले सर आप कौन, हीरो कहे बस नाम ही काफी है मौन, हीरो हीरोइन को बारिश में एक साथ डांस के लिए ले जाता है और फिर मानो बिजली का बिल बढ़ जाता है, गाना थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, मेकअप निकल ना जाए इसीलिए बारिश में थोड़ा कम भिगाता है, विलेन को भी अलग ही एक हाल में दिखाता है, हंसता है जैसे बंद दिमाग का कोई जाल जलाता है, पूरी फिल्म बस प्लान बनाता है, अंत में हीरो से धुलाई करके दी एंड की ओर ले जाता है। और ऐसे ही फिल्मों के बारे में और जानने के लिए आपको नहीं सुनना भूलना है आपकी फेवरेट आरजे बीना को, तो आपको भूलना बिल्कुल नहीं।

घर जाना जैसे है वैसे ही है, लेकिन अभी इंतजार थोड़ा सा और करना पड़ेगा। आप सुनने वाले हैं कुछ ही देर में अपनी पसंद के गाने, एंड यस आप सुनेंगे गीत आपके नाम से, क्योंकि आपकी फरमाइश वाले गीत आपके लिए बजेंगे। आपका नाम अनाउंस होगा तो ऑफ कोर्स वो गीत आपके नाम से होंगे। तो हर दिन सुनते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आप सुन रहे थे शो आरजे बीना वाला, यानी कि गोंडा मैसे मसाला अपनी आरजे बीना के साथ। तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, इश्क करते रहेंगे, मौसम कोई भी हो हम मुस्कुराते रहेंगे।

0: आप गोंडा वासियों के लिए जरूरी सूचना। अपने जिला गोंडा में बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलाई जा रही है, जिसमें घरेलू श्रेणी के 2 और कॉमर्शियल के 1 किलोवाट भार तक के उपभोक्ता पात्र होंगे। योजना के प्रथम चरण में 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रथम चरण में पंजीकरण कराने पर सरचार्ज में 100% छूट के अलावा 31 मार्च 2025 तक के बिजली बिल के मूल बकाए में 25% तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 में सरचार्ज में 100% छूट के अतिरिक्त 31 मार्च 2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाए में 20% तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार तीसरे चरण 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक में पंजीकरण कराने पर सरचार्ज में 100% छूट के अलावा 31 मार्च 2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाए में 15% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए नजदीकी विद्युत उपकेंद्र, कैंप, जनसेवा केंद्र व ऑनलाइन ऐप के माध्यम से 2,000 रूपए देकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद बकाया भुगतान के लिए 3 विकल्प यानी एक मुश्त या फिर मासिक किश्त 750 व 500 रूपए होंगे। साथ ही योजना में विद्युत चोरी के मामलों में भी निर्धारण धनराशि में क्रमशः 50, 45 व 40% की छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कैंप में संपर्क करें।
1: मैं राधेश्याम भास्कर, अधिशासी अभियंता विद्युत गोंडा, समस्त सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से यह अपील करता हूं कि माह दिसंबर 2025 के प्रथम दिन से लागू होने वाली विद्युत बिल राहत योजना के प्रथम चरण में ही 100% पंजीकरण कराकर सबसे अधिक छूट का लाभ प्राप्त करें एवं अपने बकाए बिजली बिल से छुटकारा पाएं, ताकि आपको बिना किसी व्यवधान के विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती रहे। योजना में पंजीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का अथवा पंजीकरण कराने के उपरांत पैसा न जमा करने वाले उपभोक्ताओं से बकाए विद्युत बिल की प्रतिपूर्ति नियमानुसार करी जाएगी, जिसमें आपको पूर्ण बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ेगा। अतः आपसे अपील है कि इस आकर्षक योजना का लाभ उठाएं और 100% रजिस्ट्रेशन कराएं। योजना में पंजीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं अथवा पंजीकरण कराकर छूट का लाभ न प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से पूर्ण बकाए की धनराशि की वसूली नियमानुसार की जाएगी एवं उनको छूट से वंचित कर दिया जाएगा। अतः आपसे अपील है कि इस छूट का पूर्ण लाभ उठाएं और लाभान्वित होएं। धन्यवाद।
0: आप भी लाभ उठाइए बिजली बिल राहत योजना का और बनिए जिम्मेदार नागरिक।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस अकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिक

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो क्या हाल चाल है और क्या है आज की शाम में बहुत खास खास बात जरूर मुझे बताना। मैंने तो अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल के उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लिया। उस खूबसूरत से गाने को चैट बॉक्स में मुझे पेश करने की जरूरत ही नहीं होती है, अपने इंट्रो के साथ में आप सभी की खिदमत में पेश कर दिया है। सो कुछ ऐसी ही मिक्स्ड फीलिंग चल रही हैं, क्या क्यों चल रही है मुझे नहीं पता। आपको पता है क्या दोस्तों, सुबह उठते ही मेरा मूड जैसा होता है ना, वैसे ही मेरा पूरा दिन चला जाता है। मैं कितना भी ट्राई कर लूँगी, मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, योगा कर लेती हूँ, अपना मी टाइम निकाल लेती हूँ, या फिर संगीत सुन लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, लेकिन नो चेंजेस। सुबह उठते ही जैसा मूड है मेरा, मूड वैसा ही हद तक रहने वाला है, मैं चाहे जितना भी ट्राई कर लूँ। तो वही ये जो मिक्स्ड फीलिंग चल रही है ना, उसने मेरे से कहा कि सिंपल ये वाला गाना सुनना है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं खुद नहीं सुनूंगी, आप सबको भी सुनाऊंगी। सो मैंने तो पेश कर दिया, आप लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका जज्बात, आपके गीत आपके नाम से भी रहेंगे और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन ये फरमाइशी और इस फरमाइशी शो की जान आप सब, और मैं इस फरमाइशी शो की होस्ट कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसकी गारंटी तो मैं ले रही हूं। जब तक दुनिया में हूं तब तक तो नहीं जाने वाली हूं, आगे का तो भाई राम रखे है ना। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर फरमाइशी वाले महफिल। आशा मिश्रा जी लखनऊ से, नीना जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, विजय पाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से, जुगल किशोर वर्मा जी एक बार फिर से आपका स्वागत है, अनुष्का श्रावस्ती से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, नागेश्वर धाकर, और इनका कहना है कि घड़ी भर ही सही लेकिन बहुत आराम देता है, घड़ी भर ही सही लेकिन बहुत आराम देता है, कोई झोंका हवा का जब तुम्हारा पैगाम देता है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम ध्रुव त्रिपाठी जी, के गुप्ता तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका तो आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल दिल से करती है स्वागत एंड इस्तकबाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मालवे नगर से राजेश सिंह जी आपका स्वागत है, संजय पटना से आपका भी स्वागत है, और मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा स्टेट यून, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बल जी रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से स्टेट यून एंड वेलकम इन योर शो। सो बिना किसी देरी के एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली वाली फरमाइश। सो दोस्तों हमारे पास में पहली फरमाइश है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से, और लखनऊ से आशु जी को सुनना है गाना दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। आए हाय, पहले हम दिल लगाते हैं फिर प्यार करते हैं फिर उसके बाद में बहुत पछताते हैं क्यों सही कहा ना मैंने, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो जिस भी रिश्ते में हम दिल लगा लेते हैं उस रिश्ते में कहीं ना कहीं हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और जब ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं तो लोग इतने एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि भाई उनकी अपनी अपनी भी जिंदगी होती है, उनकी अपनी अपनी भी प्रायोरिटी लिस्ट होती है, तो कहीं से वो भी गलत नहीं होते हैं, कहीं से आप भी गलत नहीं होते हैं, बस गलत होता है तो क्या ये दिल लगाना क्यों, सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं आशु जी की फरमाइश पर ये वाला गाना, और ऐसे ही सदाबहार नगमों को खूबसूरत गानों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और खास तौर पे अपनी फरमाइश की महफिल में आना तो बिल्कुल मत भूलना। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, स्टे ट्यून्ड। आए हाय।

दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। हाँ, दिल है तुम्हारा का ये गाना अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में हमने एंजॉय किया है, हमारी आशु जी की फरमाइश पर, आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो ममता का सौधन, आपका स्वागत और इस्तकबाल है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा मीन्स जुगल किशोर वर्मा की, और इनको एमपी से सुनना है गाना कहना ना तुम ये किसी से। सो एंजॉय करते हैं पति पत्नी और तवायफ मूवी का ये वाला गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। सो आप लोग के दिल में क्या चल रहा है, आप लोग के दिल में क्या हलचल है, आप लोगों ने तो मुझे बताया ही नहीं, आप लोग बस आपस में बात करते हो, मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बोलो ना कुछ। स्टे ट्यून्ड।

सो दोस्तों कहना ना ये तुम किसी से, पति पत्नी और तवायफ का ये गाना मोहम्मद अजीज और सलमा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है हमारी जग्गू दादा मींस जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर। चलिए ना चलते हैं, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बिना बिना बिना किसी देरी के। लेकिन उसके पहले जिसकी फरमाइश है उसका स्वागत तो कर लिया जाए शो में। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे फ्रॉम लखनऊ, आपका स्वागत है आपके अपने शो फरमाइशी में। और चले इंजॉय करते हैं शिवम दुबे की फरमाइश पर गाना आठ पर्चे। और मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, शिवम जी से बस एक बात कहना चाहूँगी, जितनी अभी मेरी उनसे बात हुई है उस हिसाब से, कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। सो एंजॉय करते हैं शिवम दुबे की फरमाइश पर ये वाला गाना, और शिवम दुबे हैं लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड।

सुपर डुपर डुपर डुपर हिट सॉन्ग सिर्फ़ सिर्फ शिवम दुबे की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से। और ललहुआ लखीमपुर खीरी से विजय पाल यादव जी को सुनना है गाना तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है। सो एंजॉय करते हैं बाजीगर का ये गाना कुमार सानू और सोनाली जी की आवाज में हमारे विजय पाल जी की फरमाइश पर। और इसी के साथ में आशु जी का कहना है कि सिंपल जी क्या खूब कहा आपने। हाँ सो बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आशु जी। अक्सर आपकी आरजे सिंपल जो कहती है ना अपनी जुबान से वो सबके दिलों की बातें ही होती हैं, सबके दिलों के जज्बात ही होते हैं, बस सब कह नहीं पाते हैं और सबके हिस्से का मैं कह देती हूँ। स्टेट ही उन एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से। और के गुप्ता जी आपके प्लेलिस्ट वाला जो भी गाना मिलेगा उसमें आपको जरूर टैग किया जाएगा। स्टेट ही उन।

हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सनमा बाजीगर मूवी का। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना मैं तो हूँ पागल मुंडा। से एंजॉय करते हैं आर्मी का ये सुपर डुपर हिट गाना एक बार फिर से, लेकिन इस बार अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो राजन सिंह, आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल, और एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड।

परदेसी मुझे तो लूट गया, यूं अखियां मिला के अखियों से आए हाय। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ राजन सिंह की और के गुप्ता जी की फरमाइश पर, जो कि है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो दीप सिंह जी आईटीआई अयोध्या से आपका स्वागत है और इस्तकबाल भी है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है ध्रुव त्रिपाठी की, उनको सुनना है गाना पुरुष बड़ा या नारी। सो एंजॉय करते हैं ये अंजू उपाध्याय का गाना सिर्फ और सिर्फ ध्रुव त्रिपाठी की फरमाइश पर। ये है एकदम अतरंगी, आई मीन एंटिक पीस। तो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।

बताओ कि पुरुष बड़ी या नारी, आई मीन पुरुष बड़ा या नारी। हमने एंजॉय किया ये अतरंगी गाना ध्रुव त्रिपाठी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है संजय की पटना से। संजय को पटना से सुनना है दलेर मेहंदी का गाना काला कौवा। सो एंजॉय करते हैं ये गाना संजय की फरमाइश पर जो की है पटना से। स्टे ट्यून्ड।

वाला कबाब काट खाएगा, सच बोल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सच बोलता है उसको काला कौवा खाता है काट, जो झूठ बोलता है उसकी जिंदगी तो इस घोर कलयुग में मुझे तो ऐसा लगता है कि दोस्तों मजे में चलती है। मजे में क्या, खूब मजे में चलती है। आपको मैं बहुत मजेदार बात बताती हूँ, जैसे मतलब मैं झूठ क्या बोलूंगी, अभी भी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ मेरे मैं बचपन से ही मतलब बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट झूठ बोलती हूँ। तो मेरा भाई मुझसे बहुत कहता है आजकल, तो बहुत कहता है कि पागल झूठ बोलना सीख, आजकल सब झूठ बोलते हैं, कैसी है तू, तुझे झूठ बोलना नहीं आता, बिना झूठ बोले आजकल दुनिया नहीं चलने वाली है, आजकल तुम अकेले अकेले भी अगर चलना चाहो तब भी तुम नहीं चल सकती हो, तुम्हें झूठ बोलना तो सीखना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बात बात पर झूठ बोले, लेकिन एटलीस्ट ये जो झूठ बोलने की पढ़ाई होती है बहन, कम से कम वो पढ़ाई तो कर ले। लेकिन फिर भी मैं उससे बोल देती हूँ कि भाई मेरे से नहीं होता है, मैं ट्राई भी करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है मुझसे। जब मुझे ऐसा होगा कि मैं अपने भाई के सामने हूँ और मुझे सच बोलना है या झूठ बोलना है, ये दोनों ऑप्शन होते हैं मेरे पास, मैं झूठ बोलूँ मैं बच जाऊँ, सच बोलूँ तो मैं पकड़ी जाऊँ, लेकिन तब भी वो मेरा मुँह देखा करता है कि भाई क्या पता इस बार झूठ बोल दे, लेकिन तब भी मैं सच बोल के और एकदम गुड़ गोबर कर लेती हूँ दोस्तों। तो मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, मैं ट्राई भी करती हूँ तब भी नहीं बोला जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनको ही काला मतलब उनको काला कौवा नहीं काट खाता है, जो आजकल सच बोलते हैं इस घोर कलयुग में उनको काला कौवा काट खाता है। मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस कर रखा है, मैं अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर रही हूँ। फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। हमारे पास में मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में चलो रे डोली। सो एंजॉय करते हैं जानी दुश्मन का ये गाना ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ओह माय गॉड, सो हमने एंजॉय किया है ओल्ड इज गोल्ड वाला जानी दुश्मन मूवी का गाना चलो रे डोली उठाओ कहार। हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है मुकेश यादव की गोंडा से और मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और इन दोनों का है ये फेवरेट वाला गाना। ये दोनों अक्सर इस गाने की डिमांड करते हैं और आज इन दोनों ने साथ ही में इस गाने की डिमांड कर दी है दोस्तों। सो मुकेश यादव और मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर एंजॉय करते हैं गाना तेरे दर्द से दिल आबाद रहा और कुछ भूल गए कुछ याद रहा। एंजॉय करेंगे ये वाला गाना, लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि इस गाने के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा सीधे 9 बजे तक आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में। लेकिन उसके पहले दोस्तों मेरे एक लिसनर ने कुछ अर्ज किया है, इनका कहना है कि मंजिल जरूर मिलेगी तुम मेरा साथ तो दो, मंजिल जरूर मिलेगी तुम मेरा साथ तो दो, हर मुश्किल आसान होगी मेरे हाथ में अपना हाथ तो दो। सो इसके जवाब में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मुश्किलें आसान करने का वादा तो बड़ा खूबसूरत है मुश्किलें आसान करने का ये वादा तो बड़ा खूबसूरत है, पर डर है कि कहीं सफर के बीच में धूप तेज ना हो जाए, पर डर है कि कहीं सफर के बीच में धूप तेज ना हो जाए। हम कदम तो बढ़ा ले तुम्हारी आवाज पर, हम कदम तो बढ़ा ले तुम्हारी आवाज पर शर्त ये है कि मोड़ पर तुम्हारी नीयत ना बदल जाए। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और मिलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से गाने और देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में फिर से आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग।

0: पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये भी ना सोचा कौन हो तुम और हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना सोचा कौन हो तुम और ये भी ना पूछा कौन हो तुम। एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अभी ऑन एयर न्यूज में थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि मैंने कितनी फटाफट से आप लोग का न्यूज प्ले करने की कोशिश की, लेकिन ऑन एयर भी आप लोगों ने गाने सुनने को ही पाए, उसके लिए थोड़ा सा खेद है। लेकिन कोई नहीं, ओवरऑल हमने आधी न्यूज तो सुनी ली ना, देश दुनिया की खबरें सुनने गए थे, रूबरू होने गए थे, भले आधी अधूरी खबर सुन के आए हैं, रूबरू होके आए हैं, लेकिन कायदे से रूबरू होके तो आ गए हैं। एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम MP रीवा, आपका स्वागत है और आपका स्वागत करती है आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल। सो अपने फरमाइशी गीत को चैट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है ममता कसौधन की, उनको सुनना है गाना नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। सो एंजॉय करते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, हम सबका पसंदीदा नगमा, हमारी ममता का सौदन जी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन अपनी आरजे सिंपल नॉट।

हमने एंजॉय किया ये गाना ममता कसौधन की फरमाइश पर। किशोर कुमार जी की थी ये बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी रोमांटिक सी आवाज। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले हमारे एक लिसनर का कहना है कि थामा है हाथ जब किसी का तो हम हर सफर में साथ निभाएंगे, ये गर्मी ये हवाएं ये बारिश कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। प्यार के धागे से प्यार से बुनकर चुनरी की छांव में रखेंगे, कैसे सोच लिया कि दिल हमारा दगा देगा, अब तो हर कदम पर आपका साथ देगा। समझ लो अब इतना दिल धड़कने से पहले अब तो हर बार आपकी रजा मांगेगा। अच्छा जी, सो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो धागा वफा का हो तो फिर टूटने का डर कैसा, जब छांव आपकी हो तो फिर धूप का असर कैसा। मांगी है रजा आपने दिल की धड़कनों से पहले मांगी है रजा आपने दिल की धड़कनों से पहले, अब ऐसे हम सफर के होते मंजिलों का फिकर कैसा। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गाना आपके प्यार में हम सवरने लगे। सो एंजॉय करते हैं राज मूवी का ये गाना अलका याग्निक की आवाज में हमारी चांदनी की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टेज

0: लगे, आपके प्यार में हम सवरने लगे। अलका याग्निक की बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही रोमांटिक सी आवाज में हमने एंजॉय किया है ये हाउ रोमांटिक वाला नगमा चांदनी की फरमाइश पे, जो की है गोंडा से। चलिए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है निबर जी की, रानी बाजार सोनार गली गोंडा से, और उनको सुनना है गाना मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत करेंगे। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार निबर जी की फरमाइश पर, जो की है रानी बाजार सोनार गली गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।
1: काफी अच्छी पसंद है तुम्हारी।

मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत है तुमसे, ये दिल कह रहा है कसम से कसम से। उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले मेरे लिसनर का फिर से कहना है, आपको पता है हर एक लिंक के बाद में वो कुछ ना कुछ जवाब भेजते हैं और उसका जवाब मैं देती हूँ, फिर वो मेरी बात से सहमत नहीं होते हैं, फिर वो उसका जवाब देते हैं, टिप्पणी करते हैं, और फिर मैं उनकी बात से सहमत नहीं होती हूँ, फिर मैं टिप्पणी करती हूँ। सो फिलहाल आज की फरमाइशी गीतों का सिलसिला और आपके ये जज्बातों का और हमारी सहमति और असहमति का सिलसिला कल फिर शुरू होगा। सो दोस्तों चलते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है किसकी, नागेश्वर धाकड़ की, और उनको सुनना है गाना कितने बेचैन हो के उनसे मिले, और उनको क्या थी खबर थे हम कितने अकेले। एंजॉय करेंगे ये वाला गाना, लेकिन इसी के साथ में हमारे लिसनर ने जो कहा है वो तो आप लोग की खिदमत में पेश करूं। इनका कहना है कि सफर में जब हम सफर साथ हो सफर का मजा आता है, सफर में जब हम सफर साथ हो सफर का मजा आता है, जब हम सफर हर मुश्किल में गिरते वक्त हाथ थामने वाला हो तो हर वक्त गिरने में मजा आता है। मंजिलें कितनी भी दूर क्यों ना हो अगर हम सफर कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाला हो तो मंजिल भी करीब नजर आता है। So, मैं कुछ कहना चाहूंगी इस पे भी और इसी के साथ में लेना चाहूंगी अलविदा दोस्तों। मंजिलें करीब दिखने लगती हैं जब कोई साथ चलता है, मंजिलें करीब दिखने लगती हैं जब कोई साथ चलता है, मगर इस राह में हर चमकता हुआ चेहरा वफादार नहीं होता। आप निभाएंगे हर कदम पर साथ ही आपका जर्फ है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप निभाएंगे हर कदम पर साथ ये आपका जर्फ है, पर हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आप किसी पर विश्वास नहीं होता। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश, लेती हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि कल है सैटरडे नाइट स्पेशल वाला प्रोग्राम और मैं जरूर रहूंगी। तो कल ताबड़तोड़ एंटरटेनमेंट करेंगे हम लोग, एनर्जी से भरपूर होके आएंगे और कोशिश यही करेंगे कि खुशियां दें और खुशियां लें, है ना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय योर प्रोग्राम, बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बे इंतहा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। बाय बाय।

0: हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
1: मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है। वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेरो शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हम समझते रहे सरसरी जिसे, वो पूरी किताब का निचोड़ निकला। ऐसा तो आपके साथ भी हुआ होगा कि जिसे आप एक जमाने तक कुछ और समझ रहे हो, वो एक दिन बहुत गहराई से समझ आ जाए, तो क्या आप भी हैरान नहीं होंगे? है ना, बिल्कुल होंगे। बहरहाल, आज के बहारे गजल में हम लाए हैं कुछ ऐसी चुनिंदा गजलें जिनके मायने आज तक आप अलग ही समझते रहे हैं, लेकिन आज हम पाएंगे इनमें बेपनाह गहराई। आदाब, इस्तकबाल है आपका बहारे गजल के शो में, जहां ख्यालों की जबा बनती हैं गजलें। शो का आगाज कर रही है आज की पहली गजल। गजल कुछ यूं है कि फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है, दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही उदासी, ये अकेले

तो दिखाता है कि गम सीधा नहीं होता, ये बार बार लौट कर आता है। यहां शाम एक इशारा है उस वक्त की तरफ जब दिन भर की बाहरी तवज्जो भटकाने वाली चीजें खत्म हो जाती है और इंसान अपने अंदर के खालीपन का सामना करने पर मजबूर हो जाता है। ये कहकर कि ये वही शाम वही गम है, ये गजल हमें महसूस कराती है कि शख्स एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा, वो वादे एक खत्म ना होने वाले सजा देने वाले वक्त के चक्र में।

जिंदगी की इस महफिल में कभी कभी हम खुद को इतना तन्हा पाते हैं कि अपनी ही धड़कनें पराई लगने लगती हैं। बाहर गजल के इस मोड़ पर जिक्र उस खामोश तन्हाई का जो महफिलों में भी साथ नहीं छोड़ती। वो गजल सुना है ना, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में। शहरयार साहब की लिखी इस गजल में यूं तो फिल्म का एक बेहद मशहूर नगमा दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए इसे भी शामिल है, मगर ये गजल खामोश अहलदगी यानी जुदाई का एक बहुत गहरी झलक पेश करती है। यह अपनी जिंदगी में एक अजनबी होने का एहसास उकेरती है, जहां इंसान तकदीर के दिए अधूरे जख्मों को बिना किसी शिकायत चुपचाप सहता रहता है। ये हमारी अपनी ही जिंदगी में छिपे हुए दर्द और उस बेगानेपन की दास्तां है, जिसे हम दुनिया से छिपाए रखते हैं।

जब इंसान अपने आशियाने को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ रुख करता है तो शहर उसे तरक्की तो देते हैं मगर सुकून छीन लेते हैं। गुलजार साहब की जादुई कलम से निकली ये खूबसूरत गजल सच का आईना है। एक अकेला इस शहर में रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। गुलजार साहब के खूबसूरत बोलों से सजी ये गजल रुमानियत की बंदिशों को तोड़कर वजूद के फलसफे पर बात करती है। ये एक भरे पूरे दौड़ते भागते शहर में भीड़ के बीच महसूस होने वाले अकेलेपन और किसी अपने से जुड़ने की तड़प को बेहद खूबसूरती से पेश करती है। हम अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहचान और अपने वजूद की गवाही तलाश करते रहते हैं जो हमारी हस्ती का सबसे अहम हिस्सा है। यूं तो एक टूटे हुए दिल की कहानी लगती है मगर गुलजार साहब की शायरी का हुस्न इस बात में है कि उन्होंने बेरहम कंक्रीट के शहर को एक टूटे हुए इंसान के जहन का आईना बना दिया। अब आना दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। यहाँ आबोदाना का मतलब सिर्फ उस दाने पानी से और जो जिस्म और रूह के रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। आशियाना उस जज्बाती सुकून हिफाजत और अपनेपन का नाम है जिससे कोई मकान घर बनता है। गुलजार साहब ने मुंबई जैसे बड़े शहरों में हिजरत करने की कड़वी हकीकत को बयां किया है। ये शहर आपको पेट भरने के लिए नौकरी यानी आबोदाना तो आसानी से देता है मगर रहने के लिए एक सुकू भरा आशियाना देने से साफ मुकर जाता है। नतीजा ये होता है कि इंसान अपनी ही रोजमर्रा की जिंदगी की मसरूफियात में कैद होकर महज एक बंजारा बनकर रह जाता है।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
10: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
11: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
12: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
11: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
13: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
14: मतलब
13: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
15: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
16: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
17: रातों का गहरा होना और दिल के जख्मों का हरा होना, इनमें न जाने क्यों एक अजीब सा ताल्लुक है। जब दिन ढलता है तो उम्मीदें भी दम तोड़ती है। तो गुलजार साहब दर्द को अपने अल्फाज के जरिए महसूस करते हैं। दिन खाली खाली बर्तन है और रात है अंधा कुआं। ये खाली बर्तन एक अकेले शख्स की तन्हा जिंदगी पर एक बहुत गहरा और तीखा तंज है। दरअसल हमारी तहजीब और हमारी जो संस्कृति है, इसमें भरा हुआ एक बर्तन हंसते खेलते भरे पूरे परिवार की एक अलामत माना जाता है। वहीं एक खाली बर्तन उस उजाड़ घर की गवाही देता है जहां ना कोई रौनक है, ना कोई चूल्हा जलता है और ना ही कोई अपनों की मोहब्बत का मयस्सर है। इसके अलावा रात को अंधे कुएं से तशबीह कर देना यानी उसकी तुलना करना ये दिखाता है कि जैसे ही दिन भर की मसरूफियात खत्म होती है, ये शहर उस तनहा इंसान को सोच और ख्यालों के कैसे गहरे सियाह गड्ढे में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। एक और गजल है जो गुलजार साहब की है कि खाली हाथ शाम आई। ये गुलजार साहब की एक बेहद मुअस्सर यानी कि मार्मिक गजल है जो एक खत्म होते रिश्ते की तुलना ढलते हुए दिन से करती है। यह हमें कड़वा सबक सिखाती है, जिंदगी भर की हसीन यादें समेटने के बावजूद आखिर में हम अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं और ये जाने देने के दर्द को बयां करती है। गुलजार साहब खुद इस गाने का तारुफ कराते हैं, कहा था कि कुछ शामें बांझ यानी बंजर होती हैं जो आपको भी एक हसीन लम्हा दिए बिना गुजर जाती हैं। खाली हाथ यहाँ उस उम्मीद के बारे में है जो कभी पूरी नहीं होती। इंसान हर रोज आस में दिन गुजारता है कि शायद ये शाम कोई बदलाव, कोई पैगाम या किसी की आमद लेकर आएंगी, मगर ये शाम वैसी भी हो जाती हैं यानी कोरी सी लौट जाती है और अगले दिन के लिए एक दर्दनाक सिलसिला छोड़ जाती हैं।

बहरे गजल की इस आखिरी पड़ाव पर अब हम उस सन्नाटे की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारे चेहरों के पीछे छिपा होता है। हम हंसते तो हैं मगर उन मुस्कुराहटों के पीछे कितने अश्क छिपे होते हैं ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। कोई ये बता दे तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए, अपना चेहरा ना बदला गया, आईने से खफा हो गए। ये और किसी की नहीं बल्कि निदा साहब की लिखी हुई और जगजीत सिंह साहब की मखमली आवाज में गाई गई ये नज्म हमारी इस दुनियावी जिंदगी के असली मायनों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये बयां करती है दुनिया की तमाम खुशियों और ख्वाहिशों के पूरे होने के बावजूद आखिर में इंसान के हाथ सिर्फ एक खालीपन ही लगता है। इसमें तन्हाई के वजूद, इंसानी रिश्तों के खोखलेपन और जज्बाती दूरियों के दर्द को बहुत गहराई से टटोला गया है। इस नज्म की सबसे रूह कपा देने वाली जो लाइन लगती है वो यह है कि इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। ये बात जज्बाती तौर पर अलग हो जाने की जो एक त्रासदी है उसको पूरी शिद्दत से जाहिर करती है। ये उस दर्दनाक हकीकत को सामने लाती है जहां दो लोग जिस्मानी तौर पर तो एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, शायद एक ही कमरे या एक बिस्तर पर, मगर उनके दिलों के दरमियान मीलों का फासला होता है। ये इंसानों के बीच सबसे बड़ी खाइयों की यानी जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती और जहनी होती है। इस असली तन्हाई को लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं। ये सिर्फ अकेले रहने का नाम नहीं बल्कि एक थका देने वाला वो बोझ है जो आपको उस दुनिया के सामने अपने दिल के खालीपन की सफाई देनी पड़ती है जो सिर्फ बाहरी चकाचौंध देखकर फैसला सुनाती है। ये नज्म तन्हाई को वक्ती दौर नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी का एक पेचीदा और लाइलाज हिस्सा मानती है। सो दोस्तों, बहारे गजल के आज के इस सफर में इतना ही। यादों, अश्कों और मुस्कुराहट के इस खेल के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। सुनते रहिए अपना 89.6 FM शो और रखिए अपना ख्याल। शब्बा खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार श्रोतागण, आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी 89.6 FM की लेट नाइट आरजे। सड़कों पर खामोशी है, खिड़कियों के पीछे नींद, और ऐसे समय में अक्सर वो कहानियां खुद ब खुद सामने आ जाती है जिन्हें दिन में हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो किसी भूत की कहानी नहीं है, वो कहानी है एक माँ की जो मरने के बाद भी अपने बच्चों की रखवाली करती रही। आज की कहानी का टाइटल है माँ जो मरने के बाद भी जागती रही। वाक्या उत्तर भारत के एक छोटे से शहर दादरी का है। शहर के बाहर एक सरकारी गर्ल्स हॉस्टल था, परसों पुराना। पुरानी दीवारें, ऊंचे पेड़ और हॉस्टल के पीछे एक पुराना सा क्वार्टर जिसका दरवाजा पिछले कई सालों से कभी नहीं खुला था। लोग उसके बारे में दबी आवाज में बात करते थे। आज उस हॉस्टल में एक नई वार्डन आई है, नाम है रीमा वर्मा, उम्र 45 वर्ष। रीमा चारों तरफ देखते हुए बोलती है, अरे इतना बड़ा हॉस्टल और इतनी अजीब सी चुप्पी, लगता है कि यहाँ 100 से ज्यादा लड़कियाँ रहती हैं। कुछ तो बेहद अजीब लग रहा है। चपरासी रामदीन थोड़ा घबराहट के साथ बोला, लड़कियाँ तो हैं मैडम, पर रात में जल्दी सो जाती हैं। रीमा शायद रात को जागने से डरती हैं। रामदीन ने नजर झुका के कहा, डर सबको लगता है मैडम, पर डर के कारण अलग अलग होते हैं। तभी रीमा की नजर पीछे बंद दरवाजे पे पड़ी। पीछे जो क्वार्टर है वो किसका है रामदीन? रामदीन ने तुरंत जवाब दिया, मैडम वो बंद है, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आपका कोई काम नहीं है वहाँ। रीमा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, अरे ये सरकारी परिसर है रामदीन, इसकी हर जगह की जिम्मेदारी मेरी है। रामदीन ने बहुत धीरे आवाज में कहा, दिन में तो सब ठीक है मैडम, वो आपकी जिम्मेदारी है, पर रात में वो जगह अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेती है। पहली रात हॉस्टल में सब सो चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा छाया है। रीमा को अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी, नई जगह में जल्दी नींद आती भी तो नहीं है। तभी उसको पायल की हल्की छनक सुनाई दी। रीमा ने चौंक कर पूछा, अरे इतनी रात में ये कौन है? पायल की छनक फिर से और पास आ गई। रीमा ने कहा, इस वक्त कोई हॉस्टल में पायल पहन के क्यों चलेगा? एक आवाज किसी स्त्री की बहुत पास से आती है, किसी स्त्री का स्वर था, लाइट मत बंद करना, बच्चियाँ डर जाएंगी अंधेरे में। रीमा कांपने लगी, कौन है कौन है? तेज हवा चल रही थी, खिड़कियाँ बार बार जोर से बंद हो रही थी, कमरे में कोई नहीं था, पर हवा में अभी भी किसी माँ की चिंता महसूस हो रही थी। आप सुन रहे हैं 89.6 FM लेट नाइट हॉरर स्पेशल में। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। मैं आपकी लेट नाइट आरजे बहुत जल्दी लौटूंगी इस कहानी के अगले हिस्से के साथ, जहाँ डर से ज्यादा दर्द छुपा है।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: अगली सुबह रीमा बेहद परेशान थी। मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। रात की वो आवाज रीमा के मन से उतरी नहीं थी। सुबह होते ही वो सीधे हॉस्टल की सबसे पुरानी आया शारदा को बुलाती है। रीमा, शारदा जी, सच सच बताइए, ये हॉस्टल रात में इतना सहमा सहमा क्यों रहता है? शारदा धीरे से कहती है, मैडम, कुछ जगहों पे डर नहीं रहता, यादें रहती हैं और वो यादें बहुत दर्द देती हैं। रीमा, किसकी यादें शारदा? शारदा एक बेहद लंबी सांस लेती है और कहती है, माधवी मैडम की। रीमा, अरे ये माधवी मैडम कौन है? शारदा अब थोड़ी सी भावुक हो चुकी थी। वो मैडम, माधवी मैडम, वो इस हॉस्टल की वार्डन थी आपकी तरह, पर मैडम उन्होंने सिर्फ नियम नहीं देखे, उन्होंने लड़कियों के चेहरे देखे। जिस लड़की के घर से एक भी चिट्ठी नहीं आती थी वो माधवी मैडम की बेटी होती थी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो शारदा? बात को ठीक ठीक से समझाओ। शारदा बताती है, क्योंकि मैडम हर महीने जब डाकिया आता था ना, तो लड़कियां हाथ फैलाए बेसब्री से खड़ी रहती थी। जिसके हाथ में कुछ नहीं आता, माधवी मैडम उसे चुपचाप अपने कमरे में बुला लेती थी। शारदा की आवाज भर आती है। वो अपने पर्स से एक पुराना कागज निकालती और कहती, तेरे घर से चिट्ठी आई है बेटा, पर उन्होंने तुझे याद किया है। वो चिट्ठी माधवी मैडम खुद लिखती थी, कभी माँ बनकर, कभी बाप बनकर, कभी भाई बनकर। रीमा फिर से पूछती है, और अगर किसी लड़की को पैसे की दिक्कत होती थी तब वो क्या करती थी? शारदा रुक रुक कर बताती है, एक लड़की थी सविता, 3 साल तक उसके घर से एक भी पैसा नहीं आया। नोटिस निकला लड़की को हॉस्टल से निकाला जाए। माधवी मैडम ने अपनी सोने की चूड़ियां उतारी और बोली, जब तक मैं हूँ मेरी कोई बेटी इस हॉस्टल से बाहर नहीं जाएगी। और शारदा फूट फूट कर रोने लगी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। शारदा ने कहानी को आगे बढ़ाया। फिर आई वो रात मैडम, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। एक लड़की थी अनन्या, वो हॉस्टल से भागना चाहती थी पर गेट बंद था। मैडम का ऑर्डर था, रात में गेट नहीं खुलेगा। लड़की चीखती हुई मैडम से, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ डर लगता है,

उसों में लिखा गया एक्सीडेंट। रीमा की आवाज भी भारी हो गई। उसके बाद क्या हुआ शारदा? शारदा ने कहा, उसके बाद हॉस्टल में कोई माँ नहीं बची मैडम, बस नियम बचे। आप सुन रहे हैं 89.6 FM लेट नाइट हॉरर स्पेशल। हम यहाँ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, थोड़ी देर में लौटूंगी इस कहानी के उस मोड़ के साथ जहाँ डर खुद ब खुद सवाल पूछने लगता है।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: रात फिर लौट आई, रात का सन्नाटा, दूर से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। उस रात रीमा को नींद नहीं आई, बार बार वही आवाज, वही शब्द उसके कान में गूंज रहे थे। अचानक फिर से पायल की आवाज आने लगी और लाइट मत बंद करना। रीमा ने पूछा, अगर आप यही है माधवी मैम तो प्लीज सामने आइए ना, मुझे आपसे बात करनी है। पायल की आवाज छनक छनक करके आती रही। कमरा बेहद ठंडा हो गया, हवा भारी हो गई और रीमा समझ गई आज एक माँ सामने आने वाली है। ठंडी हवा चल रही थी, पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। रीमा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उससे बड़ा एक सवाल था उसके मन में। कमरे की लाइट टिमटिमाई, हवा अचानक रुक गई और फिर से वो आवाज आई बहुत पास से। आवाज बेहद थकी हुई थी। तुम डर क्यों रही हो रीमा? माँ से कोई डरता है क्या? रीमा के आंखों में आंसू आ गए। अगर आप माधवी मैम हैं, तो बताइए आप अब भी यहाँ क्यों हैं? माधवी जवाब देती है, क्योंकि मैं अधूरी रह गई रीमा। मेरी बेटियाँ आज भी रात तकिए में मुंह दबाकर रोती हैं। कोई उनका नाम नहीं पुकारता, कोई उनका हाल नहीं पूछता। जब माँ नहीं होती ना, तो डर सबसे पहले सामने आता है। रीमा, लेकिन आपकी मौत तो एक हादसा थी ना मैडम? माधवी दर्द से हंसती है। हादसा नहीं रीमा, लापरवाही थी। उस रात में तेजी से दौड़ी, क्योंकि अगर एक भी लड़की उस गेट से बाहर निकल जाती तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाती। उस लड़की की जिंदगी

एक छोटी सी गलती की वजह से हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। ओनर को तुरंत इन्फॉर्म किया गया था, मगर फोन से रिप्लाई आया, डॉक्टर देर से आएगा। किसी ने मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, पर अपनापन बिल्कुल भी नहीं। रीमा कहती है, सच में जब एक आदमी मरता है ना, तो शायद वो सब भूल जाता है, पर माँ मरती है तो वो अपने बच्चों को मर कर भी भूल नहीं पाती। रीमा रोते हुए कहती है, पर ये पायल की आवाजें, ये लाइट, ये सब क्या है माधवी मैम? माधवी, सब इसलिए ताकि कोई जागता रहे, ताकि कोई देखता रहे। मैं चाहती हूँ ये हॉस्टल फिर से घर बन जाए। मेरी कोई बेटी तकिए में मुंह छिपा कर रात के अंधेरे में ना रोए। सबको एक घर मिले, इस हॉस्टल में अपनापन मिले। अगली सुबह रीमा ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, एक फाइल मिली धूल से भरी, जिस पे लिखा था वार्डन माधवी शर्मा। अंदर हाथ से लिखी ढेर सारी चिट्ठियां थी लड़कियों के नाम, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं न रहूं तो मेरी बेटियों को अकेला मत छोड़ना। रीमा कांपती हुई आवाज में बोली, आपकी आवाज अभी भी इस कागज में जिंदा है। आप सुन रहे हैं 89.6 FM लेट नाइट हॉरर स्पेशल। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: रात बेहद खामोश थी। माधवी की परछाई रीमा के रूम में आती है। रीमा, रीमा, मैं अब जाना चाहती हूँ। रीमा घबरा के कहती है, कहाँ जाना चाहती है? माधवी ने कहा, वहाँ जहाँ एक माँ को आराम मिलता है, पर उससे पहले मुझे तुम्हारा वादा चाहिए। रीमा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं वादा करती हूँ माधवी मैडम, ये हॉस्टल सिर्फ इमारत नहीं रहेगा, ये घर बनेगा। हर लड़कियाँ यहाँ सुरक्षित होंगी। अगर कोई रोएगा तो लोग उनकी बात सुनेगा, उनका दर्द बांटेगा। माधवी ने सुकून की सांस ली। बस यही सुनना था रीमा। पायल की हल्की हल्की छनक फिर सुनाई देने लगती है। वो रात ही अलग थी। हॉस्टल की दीवारें डरी हुई नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें थाम लिया हो। रीमा अपने कमरे में बैठी थी, आंखें खुली थी पर मन बेहद शांत। रीमा ने धीमे स्वर में कहा, माधवी मैडम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, तो जान लीजिए आपकी बेटियां अब अकेली नहीं है। पायल की आवाज बहुत धीमी हो गई, शायद वो अंतिम छनक थी। माधवी ने एक सुकून भरी आवाज में कहा, मैं जानती हूँ रीमा, माँ का दिल झूठ नहीं बोलता, मैं समझ चुकी हूँ। तुम्हारे रहते ये सारी बेटियाँ खुश हैं, सुरक्षित हैं। पर रीमा, क्या तुम्हें पता है माँ सबसे ज्यादा कब रोती है? जब बच्चा सामने हो और वो मदद न कर पाए। मैं हर रात इन गलियारों में घूमती रही, कभी दरवाजा बंद करती, कभी लाइट जलाती, क्योंकि जिस दिन अंधेरा किसी बच्चे के दिल में उतर जाएगा ना, उस दिन वो जिंदा होकर भी मरने लगता है। रीमा रोते हुए कहती है, मैडम ने बहुत सहा है। माधवी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने सहा नहीं, मैंने बहुत जिया है। इन लड़कियों की हंसी में, उनके आंसुओं में, उनकी कॉपी किताबों में, अब मेरी बारी है सो जाने की। रीमा, यहाँ से जाने पर आप डरेंगी नहीं? आप बहुत दूर चली जाएंगी। माधवी मुस्कुराते हुए कहती है, माँ कभी नहीं डरती रीमा, बस थक जाती है। सुबह की चिड़ियों की आवाज से रीमा की नींद खुलती है, हल्की मुस्कुराहट के साथ। सुबह हॉस्टल में सब कुछ बदला बदला था। लड़कियां खुल कर हंस रही थी, खिड़कियां खुली थी, और सबसे बड़ी बात, पिछले 5 साल में पहली बार किसी लड़की ने बहुत खुश होके कहा, मैडम आज यहाँ पे तो पता नहीं क्यों बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। रीमा की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब यहाँ वार्डन नहीं, एक माँ रहेगी। माँ की कमी अब तुमको कभी नहीं महसूस होगी। श्रोतागण, आज की कहानी आपको डराने के लिए नहीं थी, क्योंकि सबसे सच्चा भूत वो नहीं होता जो डराता है, सबसे सच्ची आत्मा वो होती है, मरने के बाद भी जिम्मेदारी निभाती है। अगर आज रात अपने घर में किसी माँ की आवाज सुने आप, तो डरिएगा नहीं, हो सकता है वो किसी का ख्याल रख रही हो। अब इजाजत दीजिए, जल्दी ही उपस्थित होंगी एक नई कहानी के साथ।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवारा। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। ईद का चांद भी क्या खूब पैगाम लाया है, ईद का चांद भी क्या खूब पैगाम लाया है, दूर बैठा कोई शख्स आज फिर याद आया है। सेवइयों की मिठास में घुली है दुआओं की खुशबू, लगता है खुदा ने आज मोहब्बत को मुस्कुराया है। जी हाँ श्रोताओ, वक्त हो चला है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यानी भूले बिसरे गीत का, और आज का जो सेगमेंट है वो अपने आप में बेहद खास है। ना जाने कितनी दुआएं, कितनी बातें, कितनी फरियादें और कितनी खुशियां लेके आया है आज का ये एपिसोड, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं ईद स्पेशल आपका भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आपकी आरजे अनोखी और आज हम बात करेंगे ईद की। हवा में खुशबू है ईद की, दिलों में है मोहब्बत की मिठास और यादों में बसे हैं भूले बिसरे गीत। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं है दोस्तों, बल्कि दिलों को जोड़ने का पैगाम है। जब कोई अपने रूठे हुए को गले लगा ले, जब कोई दूर बैठा इंसान भी यादों में करीब महसूस हो, तो समझ लीजिए ईद सच में आ गई है। और आज के इस खास मौके पर हम सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जिनमें इश्क भी है, इंतजार भी है और दुआओं की मिठास भी है। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले नगमे की ओर, जो कि है सनम बेवफा मूवी से। इसके बोल हैं, मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया, बिना ईद के ही चांद

जी हाँ, बिना ईद के ही अगर चांद का दीदार करना हो तो कौन कैसे करता है, वो इस गाने में आप बेहद खूबसूरती से एंजॉय करने वाले हैं। फिल्म है सनम बेवफा, सिंगर है लता मंगेशकर जी और विपिन सचदेवा जी, और अगर लिरिसिस्ट की बात करें तो है सावन कुमार तक जी, और म्यूजिक डायरेक्शन महेश जी और किशोर जी का है। दोस्तों, मोहब्बत में कभी कभी इंसान को अपने जज्बात साबित करने पड़ते हैं, और जब दिल सच्चा हो तो कसम भी सिर्फ खुदा की ही खाई जाती है। ईद की रातों में जब चांद आसमान से मुस्कुराता है तो कई दिलों में ये एहसास भी जगता है कि जिसे हम चाहते हैं वो भी हमें याद कर रहा होगा। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं ये नगमा।

है, रात भी है और खामोशी भी है। चांद भी है, रात भी है और खामोशी भी है। दिल में एक मीठी सी बेहोशी भी है। ईद की रात में अगर तुम याद आ जाओ, हाँ आप ही से कह रही, ईद की रात में अगर तुम याद आ जाओ तो समझो खुदा की मेहरबानी भी है। बेशक अगर किसी अपने की याद आए और रात हो ईद की, तो फिर क्या पल होगा। चलिए उसी को महसूस करते हैं नेक्स्ट वाले नगमे के साथ में। दोस्तों, ईद का असली मतलब है मिलना और दिलों को जोड़ना। कई बार ऐसा होता है कि किसी से नाराजगी हो जाती है, लेकिन ईद के दिन वही इंसान सबसे पहले याद आता है, क्योंकि ईद सिखाता है मोहब्बत में दूरी नहीं करीबियां होनी चाहिए। मोहब्बत की कहानी में कभी कभी दर्द भी आ जाता है, कभी किसी की बेवफाई तो कभी हालात की दूरी। लेकिन सच ये है कि जिसे दिल से चाहा जाए उसकी यादें कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही दर्द भरा लेकिन बेहद प्यारा गीत।

0: लो मिठाई, लो मिठाई। अल्लाह ताला ने जेलर खान को औलाद बख्शा। हाँ बेटी, और उसका नाम हम रखा। हम।
1: लाओ ये मिठाई, अब मैं इसे बांटता हूँ अपनी दोस्त के खुशी के लिए।
0: ओ कैसा खुशी, ओ जल्दी बोलो बिरादर, कैसा खुशखबरी?
2: ओए लाले दी जान, तुम बाप बन गए हो बाप।
1: और इत्तेफाक की बात यह है बादशाह खान, मेरे बेटे के जन्मदिन के दिन ही तुम्हारे बेनजीर ने एक और बेनजीर को जन्म दिया है।
0: ओए क्या बोलता है यही?
1: हाँ बादशाह।
0: ओए बादशाह खान,
1: तुमने मेरे बेटे का क्या नाम रखा है?
0: हिना।
1: और अब मैंने तुम्हारे बेटे का क्या नाम रखा है मालूम?
0: ओ हो चे, हमको क्या मालूम।
1: उसी नाम का हिंदुस्तानी अनुवाद है।

कहते हैं ईद की चांदनी में अगर कोई दुआ मांगी जाए तो वो दिल तक जरूर पहुंचती है। शायद इसीलिए कई लोग चुपचाप ये दुआ करते हैं, या खुद जिसे हम चाहते हैं उसके दिल में हमारे लिए वही मोहब्बत रहे। जी हाँ, नेक्स्ट नगमा जो है वो कुछ ऐसा ही है, थोड़ी सी दुआ मांग रहा है आज के दिन, आज यानी ईद के दिन। इश्क का अंदाज भी बड़ा अजीब होता है दोस्तों, कभी एक मुस्कान से दिल जीत लेता है और कभी एक नजर से ही कयामत कर देता है। उफ़, तो आइए सुनते हैं ये नगमा जिसके बोल हैं जरा कीजिए करम। साबिर ब्रदर्स की आवाज में ये कवाली, मूवी है कायदा कानून जो आई थी 1993 में, सिंगर है साबरी ब्रदर्स। लिरिक्स की बात करें तो समीर साहब ने इसको लिरिक्स से सजाया है और म्यूजिक डायरेक्शन है आनंद साहब का। ईद का दिन है तो दुआ भी खास हो, ईद का दिन है तो दुआ भी खास हो, हर दिल में मोहब्बत का एहसास हो, जो दूर है वो करीब आ जाए, जो दूर है वाकई वो करीब आ जाए, खुशियों से भरा हर एक सांस हो। चलिए इसी एहसास के साथ बढ़ते हैं और दुआओं में याद करते हैं अपने उनको जो हमसे थोड़े से दूर, थोड़े से नाराज और पर दिल में कहीं पास है।

ईद की रात है, चांद भी पूरा है, दिल में कहीं कोई किस्सा अधूरा है। काश इस चांदनी में वो भी याद कर ले हमें, काश इस चांदनी में वो भी याद कर ले हमें, जिनके बिना हर एक मंजिल, हर एक मंजर और ये जिंदगी अधूरा है। दोस्तों, ईद हमें सिर्फ नए कपड़े और मीठी सिवाई ही नहीं देती, बल्कि दिलों में माफी, मोहब्बत और अपनापन भी भर देती है। अगर किसी से कोई गिला शिकवा है तो आज का दिन सबसे अच्छा है उसे खत्म करने का, क्योंकि ईद का असली पैगाम है मोहब्बत बांटो, खुशियां बांटो और दिलों को जोड़ो। जी हाँ दोस्तों, ईद की इस खूबसूरत शाम में अगर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई हो और दिल में किसी खास की याद जग गई हो, तो समझ लीजिए हमारा आज का भूले बिसरे स्पेशल सफल हो जाएगा। इसी प्यारे एहसास के साथ चलते चलते सुनते हैं एक और दिल को छू लेने वाला गीत, जो कि है ईद का इतना हसीन सबब। आई इस सबब को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं आपके अपने शो, जी हाँ, भूले बिसरे गीत।

दोस्तों, ईद की इस खूबसूरत और रोशन रात में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो गैनेस्ले 89.6 एफएम के साथ में। मैं हूं आपकी अपनी आरजे अनोखी और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिव जिसका नाम है ईद। जी हाँ, मिठास घुल जाती है ईद के नाम से ही, क्योंकि ईद पे भैया सेवैया जो मिलती है और सेवैया के साथ में ईदी। फिलहाल बात करेंगे इस पे भी कि भैया सेवैया इतनी जरूरी क्यों होती है ईद में बननी, लेकिन उससे पहले कुछ और बात। चूंकि रात का ये सन्नाटा और आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में उठती हुई किसी की खास वाली याद, बस यही तो है ईद की असली मिठास। मैं हूँ आपकी होस्ट या दोस्त आरजे अनोखी और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत का ईद स्पेशल शो, जहाँ आज की रात हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, यादों की और उन गीतों की जो कभी दिल से पुराने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ईद की रात में एक अजीब सा जादू होता है। कहते हैं जब चांद आसमान में मुस्कुराता है तो कई दिलों में दबे हुए जज्बात भी जाग जाते हैं। कोई किसी को याद करता है और कोई किसी के मैसेज का इंतजार करता है और कोई चुपचाप बस आसमान को देखकर दुआ करता है कि जो मुझसे थोड़ा सा दूर है पर मेरे दिल के सबसे करीब है, उसको अपनी दुआओं से नवाजना। ए खुदा, ए खुदा, ए खुदा। और जब बात जज्बात की हो तो एक गीत याद आता है जिसमें मोहब्बत की सच्चाई है और इंतजार भी भरा हुआ है। कारण है भाई, ईद का मौका है और कोई अपना अगर आपसे दूर है तो ये नगमा आप जरूर सुनना चाहेंगे। मूवी है दिल परदेसी हो गया, जो आई थी 2003 में, और गाने के बोल है मुबारका मुबारका मेरा सोना सजन, याद आया ना? हाँ, यही नगमा। चलिए अभी इसी का लुफ्त उठाते हैं हम और इसको आवाज से सजाया है सोनू निगम साहब ने और इनके साथ में युगल जोड़ी जो बनाई है वो है अलका याग्निक जी ने। और लिरिक्स की बात करें तो सावन कुमार जी की लिरिक्स हैं और म्यूजिक डायरेक्शन रहा है उषा खन्ना जी का। तो फिर बढ़ते हैं ईद स्पेशल शो में इस नगमे की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ अर्ज करती है आपकी अपनी आरजे अनोखी। ईद का चांद निकला तो तेरी याद भी आई, तेरी। ईद का चांद निकला तो तेरी याद भी आई, रात की चांदनी में तेरी सूरत जो नजर आई, दुआ की कि ये मोहब्बत यूं ही कायम रहे। हाँ, दुआ की मैंने कि ये मोहब्बत यूं ही कायम रहे, जैसे हर साल ईद के साथ खुशियां हजार आई। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरे लाइफ में आए और खुशियों से भर गया मेरा जीवन। फिलहाल बढ़ते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस मुबारका सॉन्ग के साथ।

ईद आई तो लगा जैसे करम हो गया, सूना सा दिल भी आज गुलशन हो गया, जिसे याद करते थे चुपके चुपके हर रात, जिसे याद करते थे चुपके चुपके हर रात, आज उसी का ख्याल भी इबादत सा हो गया। जी हाँ, ये शायरी मैंने इसलिए फरमाई है क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाला सॉन्ग है वो कुछ हद तक आप इससे रिलेट कर पाएंगे, या फिर हो सकता है पूरी तरह से रिलेट कर पाएं। गाने के बोल हैं, मुझ

का। बेशक मूवी है बरसात की रात, जो आई थी 1960 में और आवाज़ से इसे सजाया है लता मंगेशकर जी ने। और लिरिक्स की बात करें तो साहिर लुधियानवी जी, जो कि हमेशा से सभी के फेवरेट रहे हैं, और म्यूजिक डायरेक्शन है रोशन साहब का। और ये फिल्म केवल इस सॉन्ग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शानदार कव्वालियों और संगीत के लिए बहुत मशहूर हुआ था उस वक्त में। तो ये गाना सुनने से आप और हम कैसे पीछे रह सकते हैं आज के अपने, जी हाँ, ईद स्पेशल शो में आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत अपने आरजे अनोखी के साथ में। और मैंने कहा था ना कि सिवैया क्यों खाई जाती, आखिर में ये इतना खास क्यों होता है, चलिए इस पर भी थोड़ी सी वार्तालाप कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, ईद पर जब घर में सिवैया बनती है तो सिर्फ मिठास नहीं बनती, उसमें घुली होती है माँ की ममता, परिवार का प्यार और रिश्तों की गर्माहट। कई घरों में ये परंपरा भी होती है कि सबसे पहले सिवैया पड़ोसी को भेजी जाती है, यानी ये सिखाती है कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। अकेले कोई खुशी नहीं सेलिब्रेट कर सकता है, गम हम हमेशा अकेले सेलिब्रेट करते हैं या फिर उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर खुशी की बात करें तो भैया असली खुशी तो सबके साथ ही आती है। और एक बात और आपसे बतानी थी कि क्या आपने कभी सोचा है कि ईद पर सिवई ही क्यों बनाई जाती है? दरअसल सिवैयां सिर्फ एक मिठास नहीं बल्कि मोहब्बत और बराबरी का प्रतीक है। पुराने समय में ये परंपरा रही है कि ईद के दिन घर की बनी सिवैयां पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटी जाती हैं। इसका मतलब है खुशियां अकेले नहीं सबके साथ बिल्कुल से बटोरी जाती है, बांटी जाती है, मनाई जाती है। और सिवैयों की पतली पतली डोरियां हमें ये सिखाती हैं कि रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, नाजुक जरूर होते हैं, लेकिन अगर संभाल कर रखे जाएं तो जिंदगी भर मिठास बनी रहती है। तो दोस्तों, जब बात मिठास की हो तो मोहब्बत की मिठास कैसे पीछे रह सकती है, इसी एहसास के साथ सुनते हैं ये वाला गाना, बिल्कुल जिसके बोल हैं, मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेके कौन आया, आया चांद।

ईद की रात है, चांद भी पूरा है ना। ईद की रात है, चांद भी पूरा है, दिल में एक अधूरा सा किस्सा जरूर है। जी हाँ दोस्तों, तो सेवैयों की जैसे हमारे रिश्ते भी मीठे रहने चाहिए, दिल में मोहब्बत के दिए जलते रहने चाहिए। ईद का असली तोहफा यही तो है दोस्तों, रिश्ते हर हाल में मुस्कुराते रहने चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले नगमे की ओर, जिसके बोल हैं मुबारक ईद मुबारक। तुमको ना भूल पाएंगे मूवी जो कि आई थी 2002 में, और आवाज से सजाया है इसे युगल जोड़ी यानी सोनू निगम जी और स्नेहा पंत जी ने, और लिरिक्स की बात करें तो जलेश शेरवानी साहब की, म्यूजिक डायरेक्शन है साजिद वाजिद की युगल जोड़ी का। चलिए फिर इस गाने की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर आएंगे नेक्स्ट वाले सॉन्ग पे। आपके अपने शो भूले बिस्तरे गीत के साथ आप मना रहे हैं ईद। जी हाँ ईद, और ईद माने बस ईद, जिसमें हो जाए कभी किसी का दीद, वही तो है आपकी अपनी असली ईद भाई। वो कहीं भी हो सकती है, दीद आपके ख्यालों में भी हो सकता है, सामने से भी हो सकता है, या फिर कहीं और भी हो सकता है। फिलहाल सेलिब्रेट करते हैं इस प्यारे से, बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे वाले सॉन्ग को आपके अपने शो के साथ।

जी हाँ दोस्तों, ईद की इस रोशनी और मोहब्बत भरी रात में आपका दिल से एक बार फिर से स्वागत है। रात की ठंडी हवाएं, आसमान में चमकता हुआ ईद का चांद और दिल में किसी खास की मीठी सी याद, यही तो है ईद की असली खूबसूरती। आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत ईद स्पेशल, जहां आज की रात हम बात कर रहे हैं मोहब्बत की, यादों की और उन गीतों की जो वक्त गुजर जाने के बाद

भी दिल से पुराने कभी नहीं होते, है ना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी पुराने ही नहीं होते, उसमें मिठास बढ़ती जाती है, बेकरारी बढ़ती जाती है, इंतज़ार बढ़ते जाता है, प्यार बढ़ते जाता है, नोक झोंक भी, तकरार भी बढ़ते जाता है, लेकिन ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। दुआ है आज के दिन आप सभी का रिश्ता यूं ही बना रहे खटास मिठास के साथ में। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले गीत की ओर, और पुराने गीतों की बात कुछ अलग ही होती है। इन गीतों में दिखावा नहीं होता, बस दिल की सच्ची आवाज़ होती है। जैसे ईद की मिठास सिवैया दिल को मीठा कर देती है, वैसे ही ये गीत दिलों की यादों को मीठा कर देते हैं और दिलों को यादों से भर देते हैं। दोस्तों, ईद की रात में एक खास बात होती है, जब शहर पूरा सो जाता है तो दिल की आवाज और साफ सुनाई देने लगती है। किसी को किसी की याद आती है, किसी को पहली मुलाकात याद आती है, और किसी को वो इंसान याद आता है जिसे उसने कभी दिल से चाहा था। और हाँ, एक बात और, ईद मुबारक, आप याद आ रहे हैं। यकीन मानिए, कभी कभी यही एक लाइन दो दिलों के बीच की दूरी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देती है। तो अपने अपनों को मुबारकबाद दीजिए, ढेर सारी खुशियाँ बांटिए और खुशियों के साथ में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले गाने की ओर, जो है चांद सामने है, ईद का चांद मुबारक। ये ज्यादातर ईद स्पेशल नॉन फिल्मों यानी एल्बम में देखा गया सॉन्ग है। कई सारे सिंगरों ने इस गीत को गाया है अलग अलग वर्जन में, कई कवाली ग्रुप भी इस नगमे को कई दफा गा चुके हैं। और अगर म्यूजिक और लिरिक्स की बात करें तो अलग अलग एल्बम में अलग अलग लोगों को इसका क्रेडिट जाता है, पर आज भाई ईद स्पेशल है तो हम प्ले करेंगे आपके लिए, हमारे लिए, हमारे लिए आपके लिए, यानी हम अपनों के लिए प्ले करेंगे ये वाला सॉन्ग। चलिए सुनते हैं।

दोस्तों आप सभी को ईद मुबारक। हाँ जी, और इस मुबारक अवसर पर चलिए सुनते हैं एक और नगमा। ईद की रात में जब चांद मुस्कुराता है तो पुराने गीत भी दिल में नई मिठास घोल देते हैं। और अब सुनिए एक ऐसे ही गीत को जिसने मोहब्बत और इबादत दोनों को एक साथ पिरो दिया। नगमे के बोल हैं ईद का जश्न, आवाज से सजाए से हबीब साबरी जी ने। मूवी की बात करें तो कई बार ये ईद एल्बम और स्टेज कव्वाली के रूप में बहुत प्रचलित हुआ है और रिलीज भी हुआ है। पारंपरिक कव्वाली शैली अक्सर इसका वर्जन बनी है। फिलहाल एंजॉय करते हैं आपके भूले बिसरे गीत में ये सॉन्ग आज स्पेशली ईद स्पेशल।

दोस्तों, तो आज आपने सेलिब्रेट किया भूले बिसरे गीत में अपनी आर्जे अनोखी के साथ में। जी हाँ, ईद स्पेशल शो आपका भूले बिसरे गीत आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञानसली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन को। आप सुन रहे थे आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम, क्योंकि ये कार्यक्रम है उन गीतों का, उन नगमों का, उन कलाकारों का जो कि कहीं धुंध में खो से गए हैं, पर आपके पास है आपका अपना फेवरेट फेवरेट फेवरेट शो जिसमें ये गाने आपको सुनने को मिलते हैं। फिलहाल आज का ईद स्पेशल शो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। हम फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने ही शो यानी भूले बिसरे गीत में। लेकिन दोस्तों, उम्मीद है कि ईद की इस रात में मोहब्बत की खुशबू और पुराने गीतों की मिठास आपके दिल तक जरूर पहुंची होगी। अब आपसे विदा लेती हूँ मैं आपकी आरजे अनोखी, लेकिन जाते जाते यही कहूंगी, ईद मुबारक, मोहब्बत बनी रहे और दिल मुस्कुराते रहे। टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स, खुदा हाफिज, गुड नाइट, शब्बा खैर, और एक बार फिर से ईद मुबारक।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री।